FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026। प्रातः के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र के प्रसारण आरंभ होते हैं। हम अपने सारे श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती से हिंदी में समाचार। 6:05 पर जुड़िएगा आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से कार्यक्रम वंदना के लिए। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ. जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्रैम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले

0: चालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टोंटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है, बीच का सफ़र ही तो असली कमाई है। हे बंदे, हम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। ना नाम, ना पैसा, ना रिश्ते साथ चलते हैं। जो साथ जाता है वो है कर्म, स्वभाव और लोगों के दिल में बनी एक जगह। क्योंकि एक बच्चा भी पैदा होते ही रोता है, परंतु उसको देखकर सभी खुश हो जाते हैं और हंसते हैं। यही फ़र्क है हमारे बीच में।

घमंड, जलन, हिसाब किताब सब यहीं रह जाना है। शरीर नाशवान है, पद प्रतिष्ठा दो दिन की मेहमान है। जो चीज़ टिकती है वो है हमारा व्यवहार। हम किसी के साथ क्या व्यवहार करते हैं? हमारी वजह से किसी के आंखों में आंसू तो नहीं आ गए? हमारी वजह से किसी का दिल तो नहीं दुख गया? इसी बात का हमें विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि लोग आपकी गाड़ी बंगला भूल जाएंगे, लेकिन ये नहीं भूलेंगे कि आपने उनसे कैसे बात की थी। क्योंकि मुश्किल में दिया हुआ कोई भी साथ हमेशा साथ रहता है।

भगवान ने जो हमें सांसें दी हैं ना, वो उधार हैं। इसे हिसाब चुकाने में खराब करने से बेहतर है इसे बांट देना। और वो हम बांट सकते हैं हंसी, मदद, एक अच्छा मीठा सा बोल, क्योंकि छोड़ चले जाना है ये दुनिया, झूठा ठिकाना है ये। हे बंदे, हमारे जीवन में जो भी हम करते हैं उसे परमात्मा के खाते में दर्ज करना होता है, तो इसीलिए क्यों ना हम अपने खाते को बिल्कुल साफ सुथरा और अच्छा रखें और सबके होठों पर प्यारी से मुस्कान दे जाएं।

जब हम भगवान के प्रति भरोसा रखते हैं तो ऐसा ही हमें रखना चाहिए। अगर जीवन में कोई कष्ट का क्षण भी आ जाए तो भगवान ने कुछ सोचा ही होगा, तभी दुख दिया है। जिस दिन ऐसी निष्ठा हमारी हो जाएगी तभी हम सच्चे भक्त कहलाएंगे, हम सच्चे मानव कहलाएंगे, क्योंकि उस प्रभु परमात्मा पर हमें सदैव भरोसा करना चाहिए।

श्रोताओं, आप सब पर प्रभु परमात्मा की कृपा यूं ही बनी रहे इसी आशा के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान। संगीत रचना सतीश भाटिया की है, युगल स्वर हैं राजन साजन मिश्रा के।

श्री रामचरित मानस के प्रथम दो सोपानों बालकांड तथा अयोध्या कांड की समाप्ति के बाद अब आरंभ होता है तृतीय सोपान अरण्य कांड का संगीतबद्ध रूप। प्रारंभिक श्लोक में दैहिक दैविक तथा भौतिक तीनों प्रकार के ताप हरण करने वाले ब्रह्मा के आत्मज श्री रामचंद्र के प्रिय भगवान शंकर की वंदना की गई है। तत्पश्चात श्री राम की स्तुति की गई है जो अपने श्याम वर्णी शरीर पर पीतांबर, हाथों में धनुष बाण और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए जनक नंदिनी सीता तथा अनुज लक्ष्मण सहित वन में निवास कर रहे हैं। एक दिन श्री राम ने अपने हाथों से भांति भांति के सुंदर फूल चुनकर मनमोहक गहने बनाए और सीता जी को परम मनोहारी रूप में सजा दिया। इतने में उनके बल का थाल लेने के उद्देश्य से इंद्र का पुत्र जयंत एक कौवे का रूप धारण कर सीता जी के कोमल पैरों में चोंच मारकर उड़ गया।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। संगीत रचना सतीश भाटिया की थी। युगल स्वर थे राजन और साजन मिश्रा के। FM एंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, टुडेज अपडेट से पहले आज का पंचांग। आज है रविवार, विक्रम संवत 2083 के अधिक ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा। ऋतु चल रही है ग्रीष्म। सूर्योदय हुआ प्रातः 5:57 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:15 पर।

श्रोताओं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए किया आमंत्रित। आज आप 11 बजे सुनेंगे प्रातः 11 बजे कार्यक्रम मन के बात की अगली कड़ी। 1 जून से 30 जून तक देश भर में चलेगा खेत बचाओ अभियान। खेत बचाओ अभियान को गांव-गांव तक ले जाने की तैयारी। श्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत से राज्य तक व्यापक समन्वय पर दिया जोर। कम खाद सही सलाह, खेत बचाओ अभियान में संतुलित उर्वरक प्रयोग होंगे, उपयोग का होगा फोकस। ये कहना था केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने पीवीएसएम एनएम में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग एंड चीफ का पदभार संभाला। माय भारत और एनएसएस युवा विकास के दो स्तंभ हैं, जो एक ही लक्ष्य विकसित भारत की दिशा में काम कर रहे हैं। ये कहना था डॉक्टर मनसुख मांडवीय का। आईआईएम शिलांग में युवा कार्य विभाग का चिंतन शिविर संपन्न होने पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों, जिलों और माय भारत एनएसएस के संस्थानों को सम्मानित किया गया। श्रोताओं, ये थे टुडेज अपडेट।

0: ये आकाशवाणी है,
1: हर पल आपके साथ।
0: समाचार हो या सदाबहार गीत,
1: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
0: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
1: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
0: आकाशवाणी।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर। श्रोताओं

0: ये जान लेते हैं आज दिन भर में हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। प्रातः 11 बजे आप सुनेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात की अगली कड़ी हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रातः 9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बाल सभा, तो सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम बाल सभा, बच्चों की बगिया सजेगी प्रातः 10:30 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे अमरीक सिंह द्वारा साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। प्रातः 10 बजे आप सुनेंगे हमारा महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम शक्ति मंच, जिसे लेकर आएंगी राजेश जांगड़ा, और आज होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम। तो हमारी महिला श्रोता साथी फोन मिलाएंगी 221-322-0744 लगाकर और अपने पसंदीदा कार्यक्रम को सुनेंगी और गीतों का भी लुत्फ उठाएंगी। तो सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम शक्ति मंच राजेश जांगड़ा के साथ प्रातः 10 बजे, जिसकी चर्चा का विषय रहेगा पहला सुख निरोगी काया। प्रातः 8:30 पर श्रोताओं आप आनंद उठाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे का, होता है ये मनोरंजन से भरपूर ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जिसमें होती है चर्चाएं। आज चर्चा रहेगी विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर, साथ ही खेलों के क्षेत्र में भारत का योगदान, और होंगे कुछ स्थानीय समाचार, होगा एक आसान सा प्रश्न जिससे आपकी भागीदारी सुनिश्चित होगी इस कार्यक्रम में। संगीत से जुड़े मुख्य आकर्षणों में श्रोताओं प्रातः 7:10 पर यानी अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे सदाबहार गीतों का कार्यक्रम दिल पुकारे। प्रातः 7:40 पर आप सुनेंगे लोकगीतों के कार्यक्रम बाजाए नगाड़ा का। गैर फिल्मी गीतों और नगमों से सजा हमारे कार्यक्रम स्वरांजलि का आनंद उठाएगा प्रातः 9:30 पर। कार्यक्रम गाने नए पुराने, इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाइएगा प्रातः माफ कीजिए शाम 5:05 पर। युवा दोस्तों की पहली पसंद उनका ज्ञानवर्धक कार्यक्रम युववाणी, समय शाम 5:30। चर्चा होगी विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर, साथ ही होगी युवा फरमाइश, करंट अफेयर्स, युवाओं के मुद्दे, रोजगार समाचार। शाम 6:20 का समय रहेगा कार्यक्रम गीता संदेश का, जिसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा से अध्याय 4 के श्लोक 25-28 तक की व्याख्या। श्रोताओं आज है महीने का अंतिम रविवार, तो आज आप सुनेंगे सांग, समय नोट कीजिए शाम 6:30 पर। कुछ बातें कुछ गीत, इस कार्यक्रम का आनंद उठाइएगा रात्रि 8:30 पर। श्रोताओं आज है रविवार, तो सजीव आनंद कार्यक्रम हेलो एफएम का तो आप बेसब्री से इंतजार करते होंगे, समय आपका जाना पहचाना रात्रि 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक। तो मिलाइएगा फोन 221-322-0744 लगाकर और सुनिएगा अपना मनपसंद कार्यक्रम हेलो एफएम। श्रोताओं अगर आप सुनना चाहते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी, तो इसके लिए आप सुनते हैं कार्यक्रम रूपरेखा प्रातः 6:50 पर और शाम 5 बजे। तो मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम लेकर आता है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। अब सुनते हैं देशकान।
1: इमरजेंसी के बाद

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे देश कान FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। और 7:10 पर जुड़िएगा आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से कार्यक्रम दिल पुकारे के लिए। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी

भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: in the final of 2026 season at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad today. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. RCB's batting has been one of the strongest in the tournament, with Virat Kohli leading the charge. In the bowling department, Bhuvneshwar Kumar and Josh Hazlewood have been among their key performers with a new ball. Meanwhile, Gujarat Titans will once again rely on key batters like skipper Shubman Gill, Sai Sudarshan, Jos Buttler, while the all-rounder Jason Holder has strengthened their bowling attack with important wickets in the second half of the season. In badminton, India's men's doubles pair of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on the Indonesian duo of Muhammad Shohibul Fikri and Fajar Alifian in the final of the Singapore Open today. The Indian pair is yet to win a title since clinching the Thailand Open in May 2024. And that is the end of this news bulletin.
1: एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रातः के 7:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सदाबहार गीतों का कार्यक्रम दिल पुकारे। श्रोताओं, कार्यक्रम दिल पुकारे में आप सबको आपकी अपनी हस्ती मुस्कुराती सखी प्रमिला सैनी का सादर प्रणाम। जी हाँ श्रोताओं, थोड़ी सी गर्मी के बाद आज थोड़ा सा ठंडक महसूस हो रही है। अब क्या करें भाई, मौसम का उतार चढ़ाव है जिसे तो सहन करना ही पड़ेगा। तो परिस्थिति कोई हो, सिचुएशंस कोई भी हो, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र आ जाता है आपकी सेवा में। अगर आप फ्रीक्वेंसी से जुड़े हैं तो एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अगर आप ऐप के माध्यम से जुड़े हैं तो न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से पूरे विश्व में आप हमारे कार्यक्रमों का आनंद उठा रही हैं। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ऐसे कार्यक्रमों को लेकर आता है, ऐसे गीतों को संजो कर लेकर आता है जिसे आप गुनगुनाते हैं पूरा दिन। तो कार्यक्रम का पहला गीत, कार्यक्रम का नाम दिल पुकारे। पहला गीत 1963 में आई फिल्म पारस मणि से। जी हाँ श्रोताओं, ये एक संगीतमय फैंटेसी फिल्म थी जिसमें आंशिक रूप से ब्लैक एंड व्हाइट और आंशिक रूप से रंगीन जो है फिल्म आया गया था। इसका निर्देशन किया था बाबू भाई मिस्त्री ने, और आपको बता दें कि जो इसका संगीत था प्यारा सा, उसे दिया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। फिल्म को तमिल में मायामणि शीर्षक से और 1964 में रिलीज किया गया था। इसमें अभिनय किया महिपाल और गीतांजलि ने। साथ ही आपको बता दें कि जो इसके गीत थे वो असद भोपाली और फारूक कैसर ने लिखे थे, और जो गीत आपको सुनवा रहे हैं उसे गाया लता मंगेशकर ने।

जी हाँ श्रोताओं, गीत वो हम पिरो कर लेकर आए हैं जो पुराने समय के हैं, जिनका जो लुत्फ है आज भी वही है, जिनकी मिठास है आज भी वही है, और इन गीतों को सुने बगैर बिल्कुल दिन ही नहीं बनता। तो चलिए, आपके दिन को बना रहा है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र कार्यक्रम का अगला गीत। 1949 में आई फिल्म थी एक थी लड़की, मुख्य भूमिकाओं में नजर आए मीना शौरी, मोतीलाल, कुलदीप कौर और आगा। और जो गीत आपको सुनवाएंगे इसे गाया है लता मंगेशकर ने। और आपको बता दें कि जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसी नाम से मीना शौरी को जाना भी जाने लगा। जी हाँ, लारा लप्पा। तो आइए सुनते हैं अजीज कश्मीरी द्वारा और विनोद संगीत जिन्होंने दिया था, उनका संगीत से रचा और लता मंगेशकर का गाया ये प्यारा सा गीत।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओ, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से आप आनंद उठा रहे हैं कार्यक्रम दिल पुकारे का। प्यारे प्यारे और मीठे मीठे गीतों की जो माला हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम

तक लगी तो 1954 में आई फिल्म नौकरी से। श्रोताओं को बता दें, इसे मुख्य भूमिकाओं में नजर आए किशोर कुमार, शीला रमानी, जगदीप कन्हैया लाल, अचला सचदेव और ऐसे बहुत से कलाकार जिन्होंने इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाया। संगीत सलील चौधरी का है और गीत शैलेंद्र का, और जो गीत आपको सुनवा रहे हैं उसमें युगल स्वर हैं किशोर कुमार और उषा मंगेशकर के। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म नौकरी से। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है 1959 में आई फिल्म बरखा से। जी हाँ श्रोताओं, ये फिल्म बहुत ही अच्छी रही, जिसमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आए जगदीप और नंदा। और जो गीत आपको सुनवाने वाले हैं उसे गाया है लता मंगेशकर ने। फिल्म का जो संगीत था उसे बनाया चित्रगुप्त ने, और संगीत के साथ जो गीतों के बोल थे वो लिखे राजेंद्र कृष्ण ने। साथ ही आपको बता दें, इस गीत को आजकल बहुत ट्रेंड में लिया जा रहा है और बहुत जगह सुनने में भी आ रहा है। तो आइए आनंद उठाते हैं इस प्यारे से गीत का।

जी हाँ श्रोताओं, तड़ पाओगे तड़पा लो। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम ऐसे ही हैं जिसे आप तड़प कर सुन ही लेते हैं। कार्यक्रम का अगला गीत 1959 में फिल्म आई थी इंसान जाग उठा। जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं श्रोताओं, उसमें युगल स्वर हैं आशा भोंसले और गीता दत्त के। गीत शैलेंद्र का है, संगीत एस डी बर्मन यानी सजय देव बर्मन का। और इस गीत को जो फिल्माया गया था वो था मधुबाला और मीनू मुमताज पर। आपको बता दें इसका जो निर्माण किया था शक्ति सामंत ने किया था, और ये गीत बड़ा ही प्यारा सा चुलबुला सा गीत है। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

श्रोताओं, प्यारे प्यारे गीतों को संजो कर लेकर आया है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र, जिसे आप सुनते हैं FM 101.4 MHz पर। कार्यक्रम चल रहा है दिल पुकारे। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है 1963 में आई फिल्म रुस्तम सोहराब से। आपको बता दें, इसका निर्माण किया था F.U. रामसे ने, और जिसमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आए सुरैया, पृथ्वीराज कपूर, प्रेमनाथ और मुमताज। इसके साथ ही आपको बता दें, जो गीत आपको सुनवा रहे हैं इसमें मिली जुले स्वर हैं मोहम्मद रफ़ी, मन्नाडे, शहादत खान और साथियों के। गीत कमर जलालाबादी का है और संगीत सज्जाद हुसैन का। तो आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

श्रोतों, कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत हमने लिया है 1966 में आई फिल्म आम्रपाली से, जिसमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आए सुनील दत्त और वैजयंती माला। फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन का था। और आपको बता दें कि ये फिल्म बहुत पुराने समय की एक नृतिका पे आधारित थी, और गीत आपको जो सुनवा रहे हैं उसे लिखा है शैलेंद्र ने और गाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोतों, फिल्म आम्रपाली के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम दिल पुकारे संपन्न करने की अपनी हंसते मुस्कुराती सखी प्रमिला सैनी को अनुमति दीजिए और आशा करते हैं प्यारे प्यारे गीत जो हम चुनकर लेकर आए थे आपको बेहद अच्छे लगे होंगे। एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब समय है लोकगीतों के कार्यक्रम बजाए नगाड़ा का। आज आपको सुनवा रहे हैं इंद्रराज दास और उनके गाय साथियों के गाए ये शब्द।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

श्रोताओं भी आप आनंद उठा रहे थे कार्यक्रम बाजाए नगाड़ा में इंदिराज दास और उनके गाए इन शब्दों का। एफएम एंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रही हैं। प्रातः के 8 बजने वाले हैं श्रोताओं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर जुड़िएगा आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से कार्यक्रम सुबह सवेरे के लिए। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: इनकी भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे।

0: बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब ₹1.50 प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर ₹13.50 प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क ₹9.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे।

हर सुबह जब सूरज नई रोशनी लाता है, दिल चुपके से अपनों का नाम गुनगुनाता है। कुछ दोस्त दुआ बनकर जिंदगी में मिलते हैं, जिनका ख्याल भी मन को सुकून दे जाता है। कभी शब्द कम पड़ जाते हैं रिश्तों को बताने में, कभी शब्द कम पड़ जाते हैं रिश्तों को बताने में, कभी उम्र गुजर जाती है अपनापन निभाने में। मेरे दोस्त तेरी मुस्कान सलामत रहे हमेशा, यही दुआ निकलती है हर सुबह के तराने में। जी हाँ श्रोताओं, हमारे जो दोस्त यानी कि आप, जब भी परिवार के लिए हम सजदे में हाथ उठाते हैं, दुआओं के लिए सर झुकाते हैं, तो स्वतः ही अपने आप ही अपने अपनों में आपका नाम जरूर आ जाता है। तो आशा करते हैं हमारे श्रोता बहुत खुश होंगे और हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ अपनी जिंदगी को जी रहे होंगे। और हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से FM 101.4 MHz न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से पूरे विश्व में हमारे कार्यक्रमों का लुत्फ उठा सकते हैं आप। जी हाँ, पसंदीदा कार्यक्रम सुबह सवेरे जानकारी और मनोरंजन के पिटारे को संभाले आ चुकी है आपकी अपनी हस्ती मुस्कुराती सखी प्रमिला सैनी। जी हाँ श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम का आगाज करेंगे इस प्यारे से गीत के साथ, पर सबसे पहले ईमानदारी से वही प्यारा सा पासवर्ड तो डालिए। जी हाँ, हंसने मुस्कुराने वाला भी टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो पासवर्ड आशा करते हैं आपने डाल दिया होगा। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम का आगाज, इस गीत के बाद आपसे पूछेंगे आसान सा प्रश्न।

जी हाँ श्रोताओं, लोगों का दिल अगर जीतना है तो मीठा मीठा बोलो। तो चलिए इस मीठे मीठे अंदाज में हम भी कोशिश कर रहे हैं अपने श्रोताओं के दिलों में जगह बनाने की। तो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र तो भाई बना चुका है, तो आप अपने दिल में जगह तब बनाएंगे जब आपके नाम प्रश्न के उत्तर के साथ हमारे पास आएंगे। तो प्रश्न हमारा आज का है कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर शुरू की गई है। आपको बताना है पहली हाइड्रोजन ट्रेन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर शुरू की गई है। आपको उस जगह का नाम बताना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है वो भी बता देंगे तो बेहद अच्छा है। तो आपको बताना है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर शुरू की गई है। हम कर रहे हैं आपके टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार 9466021336 पर 8:45 तक। और विनम्र निवेदन यही है कि जब आप नाम के साथ अपने प्रश्न का उत्तर भेजें तो उसमें पर्याप्त स्थान हो, यानी कि आपका जो सही जवाब है वो आपके नाम और क्षेत्र का नाम के बीच में पर्याप्त स्थान, पर्याप्त स्पेस हो, और साथ ही प्रश्न का जो उत्तर है वो हिंदी में ही लिखें, क्योंकि हमें अच्छा लगेगा हम आपके सभी के नाम शामिल कर पाएंगे और उच्चारित सही कर पाएंगे। और अपनी शताब्दी ट्रेन, अरे भाई प्रश्न भी तो यही है आज का कि हाइड्रोजन ट्रेन कैसे शुरू, कहाँ पे शुरू की गई है, तो हम भी अपनी ट्रेन को शुरू करेंगे जब आपके नाम आएंगे। तो फटाफट से 9466021336 पर उत्तर देना शुरू कर दीजिए। अरे देना भी शुरू कर दिया है, पर 8:45 के बाद ही हम आपके नाम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे सही जवाब के साथ, जिससे आपकी जानकारी में इजाफा भी हो और आप थोड़ा सा तसल्ली से आराम से बैठिए। अगर आपने नाम भेजा तो जरूर शामिल होगा।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी? नए झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके?
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

श्रोता, एक बार एक व्यक्ति ट्रेन के डिब्बे में चढ़ा ही था कि जल्दबाजी में उसका बैक सीट पर बैठी एक महिला से टकरा गया। धक्के से वह एक तरफ लुढ़क गई। उस व्यक्ति ने उससे माफी मांगी। जवाब में वो मुस्कुराकर बोली, वो गुस्सा होने की बजाय मुस्कुरा रही थी। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि मैडम, आप हंस क्यों रही हैं? आपको तो गुस्सा होना चाहिए, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? तो मुस्कुराकर बोली, गुस्सा करके क्यों अपना दिमाग खप करना भाई साहब, हमारे साथ का सफर बहुत छोटा है। मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, फिर सब कुछ जैसा है वैसे ही हो जाएगा। तो महिला अगले स्टेशन पर उतर गई, मगर उसके कान उस व्यक्ति के कानों में गूंजते रहे, सफर बहुत छोटा है। जी हाँ श्रोता, हमें यह समझना होगा कि इस संसार में हमारा समय इतना कम है कि बेकार के बहस, जलन, दूसरों को माफ ना करना, असंतोष और नकारात्मक भावनाओं में उलझकर हम अपना चैन गवा देते हैं। किसी ने दिल तोड़ा, धोखा दिया, अपमान किया, माफ कर दीजिए ना, नजरअंदाज कर दीजिए, क्योंकि सफर बहुत छोटा है। द्वेष और जलन को दिल में जगह मत दीजिए। क्षमाशील बनिए, मुस्कान बांटिए, आनंदपूर्ण जीवन का मजा लीजिए, क्योंकि सफर बहुत छोटा है। हम छोटे बच्चे को कहते हैं ना कि 5 मैजिक वर्ड्स को यूज कीजिए, तो भाई वो 5 मैजिक जो वर्ड्स होते हैं कि सॉरी, एक्सक्यूज मी, है ना, ये जो इस तरह के जो वो हैं वर्ड्स, शब्द, वो किस लिए है कि हम बच्चों को सिखाते रहें, खुद ना उसको यूज करें। जी नहीं श्रोताओं, हमें भी इन शब्दों को प्रयोग में लाना है, क्योंकि जो ये शब्द है वो वाकई जादुई असर करते हैं। और आपके घर में अगर आपको कोई प्रशंसा करने वाला नहीं है तो आप अपनी प्रशंसा खुद कीजिए। आप क्या किसी से कम है? तो अपनी प्रशंसा आप खुद कीजिए, कोई करे चाहे ना करे। और अपने अपनों का तो भाई श्रोताओं विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि इस दुनिया में हमें कुछ भी नहीं लेना, सब कुछ यहीं रह जाएगा। बस अपने साथ आप क्या लेके जाएंगे, अपने व्यवहार को, अपने जो व्यवहार है आपके अंदर, जो आपकी प्रकृति है, उसको लेके जाएंगे। तो आज से अभी से इस बात की कोशिश कीजिए कि जो रहना है यही रहना है। अपने दैनिक जीवन को जीते रहिए और इन बातों का विशेष ख्याल रखिए।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: सबसे पहले आज आपसे जो हमने प्रश्न किया था उसका ना उसका जो प्रश्न क्या था, हमारा आज का प्रश्न था जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो सबसे पहले कहाँ शुरू की जा रही है, भारत की जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो सबसे पहले कहाँ शुरू की जा रही है, और आपने प्रश्न का सही जवाब दिया है। तो देखते हैं पहले प्रश्न क्या था। हमारा प्रश्न था कि हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की गई है, ये तो आपको पता है। सही जवाब था जींद से सोनीपत तक शुरू की जा रही है, ये ट्रेन जींद गोहाना सोनीपत रेल मार्ग पर चलेगी। श्रोताओं, इसे भारतीय रेलवे ने हरित ग्रीन यानी कि ग्रीन और प्रदूषण रहित तकनीक के तहत शुरू करने की तैयारी की है। इस ट्रेन की खास बात यह है कि ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलेगी और इससे धुआं या प्रदूषण बहुत कम होगा। इसमें से मुख्य रूप से जल वाष्प यानी वाटर वेपर्स निकलते हैं। ये लगभग 75 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से चलने के लिए तैयार की गई है। तो हमारा प्रश्न का उत्तर था कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में जींद से सोनीपत तक शुरू की जा रही है। तो आशा करते हैं कि आपका जो है इससे ज्ञान में इजाफा भी हुआ होगा और आप बेहद खुश भी होंगे क्योंकि आपके नाम इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास नाम किसका आया है। ये नाम हमारे पास सबसे पहले आया है योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल रणजीत कौर गुरशब्द सिंह राहुल। अगला जवाब देखते हैं किसका है। विक्रम योग भारती संध्या सैनी हरमन योग भारती खुशप्रीत अमली फालसंडा जट्टान से। ये श्रोता हैं दरियापुर भांबली महाराष्ट्र से गजानंद येले नवदीप येले हैं और इनके साथ विश्वदीप येले जी भी हैं। अगला नाम हमारे पास आया हिमाचल प्रदेश से योगी ठाकुर इनके साथ है रीमा ठाकुर जी का। अगले श्रोता भाई दो दो बार नाम भेजा हुआ है कुछ श्रोताओं ने, यह है सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। श्रोता जुड़ गए हैं आखली दीवान मध्य प्रदेश से भाई रामलाल चंद्रवंशी इनके साथ है श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी जी। श्रोता है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा इनके साथ है पारस मणि वर्मा। साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति खमरिया छत्तीसगढ़ से अम्बा चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान आयशा सभिया अनस और इनके साथ है रेहान जी। श्रोता जुड़ गए हमारे साथ लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव श्रीमती संतोषी ध्रुव और निशांत ध्रुव जी। अगले श्रोता है बेंगलोर राजाजी नगर से एन आर प्रसाद और इनके साथ है अकीला प्रसाद जी। ये है सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और इनके साथ है चंद्रकला रेवाड़ जी। ये श्रोता जुड़ गए हमारे साथ गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश एटा रोड से बीपी गौतम इनके साथ है सरिता गौतम जी। अगले श्रोता इंद्राज ये हैं नांगल से और जगूड़ी से हैं रणधीर बांगड़ युगम बांगड़ जी। अगले श्रोता हैं कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले सुजाता हिवराले और इनके साथ है प्रतीक हिवराले जी। अगले श्रोता देखते हैं कौन से हैं। ये श्रोता जुड़ गए हमारे साथ छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से मोहम्मद जाहिद अली सैफी मोहम्मद जहान सैफी वेलफेयर हैं ये इनके साथ। इन्होंने ये भी लिखा हुआ है लीबा मलिक और आबाद खान। भाई जो सही चीज है वही लिखें क्योंकि सीधा हम जो है बोलते हैं ना फटाफट से उच्चारण करते हैं तो सबके नाम इसमें शामिल हो जाए ऐसी हम आशा कर रहे हैं। बोरसला नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद साहू और इनके साथ है बीमा साहू जी। ये श्रोता है बिहारी कॉलोनी दिल्ली से वसीम वली चमरोइया असलम वली चामरोइया सरफुद्दीन वली चामरोइया। ये लगता है पहली बार हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, इनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। बाणा ब्राह्मणा वाला नरवाणा से मेघराज शर्मा जी। अगले श्रोता तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श राजेश साबिल पाटिल जी। ये श्रोता है राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम डॉक्टर वंदना कुमार और उनके साथ है बिट्टू कुमार जी। ग्राम नागर कोहरा से बबलू साहू जामुदेवी साहू और इनके साथ है आराध्या साहू। कैलाशनगर कुरुक्षेत्र से सुरेंद्र दत्ता बंटी शंटे उनके साथ है लाडी जी। श्रोता है मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी। ये श्रोता है छत्तीसगढ़ बोरसरा से वैभवी साहू और विभूति साहू जी। श्रोता जुड़ गए हांडी खेड़ा से राधेश्याम शर्मा और इनके साथ है इंदिरा शर्मा। लाड़वा से डॉक्टर चांद ढींगरा ईश्वर एमी और इनके साथ रंजना सुनील पाठक कमल पाठक गव्या मल्होत्रा अनारकली बाजार जगराओ से हमारे साथ जुड़ गए थे। अगले श्रोता है टिया और कृष्णा सोलन हिमाचल प्रदेश से जमशेदपुर से आप हैं हरजिंदर सिंह भाटिया निंजल भाटिया और सोनू भाटिया जी। गुजरात ग्राम गांधी ग्राम से प्रवीण सोन के साथ साथ है जगदीश सोनी। अगले श्रोता एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या आरव खुराना, एसके पप्पी जी। श्रोता जुड़ गए कैथल से अशोक कुमार, कॉल कैथल से अशोक कुमार भारद्वाज, अभिनव और इनके साथ हैं कृष भारद्वाज और पल्लवी भारद्वाज जी। अगले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, इनके साथ है प्रिंस वर्मा। श्रोता हैं कहां से, गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज और इनके साथ है फातिमा गाजी जी। अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए कविता साहू, प्रमोद कुमार साहू, कदुआपाड़ा जगत जिला जगत सिंहपुर ओडिशा से, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी से आप हैं दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, चैतन्य मस्कीन, मेघा और इनके साथ है मेघा आशीष राजा जी। अगले श्रोता आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी, अनवर मास्टर शेरवानी स्कूल गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णव आनंद और इनके साथ है सत्यम आनंद जी। ये हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा जी। ये श्रोता जुड़ गए रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, इनके साथ है सोमनाथ कालिया जी। कनेरा मोहल्ला से बत्ता परिवार है ये, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता जी। अगले श्रोता जवाहरनगर से दुर्ग से हैं आरसी कामड़े, करुणा कामड़े जी। अगले श्रोता देखते हैं ये है ग्राम पंचायत बटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा जी। श्रोता जुड़ गए संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और रोजस्वी यादव जी। अगले श्रोता शाहूनगर यवतमाल महाराष्ट्र से हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, इनके साथ है प्रियांशी। अगले श्रोता शास्त्री नगर वीरशहर से किसन सपकाल, आशा सपकाल और विशाल सपकाल जी। मदनपुर से छत्तीसगढ़ से आप हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश और इनके साथ है राहुल साहू जी। श्रोता एसएम जावेद गुमला झारखंड से हमारे साथ जुड़ गए थे। ये श्रोता हैं आजाद नगर यमुनानगर से रमेश चावला, ऋतिक चावला और इनके साथ है सुमित चावला जी। हनुमत शिंदे, ऋषिकेश शिंदे शांगली से जुड़ गए थे। कोरासी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं कोरासी छत्तीसगढ़ से प्रवन क्रांति साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू जी। बल्लारपुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हेमंत कुमार भारशंकर, श्रीमती प्रिया भारशंकर और इनके साथ है समीक्षा भारशंकर जी। मांगेराम सैनी, रवि सैनी, पूनम सैनी, खुशी सैनी, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, प्रतापगढ़ से जुड़ गए थे। श्रोता जुड़ गए हमारे से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा और पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान से। अगले श्रोता हैं डेरपाटन से संजय और सचिन, इनके साथ शायद धीरज भी, रबारी जी भी हैं। ये हैं गांव कलाना तहसील भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, योगेश और युद्धव कड़वासरा जी। रश्मि झरना है राजकोट गुजरात से। अगले श्रोता गांव धाणी कुतुबपुर जिला हांसी हिसार से रामधरी अवाना, अनाया और इनके साथ है ओजस अवाना जी। ये श्रोता हैं सेक्टर दो से हैं जी हाँ, सेक्टर दो कुरुक्षेत्र से जगपाल हुड्डा, सानिध्य सुनैना उनके साथ हैं समीक्षा हुड्डा जी। भेरूलाल वाक्तारिया धाकड़, भोला प्रवीण वाक्तारिया उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से जुड़ गए थे। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, ध्वनि सानवी और समस्त छाबड़ा परिवार। अगले श्रोता उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और गीतिका भानु जी। ये श्रोता हैं कहाँ से, हयात कॉलोनी आर्या अररिया बिहार से फैसल इमाम। अगले श्रोता रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इरफान खान, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। ये श्रोता जुड़ गए हमारे साथ नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम जी। अगले श्रोता बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी जी, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, अनुराग मोहन जी। श्रोता जुड़ गए हमारे साथ अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, बेनीपट्टी, मधुबनी बिहार से। श्रोता जुड़ गए हमारे साथ, दोबारा से नहीं भेजना है जी, ऐसा ना करें। नरेश मल्होत्रा नीटू, भावना मल्होत्रा, अनिल कटारिया खैल बाजार पानीपत से, निलोई हिसार से आप है सज्जन सिंह जांगड़ा। ये है श्रोता हमारे साथ सीमा कौशिक और इनके साथ है रुद्र कौशिक, लक्ष्य कौशिक, तरसेम चंद्र कौशिक, बसंत कौशिक, मंगोली जट्टान से। ये हमारे साथ अगले श्रोता ये है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी जी। कुमथला से ये है उर्मिला कंबोज, आरुषि और इनके साथ है राजेंद्र कुमार जी। तो बहुत सारे श्रोताओं ने प्रश्न का सही जवाब दिया, उनका दिल से धन्यवाद देते हैं। और आपको हमने बताया कि हाइड्रोजन, पहली भारत की हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में शुरू की जा रही है जींद से सोनीपत तक। तो हमने सारा स्क्रॉल करके देख लिया है, हमारे पास अभी और नाम नहीं है, सारे नाम हमने, अच्छा एक ही रह गया, ये है तेजा मोहरी अंबाला से वंशी, और ये कहाँ से है, तेजा मोहरी अंबाला से वंशी लाल, तो भाई ये बहुत सारे श्रोताओं ने प्रश्न का सही उत्तर दिया, इनका दिल से करते हैं धन्यवाद कि उन्होंने प्रश्न का सही जवाब दिया है। और आशा करते हैं कार्यक्रम का भी आप आनंद उठा रहे होंगे, और जैसे ही हाइड्रोजन ट्रेन ये आएगी हम और आप मिलकर जरूर इसमें बैठेंगे।
1: चुप करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट

0: आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम्हारा कोयले का डिब्बा, सुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर, सब पैसेंजर रेडी, एक दो।
1: रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक

लाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुड्ढा किसान हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान पुल पग डंडी टीले पे झंडी पानी का कुंड पंछी का झुंड झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी बादल धुआं मोट कुआं कुएं के पीछे बाग बगीचे धोबी का घाट मंगल की हाथ गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तालेगांव मालेगांव मालेगांव तालेगांव नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल मछलीपट्टनम धमलीपट्टनम धमलीपट्टनम मछलीपट्टनम ओंगोल नर्तिगोल नर्तिगोल ओंगोल कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद शोरनूर कोटनूर शोरनूर कोटनूर बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

गया था और 1987 में WHO के सदस्य देशों ने तंबाकू से होने वाली बीमारी और मौतों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इसकी शुरुआत की थी। 1988 में इसे हर साल 31 मई को नियमित रूप से मनाया जाने लगा। और श्रोताओं आपको बता दें कि 2000 इसमें हर साल अलग अलग प्रकार की थीम होती है और इस बार की थीम है अनमास्क द अपील काउंटरिंग टोबैको एंड निकोटिन एडिक्शन यानी तंबाकू और निकोटिन की लत के आकर्षण का पर्दाफाश करना। इसका उद्देश्य यह दिखाना है श्रोताओं कि तंबाकू और निकोटिन कंपनियां युवाओं को आकर्षित करने के लिए रंग फ्लेवर पैकेजिंग और विज्ञापन जैसी रणनीतियां अपना रही हैं। तंबाकू श्रोताओं क्या होता है? बीड़ी सिगरेट गुटखा खैनी जर्दा पान मसाला हुक्का ई सिगरेट वेपिंग उत्पाद निकोटिन वाले मतलब बहुत सारे गंदे गंदे। तंबाकू से होने वाले नुकसान क्या है श्रोताओं? फेफड़ों की बीमारी हो जाती है, सांस फूलता है, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, मुंह का कैंसर हो जाता है, खासकर गुटखा खैनी और तंबाकू खाने से चबाने से। इसके साथ ही दिल की बीमारी हार्ट अटैक और हाई बीपी का खतरा बन जाता है, स्ट्रोक यानी लकवा का खतरा बन जाता है, दांत और मसूड़ों की समस्या हो जाती है, कमजोरी और सांस की दिक्कत हो जाती है। इसके साथ ही दूसरों को भी नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि एक व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है उसके साथ बैठे लोग बच्चे और गर्भवती महिलाओं पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। श्रोताओं लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना मुख्य उद्देश्य होता है आज के दिन। बच्चों और युवाओं को तंबाकू से बचाना, कैंसर, दिल और फेफड़ों की बीमारियों को कम करना, स्वस्थ समाज और स्वस्थ वातावरण बनाना। और इस दिन श्रोताओं क्या करते हैं, इसके बहुत सारे जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं जिसमें नो स्मोकिंग की शपथ ली जाती है, तंबाकू छोड़ने की सलाह और स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं। अब तंबाकू छोड़ने के फायदे क्या है श्रोताओं? सांस लेना आसान हो जाता है, दिल और फेफड़े बेहतर काम करते हैं, कैंसर का खतरा कम हो जाता है, सबसे मेन बात पैसे की बचत होती है, परिवार का स्वास्थ्य सुरक्षित हो जाता है। इसलिए श्रोताओं तंबाकू छोड़ो जीवन जोड़ो और तंबाकू छोड़ो स्वास्थ्य जीवन अपनाओ, ना गुटखा ना सिगरेट सेहत रहेगी फिट, तंबाकू से दूरी जीवन में खुशहाली जरूरी। इसीलिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस हमें यह संदेश देता है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, हमें खुद भी इससे दूर रहना चाहिए, दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए ताकि समाज स्वस्थ और नशा मुक्त बने। तो श्रोताओं हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर में हमारे आसपास कोई भी नशा ना करे। नशा हो किस चीज का? बिल्कुल, नशा हो प्यार का, नशा हो अपने पन का, नशा हो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र को सुनने का।

श्रोताओं, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का पसंदीदा कार्यक्रम सुबह सवेरे का आप लुत्फ उठा रहे हैं अपनी हस्ती मुस्कुराती सकी प्रमिला सैनी के साथ। तो श्रोताओं, अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे भारत खेलों के क्षेत्र में। जी हाँ, भारत में प्राचीन समय से ही खेलों का महत्व रहा है। पहले लोग कुश्ती, तीरंदाजी, घुड़सवारी, कबड्डी और खो खो जैसे खेल खेलते थे। समय के साथ आधुनिक खेलों का विकास भी हुआ और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। भारत कई बड़े खेल आयोजनों में भाग लेता है, जैसे ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, क्रिकेट विश्व कप इत्यादि में। और भारतीय खिलाड़ी पदक जीत कर देश का सम्मान भी बढ़ाते हैं। श्रोताओं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं। अगर बात करें हॉकी, तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कई स्वर्ण पदक जीते हैं। बात करते हैं बैडमिंटन की, तो पीवी सिंधु, सायना नेहवाल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। शतरंज में अगर बात करें तो विश्वनाथ आनंद की, नीरज चोपड़ा जो हैं, उन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रचा एथलेटिक्स में। और बात करें मुक्केबाजी और कुश्ती की, तो मैरी कॉम, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक और अन्य बहुत से खिलाड़ी। इसके बाद हमें क्या करना है कि स्कूल और कॉलेजों में हमें खेल प्रतियोगिता बढ़ानी चाहिए, अच्छे स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र खोलने चाहिए। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति सरकार की योजना है, जिसे खेलो इंडिया का भी शुभारंभ किया गया है। खेल से होने वाले क्या लाभ है श्रोताओं? शरीर स्वस्थ और फिट रहता है, मानसिक तनाव कम होता है, अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ता है, टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है, देश का नाम दुनिया में ऊंचा भी होता है। और आपको बता दें कि जो नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर। तो हमारा जो देश है वो भारत जो है खिलाड़ियों के नाम पर बहुत है। हमारे देश में प्रचुर मात्रा में खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश की मिट्टी ही ऐसी है, हमारे देश का अनाज ऐसा है, जो हमारे देश में खिलाड़ी पैदा होते हैं और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। और भारत किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, हर क्षेत्र में हमारा भारत आगे था, आगे है और आगे रहेगा।

श्रोतों, कला के करीब रहना उम्र को रोक लेता है। जी हाँ, कला के करीब रहने वालों की उम्र थम जाती है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। इस ओर एक हालिया अध्ययन इशारा कर रहा है। हाल ही में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन द्वारा इनोवेशन इन एनर्जी एनजिक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन यह बताता है कि कलात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी हमारी जैविक उम्र को धीमा करने में मददगार है। ऐसे अनुभव मानसिक शांति, सामाजिक जुड़ाव और दिमागी सक्रियता को बढ़ाकर जीवन को अधिक स्वस्थ और खुशहाल और जवान बनाते हैं। जी हां श्रोताओं, आमतौर पर हम उम्र को कैलेंडर के दिनों में मापते हैं, लेकिन शरीर के भीतर कोशिकाओं की एक अलग उम्र होती है जिसे जैविक उम्र कहा जाता है। इसे मापने का सबसे सटीक वैज्ञानिक तरीके को एपिजेनेटिक क्लॉक कहा जाता है। ये क्लॉक डीएनए पर होने वाले रासायनिक बदलावों, जिन्हें डीएन मिथाइलेशन कहा जाता है, का अध्ययन करके बताती है कि हमारा शरीर वास्तव में कितना बूढ़ा हो चुका है। अध्ययन में यह भी देखा गया है कि जो लोग हर सप्ताह संगीत, डांस, पेंटिंग या संग्रहालय जैसी गतिविधियों में शामिल होते हैं, उनकी जैविक उम्र औसतन एक साल तक कम पाई जाती है। और आपको बता दें कि अध्ययन के हैरान करने वाले निष्कर्षों में यह भी है कि जो लोग नियमित रूप से थिएटर जाते हैं, पेंटिंग करते हैं, संगीत सीखते हैं या संग्रहालयों का दौरा करते हैं, उनकी एपिजेनेटिक उम्र उन लोगों की तुलना में काफी कम होती है जो कला से दूर रहते हैं। साथ ही हम जब किसी कलाकृति को देखते हैं या खुद को रचनात्मक करते हैं तो मस्तिष्क में डोपामाइन और एंडोर्फिन जैसे फील गुड हार्मोन का स्राव होता है। यह प्रक्रिया कोर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन के स्तर को काफी नीचे ले आती है। डेटा से पता चलता है कि कला के करीब रहने वाले लोगों में संज्ञानात्मक गिरावट की जो गति है बेहद धीमी पाई जाती है। तो श्रोताओं, इसीलिए कला जो आपके अंदर है उसे अपनाइए। जो भी आप चाहते हैं, अगर आप कविता लिखना चाहते हो तो आप कविता लिखिए, और अगर आप कुछ ड्राइंग करना चाहते हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं, वो लिखिए करिए, और आप डांस सीखना चाहते हैं वो भी करिए। और वैसे भी श्रोताओं, जो समर वेकेशन है, गर्मी की छुट्टियां हैं, तो अपने बच्चों को भी ये चीज़ें करा सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों को आत्मनिर्भर बनाइए और आत्म सुरक्षा का भी ज्ञान करवाइए। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ FM 101.4 MHz ट्यून करना है, क्योंकि इसके जो गीत संगीत की बात करें, चर्चाओं की बात करें, जानकारी की बात करें, तो वो बहुत अच्छी होती हैं, जो आपके ज्ञान में इजाफा भी करती हैं। Yeah, my brother Sanjar, we go just Kanika.

श्रोतम, गर्मी का मौसम आते ही लोग खुद को तरोताज़ा और मतलब हाइड्रेट करने के लिए फ्रूट जूस का सहारा लेने लगते हैं। सुबह के नाश्ते से लेकर दिन भर की थकान मिटाने तक जूस को एक हेल्दी विकल्प माना जाता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को इसका मीठा स्वाद पसंद आता है। एक तरफ जहाँ फलों को धोना, काटना और छीलना मेहनत भरा लगता है, वहीं जूस का पैकेट खोलकर तुरंत ही पी लेना आसान और बेहद ही आसान लगता है। हालांकि कई महिलाएं पैक्ड फूड जूस की बजाय घर पर ताज़ा जूस बनाना बेहद पसंद करती हैं, ताकि सेहत को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। लेकिन क्या हर दिन जूस पीना वास्तव में फायदेमंद है? विशेषज्ञों के माने तो फ्रूट जूस आपकी सेहत, खासकर किडनी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। दरअसल बाजार में मिलने वाले पैकेट जूस में अतिरिक्त चीनी, प्रिजर्वेटिव्स और कृत्रिम फल फ्लेवर मिलाए जाते हैं। जब इन्हें नियमित रूप से डाइट का हिस्सा बनाया जाता है तो शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। इससे मोटापा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। यही समस्याएं आगे चलकर किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं और उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित करती हैं। इतना ही नहीं, कुछ फलों के जूस में ऑक्सालेट नामक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी जानकारी अधिकतर लोगों को होती ही नहीं है। ऐसे में इनके जरूरत से ज्यादा सेवन करने पर यह किडनी स्टोन बनाने का भी कारण बन जाती है। खासकर पैक्ड और प्रोसेस्ड जूस में फाइबर की मात्रा बेहद कम होती है, जिससे शरीर को उतना फायदा नहीं मिल पाता जितना ताजे फल खाने से मिलता है। तो इसीलिए श्रोताओं, जूस का कम जो है सेवन करें, बल्कि आप फ्रूट को सीधा ही, फल को सीधा ही खाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको उसके फाइबर का भी फायदा मिल सके।

जी हाँ श्रोताओं, अब हमें बताइए कि आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं। कैसे बताएंगे, आप अपनी अमूल्य प्रतिक्रियाएं दीजिए, शिकायत, सुझाव या हो प्रशंसा, बस हमारी मेल आईडी पर प्रेषित कीजिए और कार्यक्रम आपकी बात में हर मंगलवार शाम 7:30 पर आपके नामों के साथ आपकी जिज्ञासाएं, आपकी प्रशंसा, आपके सुझाव, आपकी शिकायतें सब आमंत्रित करता है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। तो जरूर अपने समय में से समय निकालिए और अपनी अमूल्य प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराइए। कार्यक्रम आपकी बात में हर मंगलवार शाम 7:30 पर आपकी मेल शामिल की जाएगी। अब अपनी हस्ती मुस्कुराती सखी प्रमिला सैनी को कार्यक्रम सुबह सवेरे संपन्न करने की अनुमति दीजिए।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम स्वरांजलि। कार्यक्रम का पहला गीत कैलाश खेर के स्वर में।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कार्यक्रम स्वरांजलि का अगला गीत निर्मल जीत की आवाज में।

श्रोताओं भी आपने ये गीत सुना निर्मल जीत निम्मा के स्वर में। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत जैसी बी के स्वर में।

श्रोताओं, जैसे बी के गाय इस गीत के साथ ही कार्यक्रम स्वरांजलि यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। प्रातः 10 बजे जुड़िएगा आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से कार्यक्रम शक्ति मंच के लिए राजेश जांगड़ा के साथ। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: वैसे इसके अलावा अनिल विश्वास ने कई फिल्मों में गाने गाए हैं। विविध भारती के गानों के खजाने से फिल्म सौतेला भाई के इस गाने का अंश सुनिए, जिसमें अनिल विश्वास मन्ना डे के साथ गाना गा रहे हैं।
1: ऐसे का भरोसा न है वैसे का भरोसा, सच्चा है मेरे यार तो पैसे का भरोसा, कि पैसा ही मालिक पैसा ही दाता।

1945 में फिल्म पहली नजर में मुकेश से उन्होंने ये गाना गवाया। इसे लिखा था आह सीतापुरी ने। मुकेश को कुंदनलाल सहगल की छाया से बाहर लाने में और अपनी आवाज का एक मुहावरा खोजने में बहुत मदद की थी अनिल बिस्वास ने। सुनते हैं पहली नजर फिल्म का ये गाना।

0: 1948 में फिल्म अनोखा प्यार के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास की मुलाकात मीना कपूर से हुई। सन 1959 में उन्होंने मीना कपूर से शादी कर ली।
1: कच्ची

लता मंगेशकर ने अपनी कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि अनिल बिस्वास ने उन्हें ये सिखाया कि गाना गाते हुए सांस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से छिप कर सांस ली जाती है कि सुनने वाले को पता भी नहीं चलता गायक ने कब सांस ली और कब सांस छोड़ी। सन 1949 में जब लता मंगेशकर कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ रही थी, अनिल बिस्वास ने फिल्म लाडली का ये गाना गवाया।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म फरेब के एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले अनिल विश्वास के घर पर दिलीप कुमार और अशोक कुमार किसी कारण से बैठे थे। महफिल चल रही थी। अनिल विश्वास ने अपने हारमोनियम पर ये गाना इन दोनों कलाकारों को गाकर सुनाया और पूछा कि इस गाने में महिला स्वर कौन होना चाहिए। दोनों ने तपाक से जवाब दिया कि ये गाना तो लता ही गा सकती हैं। जब पुरुष स्वर की बात आई तो दिलीप कुमार का कहना था कि ये गाना तलत महमूद से गवाया जाना चाहिए, लेकिन अनिल विश्वास ने कहा मैं ये गाना किशोर कुमार से गवा रहा हूं। दिलीप कुमार इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अनिल विश्वास का कन्विक्शन और उनकी पहचान देखिए कि किशोर कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना कितना खिला।

मुकेश को न केवल अनिल विश्वास ने पहला मौका दिया बल्कि उनके करियर के कुछ यादगार गाने हैं अनिल विश्वास के नाम। फिल्म आराम का ये गाना।

अब सुरैया की बात कर ली जाए। सुरैया ने अनिल बिस्वास के लिए दो मशहूर गाने गाए हैं। एक है फिल्म जीत का ये गाना, जिसे लिखा प्रेम धवन ने।

हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली का लिखा गीत फिल्म गजरे, आवाज सुरैया की, साल 1948।

सन 1965 में फिल्म छोटी छोटी बातें का संगीत देने के बाद मुंबई से अनिल बिस्वास का मन उचाट हो गया था। वो दिल्ली चले आए और दिल्ली में आकाशवाणी के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के निदेशक बन गए। यहां उन्होंने कई समूह गान कंपोज किए।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में अनिल बिस्वास की हैसियत फिल्म संगीत के एक पितामह सरीखी है। उन्हें हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था संगीतकार अनिल विश्वास पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

श्रोताओं, अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM एंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम शक्ति मंच, जिसे लेकर आई है राजेश।

0: कार्यक्रम शक्ति मंच सुनने वाली सारी बहनों ने राजेश बहन की राम राम, और हमारे जो श्रोता भाई हैं उनने भी प्यार भरी राम राम। भनो आज है महीने का आखिरी रविवार और आज के दिन हम कार्यक्रम में बहना ते फोन पर बात करा हाँ और बहन हमारे ते जुड़ कर अपने दिल की बात कर रहे हैं। और भनो आज हमारा जो टॉपिक है, पहला तो वो बता दें आपने कि पहला तो है कि सुख, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा है भनो विश्व तंबाकू निषेध दिवस। दोनों ही जो हमारे विषय है ना आज के वो आपने मतलब न्यू बेरा के अपने ऊपर के बीत रही है और किस तरह हमने इन चीज़ों से छुटकारा पाना है। इब घर में कोई ना कोई साता जरूर टकर जा के जो बीड़ी पीता हो या कोई आपके अड़ोस पड़ोस में है, लेकिन मजबूरी हो जाए कि उसके धोरे बैठना भी पड़े। तो ये सारी बात आप तय करेंगे कि किस तरह इससे छुटकारा मिले या इसकी मतलब अपने स्वास्थ्य पे क्या इसका असर पड़ा है। अगर इसने छोड़ देंगे तो हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, तो जिब्बे मानो जीवन का आनंद भी ले सकेंगे। और ईव थोड़ा सा हमने आपने बताओ कि जो हमारा फ़ोन नंबर है एक बार वो नोट कर लो, 0174-221-322। दोबारा लिखो बनो, 0174-221-322। इस नंबर पर फ़ोन करके आप फटाफट हमारे तक जुड़ो और हमारे से इस विषय में बात करो। भणो कहते मन दिखा फोन तो मिल गया, तो कौन सी सखी जुड़ी है पहले कर लें उससे बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, कौन सी सखी जुड़ी है?
1: मेरा नाम समीता है, मैं जीरकपुर से बोल रही हूँ।
0: जीरकपुर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू थैंक यू।
0: तो जैसे आज का विषय अभी बोला मैंने कि हमारा है पहला सुख निरोगी काया।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: तो बिल्कुल सही बात है ना कि जब तक हमारा शरीर सही नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तो जीने का कोई आनंद नहीं। सही बात है ना?
1: हाँ जी हाँ जी, ठीक बात है। तो जब तक हम ठीक नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो कुछ भी नहीं कर सकते, ना काम करने का मन करेगा, ना खाने का मन करेगा।
0: बिल्कुल सही बात।
1: तो हाँ जी,
0: अच्छा ये बताइए कि आपका फोन आज पहली बार लगा या पहले भी बात हुई है?
1: पहले भी मेरी बात हुई है आपसे।
0: तो कैसा लगता है आपको बात करके?
1: बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता
0: क्योंकि,
1: है जी।
0: हाँ, जैसे हम सखियों से बात करते हैं, उनकी पसंद के गीत सुनाते हैं और साथ साथ जो जानकारियां हमें मिलती हैं, अब आप जो बात बताएंगी वो दूसरी सखियां सुनेंगी, कोई और सखी इस विषय पे बात करती है वो आप सुनते हो, तो ये सब सुन के। हाँ जी, तो इस विषय में थोड़ा सा और बताना चाहेंगे आप?
1: हाँ जी हाँ जी, जैसे पहले अपना आज तो 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस है, जैसे
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ जी, उसके बारे में जैसे हमारी पुरानी औरतें वगैरह अपना हुक्का पी लेती थी, बीड़ियां पी लेती थी, अब भी है कुछ ऐसे थोड़ा सा।
0: मतलब आप महिलाओं महिलाओं की बात करें, कहते हैं ना कि पुरुष पीते हैं अभी बीड़ी है सिगरेट है।
1: हाँ, वो तो पीते हैं
0: तो महिलाएं भी मतलब पीछे नहीं है।
1: हाँ, महिला भी पीछे नहीं है
0: बिल्कुल।
1: और बच्चों को भेजती थी जैसे, बेटा ले मेरी चिलम भर लिया, मेरा होका भर लिया।
0: अच्छा।
1: बच्चे भी इससे पीना सीख लेते थे जैसे।
0: बिल्कुल सही बात
1: आगे
0: है,
1: आगे वो चलता ही रहा जैसे,
0: क्योंकि पहले तो ये था ना, अभी घर में ही गोसे हैं, अंगिठी बाड़िया कर दी।
1: हाँ,
0: तो गोसा दाब दिया,
1: चूल्हा बाड़िया करते तो बच्चे भी। हाँ जी,
0: तो बच्चों को बोल दिया जाता था कि भी जा हुक्का भर के ला दे, चिलम भर के ला दे,
1: बच्चे भी फिर आते घूट मार लेते थे।
0: बिल्कुल, ये सारी बातें हमने भी देखी है बचपन में बच्चों को जैसे इस तरीके से।
1: जी हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है।
0: आजकल के बच्चे ऐसा नहीं कर रहे शायद, अब तो बच्चों में काफी इन चीजों में है कि
1: थोड़ा सा सावधान है पेरेंट्स वगैरह भी।
0: बिल्कुल,
1: हाँ, क्योंकि बच्चों को ऐसी उसमें नहीं जाने देते, बहुत ध्यान रखते हैं। और हमारे जैसे भी थोड़े बदल गए ना अब, जैसे अपनी ये जो
0: बिल्कुल जैसे अब जो हमारी उम्र के हैं हमसे छोटे हैं
1: जैसे।
0: हाँ जी हाँ जी
1: हाँ जी,
0: तो बच्चों को काफी चीजें ये।
1: उसके बाद अपना क्या कहते

0: नहीं घर बिल्कुल सही है, घर में बैठ के काम कर रहे हैं। अब जैसे गर्मी है सब एसी में बैठे हैं, वहीं बैठ के काम कर रहे हैं,
1: वहीं बैठे काम करते हैं। बिल्कुल,
0: पहले जैसे बाहर जाते थे
1: पर बहुत फर्क पड़ता है उससे ना।
0: बिल्कुल, अब फिर जिम में जाना शुरू कर देते हैं कि जिम जाओ थोड़ा पसीना बहाएंगे तो शरीर ठीक रहेगा।
1: लेकिन इससे अच्छा बड़ा काम ही करते रहो वो ठीक है।
0: तो जो पहले की औरतें जिम का काम था जो, वो आपको गीत सुनाऊं फिर इस तरह का एक?
1: हाँ सुनाओ आप मेरे को गीत सुनाओ।
0: कि किस तरह से उनकी जिम होती थी, कैसे वो उस काम को करते थे?
1: हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल,
0: ताकि शरीर को पसीना अच्छा, आए। बिल्कुल
1: हरियाणवी गीत सुनाओ मेरे को।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पसंद का गीत आपके लिए जरूर जी।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी, थैंक यू जी, ओके।

ਕੱਲੀ ਜੁੱਤੀ ਖਾਸ ਕਰਾਲੇ ਕੀ ਗੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੱਟੀ ਧਰਤੀ ਦਲਕ ਦਲਕ।

साया क्या राग नी जब छोरे नगाड़ी सी जुरी सी बटे धरती।

0: विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियां, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
1: हेलो
3: हेलो
1: हेलो, हाँ जी, कौन सी सखी जुड़ी है?
3: नमस्कार मैडम जी।
1: नमस्कार नमस्कार, अगर मैं पहचान पाई तो उर्मिला जी।
3: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल। और बहुत अच्छे, आप कैसे हैं?
3: बढ़िया। आकाशवाणी परिवार सब कैसा है?
1: सब बढ़िया जी, सब बढ़िया। आजकल का जो मौसम है वो भी बहुत बढ़िया हो रहा है, एकदम से गर्मी में बरसात होके देखो कितना ठंडा होगा, जैसे शिमला उरे बन रहा हो।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है भाई? देखो मौसम कभी गर्मी का है, कभी एकदम बरसात आ गई, ठंड होगी, तो ऐसे में खांसी जुकाम भी फटाफट तैयार है। बस
3: और... बस यही है मैडम। देखो सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी हिसाब से मच्छर भी ज्यादा होंगे जैसे बारिश होगी।
1: देखो आज का विषय भी हमारा यही है ना, कि पहला सुख निरोगी काया।
3: अगर निरोगी काया मैम तो सब कुछ है संसार।
1: बिल्कुल सही बात।
3: नहीं तो चाहे कितना भी पैसा पास पड़ा, कितने भी खाना पास पड़ा, कुछ भी है, अगर शरीर में दिक्कत है तो वो सब वेस्ट है हमारे लिए।
1: अब कहते ना कि हाय इसका तो शुगर हो रही, और उसके गद्दे से मिठाई धरी, क्या करेगा वो?
3: वो कुछ भी नहीं कर सकते मैडम, वही बात है इसमें भी।
1: अभी है ना, पहला
3: निरोगी काया तो ऐसा है मैडम, हमें अपने मतलब घर के काम तो खुद ही करने चाहिए, तभी थोड़ी सी निरोगी काया भी रहेगी।
1: यही है ना कि अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, अपने शरीर को अगर हमने चालू रखना है तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। यानी आप सही टाइम पे खाना खाएं, सही टाइम पे अपने काम करें, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना, ये चीज है।
3: बस ये है, अपना घर में खाना बना के खाओ, एकदम मिलावटी चीज से दूर है और स्वास्थ्य एकदम ठीक है।
1: यानी फास्ट फूड जो है वो नहीं खाने चाहिए। बिल्कुल।
3: बस
1: अब बच्चों को भी हमें यही समझाना चाहिए ना, घर पे बना के दे जो चीजें देनी है, जो खाना है।
3: बिल्कुल बिल्कुल। देखो आज तो इतनी फैसिलिटी आ गई, यूट्यूब पे देखो, फेसबुक पे देखो, हर चीज बनाने का तरीका है।
1: बिल्कुल है जी, बिल्कुल है।
3: और अगर हम अपने घर में ही बना बना के दिए जाएंगे तो बाहर की चीजें कम खाई जाएंगी।
1: अब जो मौसम के अनुसार चीजें आती है, अब गर्मी है, गर्मी में कितनी चीजें ऐसी हैं जो हरी सब्जियां हैं, बच्चों को वो खिलाएं, दही है, लस्सी है, ये चीजें दे बच्चों को। अब आप जूस पीते हो वो भी डिब्बे वाले, तो बेटर है कि आप घर में जूस बनाएं, या फिर आप लस्सी है जो दही है वो उसकी लस्सी बना लें, नींबू पानी का रस बनाएं वो दें, क्योंकि जैसा मौसम है उसके हिसाब से अगर खान पान रखेंगे तभी सही रहेगा।
3: बिल्कुल मैम बिल्कुल। अब जो लोकल है गाँव में है,
1: हाँ जी,
3: अब तो देखो गाय भैंस तो वो भी नहीं रख रहे, लेकिन वो भी दूध लेके किसी से, तब भी घर के दूध दही

0: इस्तेमाल करते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ये चीजें जरूरी हैं। और आजकल तो आजकल तो जैसे अब शादियों का भी सीजन चल रहा है ना, तो शादियों में देखो ना आप किस तरह खाना पीना चला है।
0: हमारा तो सब कुछ चलता है मैडम, जैसे मौसम के अनुसार भी। और
1: नहीं पर इसमें ना देखो खाने का आपको ध्यान रखना,
0: बनाना आज तो
1: भी कभी ठंडा खा रहे हो तो उसके ऊपर एकदम से गर्म मत खाओ। अब आपने गर्म रसगुल्ले खा लिए
0: तो देखो रखते हैं
1: हाँ, और फिर आइसक्रीम ठंडी है, फिर आपने कॉफी पी ली, तो उससे क्या होगा, आपको आपको ही दिक्कत होगी ना उसमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो बोलते हैं सर्द गर्म हो गया
1: हाँ, तो उससे उल्टा बीमार हो जाओगे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा ही। तो आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
0: गीत तो मैडम ऐसा है, ब्याह शादी का सीजन चला हुआ है और आज आपको पता ही है रिश्ते तो देखो अपने बराबर वाले नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की वाले हो चाहे लड़के वाले हो ये देखते हैं कि हमसे बड़े उसके हो।
1: हाँ, बिल्कुल सही बात।
0: लेकिन अगर रिश्ता अपने बराबर का होगा ना तो सबसे बेस्ट है, और मजा भी इसी में ही है, बच्चे भी खुश और अपने आप भी खुश।
1: बिल्कुल सही बात है। तो आपकी पसंद का आपको ये गीत सुनाने कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हाँ जी, यही चला दीजिए, रिश्ता ना कोई करियो अपने से बड़े घर में।
1: ठीक
0: ठीक है जी, धन्यवाद जी।

बनो बात बिल्कुल सही कही है कि रिश्ता जब करे तो बराबर में देख के करना चाहिए कि अपने से ना छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो, क्योंकि जो बराबर का होगा तो दिवे बात निभेगी। और भानो जब रिश्तेदारी बनाई जा है तो वो निभान खातर ही होनी चाहिए। यूं ना हो इब आपने रिश्ता तय कर लिया लेकिन आपके मन में लालच आ जाए कि नहीं मैंने यूँ भी मिल जाए यो भी मिल जाए। जब बालक पढ़े लिखे हैं समझदार हैं और अपना खुद कमा सकें तो इससे बड़ा और क्या चाहिए। आपने दोनों बालक अपना खुशी खुशी कमाओ और खाओ, ना माँ बाप पे बोझ और ना खुद पे। तो इस तरह अगर हम उनका साथ देंगे तो बड़ो जिबे अच्छा लग गया और जिबे बच्चे ने भी खुशी हो कि माँ बाप हमारी साथ हैं। तो जब भी आप कोई रिश्ता कर रहे हैं तो इस बात ने ध्यान में रखें। बड़ो देखो ये तो हम बात कर रहे हैं लेकिन साथ के साथ ही अपनी आवाज आ उसी बात पर कि हमने जो टॉपिक शुरू कराया था पहला सुख निरोगी काया। तो बड़ो इसका अर्थ ये है कि भी जीवन का सबसे बड़ा आनंद और पहला सुख के है आपका अगर स्वस्थ है शरीर है, यानी आपका स्वस्थ शरीर होगा तो आपको धन दौलत ऐश आराम जब सब अच्छे लगेंगे। लेकिन जब आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा, आप बीमार होंगे, तो जो भी संसार की सुख सुविधाएं हैं भानो उनका क्या फ़ायदा। तो उसका आपने जब कोई लाभ ना मिल सका। तो कहने का यही अर्थ है कि भानो जब आपका शरीर सही है तो वही आपके लिए सबसे बड़ा धन है। और यदि शरीर स्वस्थ है तो जीवन की हर खुशी का आनंद आप ले सके हैं और जो भी आपके लक्ष्य हैं जो भी आपका काम है बनो उसने आप प्राप्त कर सके हैं। और कह भी गया है कि लोक परंपरा जो है उसमें मानना है कि सात सुख, यानी पहला सुख निरोगी काया, दूसरा घर में हो माया, और तीसरा कुलवंती नारी, और चौथा बनो पुत्र हो आज्ञाकारी, और फिर के कहा सुंदर आवास, स्वदेश में आवास, और फिर संतोषी जीवन। यानी घूम फिर का बात बनो उड़े आ जाए कि जो इतने सुख हैं इन सुखों का आनंद कद मिलेगा आपने, जब आपका स्वास्थ्य सही होगा, आपका शरीर निरोगी होगा।

यानी कोई बीमारी ना हो। ये वो कहते ना भी मीठा खाना जी करे, पर मीठा डॉक्टर ने पहले में बंद कर रखा, फिर कहेंगे तली भुनी चीज़ यानी पकौड़े खाने का जी कर गया तो वो भी डॉक्टर ने पहले में बंद कर दिए। तो जब ये चीज़ आप खा ही नहीं सकते भनो, इनका आनंद ले ही नहीं सकते, तो फिर आप उनका नहीं देखने का भी मन नहीं करेगा ना, तो घर में तो बनानी दूर की बात। तो इस करके सबसे जरूरी यही है कि भी अपना जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखें, यानी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। और जब आपके जीवन में कोई खुशी है उसका आनंद आप ले रहे हैं, इब नाचना जी करने लग रहा कि ब्याह में नाचना है, लेकिन नाचो क्यों करवाना, गोड्या में दर्द हो रहा, तो आपने देखो ना अभी मेरे पर खड़े होगा चल लिया जावा नहीं, अर्जी करे नाचण का, लेकिन दो कदम चाल का मैं नाच भी ली, लेकिन फिर क्यों होया, बैठ गई आराम तक। तो इस करके अगर आपने कोई दिक्कत है कोई बीमारी है तो भनो उसने ठीक करने का उपाय सोचो। सबसे पहले अपना जो खान पान है उसने सही रखें, टाइम से खाना और टाइम से ही आपने काम करने हैं। और ऐसा है कि तड़के वक्त तय उठो, थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा सैर करें, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। और दूसरी बात भनो ये ले लिया एक विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर, तो भनो ये भी देखो हमारे स्वास्थ्य के लिए ही है कि जो नशा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का नशा भनो, तंबाकू का है, शराब का है, उसका है, तो इन सारी चीज़ों से हमने ध्यान रखना है कि किस तरीके से बचा जा सका है। तो अगर इन पर हम ध्यान रखेंगे तो जिबे हमारा जो स्वास्थ्य है वो सही रहेगा। और तंबाकू वाले पर क्योंकि तंबाकू से आपके जो गला है मुंह है उसमें देखो कैंसर की बीमारी भी बन सका है, स्वास्थ्य खराब हो सका है, तो इसीलिए इन चीज़ों का हमने अगर इस्तेमाल कम करें या ना ही करें, क्योंकि यो रीत एक बार लग जाए ना, आपने आदत बन जाए और आप टाइम पर उस चीज़ ने ना मिला तो फिर आपका शरीर चाहोगा कि मैंने यह चीज़ मिल जाए। इब जिस ढाल में चाह पीऊँ तो एक घंटे बाद अगर मैंने चाह ना मिला ना, दो घंटे बाद तो नहीं हो जाए, कुछ कमी सी रहेगी, इन शरीर कहेंगे शरीर ढीला सा पड़ गया, चाह पी लूँ तो नहीं सोचूंगी मेरे में एनर्जी आ गई तो थोड़ा काम अच्छे ढाल कर लूँगी। यह आदत ना बनावा ताकि एक लत लग जाए उस चीज़ की। तो जितना हो सके इन चीज़ों का हम ध्यान रखा और इन चीज़ों से अपना बचाव रखा, ताकि अब चाय की बजाय जो मैं थोड़ा सा दूध पी लूँ या शरबत बनाकर वो पी लूँ, कोई लस्सी है वो पी लूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मनो फिर भी मैंने उसका जी करे कि ना मैं चाय पी लूँ, तो ये ध्यान रखें कि अगर मैं चार बार दिन में चाय पीऊँ तो कम से कम उसने मैं दो बार कर दूँ। तो इसी तरह जो तंबाकू का नशा कर रहे हैं उनके शरीर में कितनी बीमारी हो जाए, और इसके साथ साथ जो बीड़ी पीवे है ना, जो दूसरा कोई उसके साथ बैठा हो तो उसके जो धुआं है बीड़ी का वो उस तक जावा और उसने भी बीमार करे। तो पीने वाला तो देखो बीमार हुआ ही है, उसने तो दिक्कत आएगी, लेकिन जो नहीं पींदे बनो उन तक भी वो धुम्मे का जो असर है ना वो जावा है। तो इस करके ध्यान रखें कि अपने आसपास में पड़ोस में कोई इसे हैं या कोई बीमार है और उड़े आप कलाए बैठे हो, उसका धुम्मा तो जावे है ना, तो ये ध्यान रखें कि आप अपने लिए तो खतरा मोल ले रहे हैं लेकिन दूसरे ने भी आप दे रहे हो। तो हमने अपने बच्चों को समाज में जो दूसरे लोग हैं उनको जागरूक करना है, और इनको जागरूक करने के लिए ही ये तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जा है। तो हमने भी थोड़ा सा सहयोग देना चाहिए, एक दूसरे को समझाना चाहिए ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके, इन नशा में कुछ नहीं है। तो भनो ये हमारे कार्यक्रम का समय होया समाप्त, तो सारी बहना ने राम राम।

0: सब बच्चे मिलकर बोलेंगे
1: जय।
2: बाल सभा सुनने वाले सभी प्यारे प्यारे बच्चों को और जो स्टूडियो में आए हैं बच्चे, उन सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ खास दिनों की हम जानकारी आपको पहले देते हैं इस कार्यक्रम में, तो इस बार 31 मई को हम मना रहे हैं तंबाकू निषेध दिवस, यानी कि तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि तंबाकू आपको पता ही है, यूं तो आप हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी देखिए, सभी को अपने अच्छे और बुरे की खबर होनी चाहिए। तो आपको हम बताते हैं, तंबाकू जो है वो सेहत के लिए नुकसानदायक है। आप ध्यान रखिए कि आपके आसपास घर परिवार में कोई भी तंबाकू का सेवन ना करे। और अगर आपको कोई बहलाता फुसलाता है, तो आपने ध्यान रखना है कि आपने किसी के बहकावे में आकर तंबाकू को छूना भी नहीं है। क्योंकि एक बार अगर हम ले लेते हैं ना तंबाकू, तो इसकी आदत लग जाती है। इसलिए सभी प्यारे बच्चों को और सुनने वाले बच्चों को हम कहना चाहेंगे कि घर में भी किसी को भी तंबाकू का सेवन नहीं करने देना है। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना, वो सूत्रधार हैं अच्छी बातों के, अपने घर में भी और बाहर भी, समाज में भी। तो अगर आप हमारी बात को समझेंगे और उसे दूर दूर तक फैलाएंगे, तो फिर देखिए, हर बुराई समाज में से जड़ से ही निकल जाएगी। और अब ये तो जानकारी दे दी हमने आपको।
0: और बच्चों, अब ये बताइए, छुट्टियों में आपने क्या क्या काम करने हैं? नंबर एक बात, शैतानी नहीं करनी, मम्मी पापा को तंग नहीं करना है। और जो अपनी छुट्टियां हैं, उन्हें सृजनात्मक तरीके से आपने व्यतीत करना है, रचनात्मक तरीके से आपने ये पूरी की पूरी छुट्टियां बितानी हैं। अब देखिए, छुट्टियां होती क्यों हैं? एक तो गर्मी तो बहुत होती ही है, लेकिन दूसरा भी एक हम इसको जोड़ते हैं कि परिवर्तन जो है वो जिंदगी में खुशियां लेकर आता है। अब आप किसी भी कार्य को लगातार करते रहें तो उससे आपकी ऊर्जा खत्म होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे कार्य करते करते अगर आप बीच में थोड़ा सा रुक जाते हैं और थोड़ी छुट्टियां ले लेते हैं, तभी तो देखिए, जो इतवार की छुट्टी है, रविवार का दिन आता है, वो इसीलिए शायद बनाया गया होगा कि 6 दिन तक लगातार काम करने के बाद आपको थोड़ा परिवर्तन चाहिए होता है, ताकि एक दिन आप संपूर्ण आराम करें और उसके बाद दोबारा से काम करने का भरपूर मजा उठा सकें। अब इन छुट्टियों में आप बच्चे क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये नहीं भूलना है कि आपको वापस स्कूल में ही जाना है। इसलिए आप जिस भी कक्षा में हैं, उसकी तैयारी खूब अच्छे से अगर पहले से छुट्टियों में कर लेंगे, तो सारा साल आपको बहुत आसानी रहेगी। और दूसरे, अगर आपकी कोई अच्छी आदत है, आपको उस आदत के साथ समय व्यतीत करने का वक्त मिल जाता है। जैसे मान लीजिए, आपको पेड़ पौधों से प्यार है, तो आप तरह तरह के फूल लगा सकते हैं और बागवानी पे अपना ध्यान दे सकते हैं। अगर आपको नृत्य से प्यार है, तो आप डांस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको संगीत सीखना है, तो आप संगीत भी थोड़ा सा सीख सकते हैं। तो इस तरह से छुट्टियों को बिल्कुल आपने रचनात्मक तरीके से प्रयोग करना है। और आप चलते हैं पहले बच्चे की तरफ। क्या नाम है इस बच्चे का?
3: एकलव्य।
0: एकलव्य, क्या सुनाएंगे आज आप?
3: कविता।
0: कविता सुनाएंगे, स्वागत है, सुनाइए।
3: जियो और जीने दो, मुस्कुराना सीख लो, हर गम को भुला दो, मुस्कुरा कर उड़ा दो, कभी खुशी कभी गम, यह तो है हर दम, वक्त में है दम, ना तुम ना हम, वक्त है हर दम, कभी गर्म कभी नर्म, कभी धूप कभी छाव, कभी सुबह कभी रात, कर लो दोस्ती वक्त से, मेहनत से, अनुशासन से, वीरता से, गंभीरता से, पल में है पल, बदल जाएगा, वक्त बदलता है, बदल जाएगा, वक्त बदलता है, बदल जाएगा।
0: भाई, बहुत ही प्यारी कविता। पल में ये पल जो है बीत जाएगा और वक्त बदल जाएगा। यूं भी कहते हैं कि वक्त हमेशा एक समान नहीं रहता, कभी आपका अच्छा वक्त है तो कभी बुरा वक्त भी आ जाता है। अच्छा, बच्चों के लिए क्या बुरा वक्त होता है? बच्चों के लिए तो यही एक बुरा वक्त है कि आज हमारी उस साथी से लड़ाई हो गई, आज हमारा टाइम ही खराब था, कहते हैं ना आप अक्सर।
1: जी दी।

0: तो इसी को कहा गया है कि वक्त हमेशा एक समान नहीं रहता, वक्त हमेशा बदलता रहता है। यूं भी कहा गया है कि वक्त का पहिया तो गोल घूमता है, कभी सुख कभी दुख, कभी धूप कभी छांव, कभी सुबह कभी शाम। तो इस तरह से हमारा वक्त बीत जाता है। अब हम यही कहेंगे अपने प्यारे प्यारे बच्चों से और सुनने वाले श्रोताओं से भी कि वक्त की कीमत को पहचाने, वक्त को जाया मत करें बिल्कुल भी, और हर काम वक्त पर करने की आदत भी डालें। उसी में हम सब की भलाई है और देश की भी तरक्की उसी में है कि अगर हम अपना सभी काम वक्त पर निपटा लेते हैं, वक्त पर खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, तो इसी में हम सब की भलाई भी है और हमारे देश की तरक्की भी है। और हम भी वक्त की नजाकत को पहचानते हुए देखते हुए जल्दी से अगले बच्चे की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर हम बातें करते रहेंगे तो वक्त बीत जाएगा और कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा और आपकी बारी भी नहीं आएगी कविताओं की, चुटकुलों की या फिर पहेलियों की जो आप लेकर आए हैं हमारे लिए। तो चलिए आप बताइए आपका क्या नाम है?
1: ख्याति।
0: ख्याति, क्या सुनाएंगी आप हमें?
1: कविता।
0: कविता, स्वागत है।
1: भारतीय रेल की यात्रा। भारतीय रेल की जनरल बोगी आपने भोगी ना भोगी, लेकिन हमने जरूर भोगी। एक बार करनी पड़ी रेल से यात्रा, देखकर स्टेशन पर यात्रियों की भारी मात्रा, हमारे पसीने छूटने लगे और हम अपने घर को फूटने लगे। तभी एक कूली आया और बोला, अंदर जाओगे? हमने कहा, पहुंचाओगे? उसने कहा, बड़े बड़े पार्सल पहुंचा दिए हैं साहब, तुम्हें भी पहुंचाएंगे। हमने कहा, कितने पैसे लोगे? वह बोला, 15 रुपए, 5 रुपए आपके और 10 रुपए आपके सामान के। हमने कहा, सामान तो नहीं है। वह बोला, आप क्या सामान से कम है? तभी दी ट्रेन ने सीटी और हम अपने डिब्बे में चढ़ गए। डिब्बे का दृश्य ही घमासान था, डिब्बा अपने आप ही पूरा हिंदुस्तान था। लोग खड़े थे, बैठे थे, लेटे थे, जिन्हें सीट नहीं मिली थी वे बर्थ के नीचे पड़े थे। तभी एक बोरा आया और गंजे के सिर पर धड़ाम से गिरा। गंजा चिल्लाया, ये किसका बोरा है? तभी बोरे में से एक छोटा बच्चा निकला और बोला, अंकल आप तो अभी से घबरा रहे हैं, पीछे मेरे पापा गद्दे में लिपट कर आ रहे हैं। तभी गिरी एक आदमी के सिर पर बूंदे, वह चिल्लाया, कौन है ये, कौन है ये? बूंदे गिराकर भी मौन है। तभी एक आदमी बोला, माफ करना भाई, हो सके तो मुंह भी छिपा लीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा, अगली बार क्या परोसा। तभी गाड़ी जोर से हिली, किसी ने कहा, या अली या बली। मैंने कहा, काहे की अली काहे की बली, सबर करो अभी दूर है दिल्ली। धन्यवाद।
0: तो भाई बड़ी ही अच्छी ये हास्य व्यंग की कविता हमें ख्याति ने सुनाई और सभी बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे और हंसी तो हमें भी खूब आई और इतना मज़ा आया। और जो आपने एक दृश्य हमें दिखाया कि किस तरह से एक साधारण इंसान अगर जाता है और सफ़र के लिए यात्री, उसको क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं या झेली, भाई ये तो बात मजाक की थी। अब अगर हम बात को यहाँ से थोड़ा सा मोड़ दे दें तो कई दफा क्या होता है कि भारत तो विविधताओं का देश है, सभी को पता है ना, भारत एक विविधताओं का देश है।
2: जी दीदी। जी दीदी।
0: तो यहाँ पर अक्सर ऐसे रश वाले इलाके हमें देखने को मिल जाते हैं और इसी भीड़ वाले इलाकों में कई दफा क्या होता है कि झगड़े भी हो जाते हैं, आपको पता ही है, पता है ना, झगड़े हो जाते हैं कि मैंने पहले जाना है या मैंने बाद में जाना है या मैंने तुझसे पहले जाना है। तो इस तरह की बातें अगर हमारे मनों में ना हो और आपसी सद्भाव रहे, पहले आपकी भावना, पहले हम से, अगर इसी भावना को हम पहले आप में ले लेंगे तो हमारे झगड़े तो दूर की बात है बल्कि आपसी सद्भाव और प्रेम इतना उत्पन्न हो जाएगा कि इसे आप सदियों तक याद भी रखेंगे। क्योंकि ट्रेन एक ऐसा माध्यम है कि यहाँ पर कहते हैं रिश्ते बन भी जाते हैं। आपने मान लीजिए 5 से 6 घंटे तक किसी के साथ बैठ के सफर किया, उसके साथ अपना हालचाल बताया, उसे अपनी बातें बताई, उसकी बातें सुनी, तो इस तरह से कभी कभी छोटे छोटे रिश्ते, प्यारे प्यारे रिश्ते डेवलप भी हो जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि सभी में आपसी सद्भाव होना चाहिए, प्रेम और प्यार की भावना होनी चाहिए और ये राष्ट्र की प्रगति के लिए भी जरूरी है कि हम आपस में प्रेम भाव से मिलकर रहें, हमारे में सद्भावना की लहर है वो बहती रहे हमेशा। तो अब ख्याति की एक इतनी प्यारी कविता के बाद चलते हैं अगले बच्चे की तरफ। क्या नाम है इसका?
2: करमन्य।
0: करमन्य क्या सुनाएंगे?
2: कविता।
0: कविता स्वागत है, सुनाइए।
2: गिरना भी अच्छा है, औकात का पता लगता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वह लोग सच्चे होते हैं, मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों को बढ़ने का हुनर, सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है।
0: तो भाई ये छोटी सी और प्यारी सी आपने कविता हमें सुनाई, आपने अपनी कविता के माध्यम से हमें ये समझाना चाहा कि अगर इंसान को अपनी मंजिल तक जाते जाते रास्ते में कोई ठोकर लगती है, वो गिर जाता है, तो गिर कर उठ जाना बहुत अच्छी बात है, इसकी बजाय कि आप गिर जाएं और आगे ना बढ़ने का एक निर्णय ले लें, ये अच्छा है कि आप ठोकर खाकर उठें, संभलें और फिर चलें अपनी मंजिल की तरफ। तो मंजिल ऐसे लोगों को ज़रूर मिलती है जो दृढ़ निश्चयी होते हैं। और अब अगले बच्चे की तरफ चलने से पहले ये बताइए कि सब बच्चे कुछ सुनना पसंद करेंगे?
3: जी जी दीदी।
0: और आपको भी पता है कि हम क्या सुनवाएंगे? क्या सुनवाएंगे?
3: देश गान।
0: बिल्कुल सही पहचाना, सुनते हैं ये देश गान।

0: कैसा लगा सभी को ये देश गान?
1: बहुत अच्छा।
0: पसंद आया ना सबको?
1: जी।
0: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हमारे ये देशगान होते हैं जो हम बाल कार्यक्रम में अक्सर सुनवाते ही रहते हैं। ये प्यारी सी बच्ची हमारे साथ बैठी है, क्या नाम है आपका?
2: विधि।
0: विधि, बड़ा ही प्यारा नाम है आपका। किसने रखा था, मम्मी ने पापा ने?
2: दादाजी ने।
0: दादाजी ने रखा था। तो दादा दादी तो वैसे भी बच्चों के बहुत प्रिय होते हैं और दादा दादी को अपने पोता पोती बड़े प्रिय होते हैं। तो आपके दादा दादी भी आपको खूब प्यार करते होंगे विधि?
2: हाँ जी।
0: तो आप भी अपने दादा दादी को प्यार करती हैं?
2: हाँ जी।
0: उनका ख्याल भी रखती हैं?
2: हाँ जी।
0: और आज आप हमारे लिए क्या लेकर आई हैं?
2: एक सुंदर सी कविता।
0: अरे वाह, क्या बात है, सुंदर सी कविता और सुंदर सी ही विधि। तो सुनाइए हमें वो कविता।
2: अंधेरों के साथ चलूं ये मुझको मंजूर नहीं, बनके लव दिए कि उम्र भर जलूं, शायद ये मेरा कसूर नहीं, मुझको तो बस ऐसी राह जाना है, जो मंजिल जो पथ अनजाना है, चाहती नहीं मुझे कोई पग पग सहारा दे, चाहती हूँ सिर्फ इतना मेरा संग मुझे किनारा दे, क्योंकि मैंने हमेशा संघर्ष को सहारा है, शायद यही मेरी जिंदगी मेरे अंगूलों का इशारा है। धन्यवाद।
0: क्या बात है विधि, संघर्ष को हमेशा सराहा है। और वाकई संघर्ष इंसान के पैदा होने से ही प्रारंभ हो जाता है और बिना संघर्ष के तो जिंदगी भी कुछ नहीं, क्यों? ठीक बात है ना? लेकिन बचपन में संघर्ष नहीं होना चाहिए। बचपन में क्या होना चाहिए? खुशियां ही खुशियां, चारों तरफ बिखरी हुई हमारे खुशियां ही खुशियां होना चाहिए। अब चलते हैं हम अगले बच्चे की तरफ, ये काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रही है। क्या नाम है इनका?
3: नव्या।
0: नव्या, और आप हमारे लिए क्या लेकर आई?
3: कविता।
0: आप भी सुंदर सी कविता ही लेकर आई हैं, बहुत अच्छी बात है। नव्या, कविता का नाम क्या है, शीर्षक क्या है?
3: हिमालय।
0: हिमालय, क्या बात है। और मुझे लगता है कि ये गर्मी के मौसम में सर्द हवा का झोंका बनकर ये पोयम आने वाली है, ये कविता आप सुनाने वाली हैं हमें। तो सुनाइए अपनी कविता।
3: अधिक हिमालय खड़ा है, आंधी हो या चाहे तूफान, सुना रहा नीले अंबर को भारत की महिमा का गान, सुनो सुनो ये बता रहा है भारत का गौरव इतिहास, भारत जिनसे दुनिया भर को दिया ज्ञान है शुभ उजास।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर कविता। हिमालय और तालियां कहाँ है आपकी, भूल गए आप तालियां बजाना? सब लोग लगता है इस ठंडी सी हवा के झोंके में गुम हो गए थे, क्योंकि गर्मी बेहद है तो इसलिए मुझे लगता है ठंडी हवा का झोंका आया और आप सब ताली बजाना भी भूल गए, ऐसा ही हुआ था?
1: हाँ जी।
0: हाँ जी कह रहे हैं, ये बच्चे कितने प्यारे हैं। और अब चलते हैं अगले बच्चे की तरफ, क्या नाम है इसका?
4: अभय।
0: अभय, क्या सुनाएंगे हमें?
4: पहेलियां बूझेंगे।
0: अरे पहेलियां बूझेंगे, तो सब बच्चे पहेलियां बूझने के लिए तैयार?
1: जी दीदी।
0: तो सुनते हैं अभय की पहेलियां, देखते हैं ये पहली पहेली कौन सी लाए हैं।
4: हवा से तेज कौन चलता है?
0: हवा से तेज कौन चलता है?
5: चीता।
0: चीता, जहाज, क्या इनमें से कोई सही जवाब है?
4: नहीं दीदी।
0: नहीं कोई भी सही, तो इसका सही जवाब एक बार मैं भी कोशिश करूं?
4: जी दीदी।
0: इसका सही जवाब है मन।
4: सही है।
0: सही जवाब, तो मेरे लिए तालियां। तो बुझिए अपनी अगली पहेली।
4: विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है?
0: विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है, बताइए बताइए।
6: विदेशी।
0: विदेश जाने वाले का साथी विदेशी। मुझे नहीं लगता ये सही जवाब होगा, क्यों अभे?
4: जी दीदी।
0: सही नहीं है ना ये जवाब? नहीं, ये सही जवाब नहीं है, आप बताइए।
6: भगवान।
0: भगवान। भगवान।
5: जहाज।
0: भाई बच्चे अपना दिमाग तो दौड़ा रहे हैं, बताइए बताइए।
6: हवाई जहाज।
0: मुझे लगता है इनमें से कोई भी सही जवाब नहीं है, तो अभी इसका सही उत्तर आप ही बताइए।
4: विद्या।
0: विद्या सही धन है। भाई आप देखिए ना, विदेश में अगर एक इंसान जा रहा है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे कुछ पता नहीं है, तो वो जाके वहां पर गुम हो सकता है, खो सकता है वहां की भीड़ में। लेकिन अगर एक इंसान पढ़ा लिखा है, अच्छे से उसने विद्या ग्रहण की है, तो उसे सभी नियमों कायदे और कानूनों का उसे पता होगा, उसे जानकारी होगी, तो उसके खो जाने का डर बिल्कुल नहीं होगा। तो सही साथी कौन हुआ विदेश में?
1: विद्या
0: यानी पढ़ाई। चलिए अगली पहेली बूझिए।
4: किस चीज को खो जाने पर दुख नहीं होता?
0: किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होगा? हाँ जी आप बताइए इसका सही जवाब।
6: यक्ष।
0: यक्ष नहीं, नहीं ना?
4: जी दीदी, इसकी ये गलत है।
0: ये गलत जवाब है। तो आप बूझिए, आप बताइए, आप एक बार पहेली दोहरा दीजिए।
4: किस चीज के खो जाने पर दुख नहीं होता?
0: कौन सी ऐसी चीज है अगर वो खो जाएगी तो दुख नहीं होगा आपको? बताइए बताइए। नहीं पता सही जवाब तो आप ही बता दीजिए अभी।
4: क्रोध।
0: क्रोध, बहुत ही सही जवाब, तालियां। और अगली पहेली।
4: कौन सा एकमात्र उपाय है जिससे जीवन सुखी हो जाता है?
0: एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे जीवन सुखी हो जाता है, भाई वो तो हम भी अपनाना चाहेंगे।
7: अनुशासन।
0: अनुशासन, अनुशासन सही जवाब है।
4: जी दीदी।
0: सही जवाब, तालियां। तो भाई ये पहेलियां ही नहीं थी, ये अपने आप में एक जानकारी समेटे हुए थी और अपने आप में एक बहुत अच्छा सा संदेश समेटे हुए थी कि क्रोध खो जाएगा तो हमें दुख नहीं होगा और क्रोध को खो ही जाना चाहिए, हमारी जिंदगी से चले जाना चाहिए। विदेश में अगर आप जाएंगे तो आपका सही मित्र कौन है? विद्या है, जो आप पढ़ते लिखते हैं वही आपकी जो पढ़ाई है वही आपका सही दोस्त रहेगी जब आप विदेश में जाएंगे। इसी तरह से आपने और भी बहुत अच्छी अच्छी पहेलियां बूझी और भी अच्छी अच्छी बातें बताई। और अब एक काम की बात मैं आपको बताती हूँ, जब अभय ने कहा पहेलियाँ तो हम भी सोच रहे थे कि ये पहेलियाँ नहीं हैं, ये एक कुछ प्रश्न उन्होंने आपसे किए हैं जो कि हमें नैतिकता का संदेश देते हैं कि हर इंसान में ये अच्छी आदतें होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले बच्चे की तरफ। क्या नाम है इसका?
8: खुशी।
0: खुशी, क्या सुनाएंगी आप हमें?
8: एक कविता।
0: स्वागत है, सुनाइए।
8: ये जीवन क्या है? नेचर है, मस्ती है, इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रही राह मनमानी है। कब फूटा गिरी के अंतर से, किसी अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल से अपने को खींचे। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों का चढ़ता, चलता यौवन में मनमाता। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, नाविक तट पर पछताती हैं, तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है।
0: भाई बड़ी ही प्यारी आपने हमें ये कविता सुनी। जीवन को थोड़ा सा ये बता रही थी कि जीवन किस तरह से हमारा आगे बढ़ जाता है, और जीवन की अगर बात चल ही पड़ी है तो हम आपको यही कहेंगे कि जीवन एक ही मिला है, जिंदगी एक ही मिली है, इसे भरपूर जी लीजिए, लेकिन साथ ही साथ मेहनत करना नहीं छोड़नी आपने। बताइए मेहनत करते हैं सब बच्चे?
1: जी दीदी।
0: बड़ी अच्छी बात है, मेहनत करना तो जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, इसे हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। वक्त जो है वो रेत की तरह मुट्ठी में से फिसल जाएगा, और वक्त का सही उपयोग आप कैसे कर सकते हैं? मेहनत करके। और मेहनत अगर आपने अभी तक नहीं भी की है तो आगे आप मेहनत करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं, तो आप अगर नहीं मेहनत करते हैं तो जरूर कीजिए। और अब चलते हैं अगले बच्चे।
9: आई पहली रत्न हिलोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। ये युग की पतवार बने अम्बुदी महान रहना, पहरुए सावधान रहना, विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदियां हवाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तमान रहना, पहरुए सावधान रहना, ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है, शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है, जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवह मान रहना, पहरुए सावधान रहना। धन्यवाद।
0: तो भाई ये बहुत ही अच्छी आपने देशभक्ति से ओतप्रोत हमें कविता सुनाई, और जैसा कि हमने पहले भी जिक्र कर रहे थे कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है और विविधता में ही एकता है, विभिन्न धर्मों के लोग, जातियों के लोग, पंथों के लोग एक साथ इस देश में रहते हैं, और आपको पता है भारत का जो संविधान है वो हमारे सभी नागरिकों को समानता की स्वतंत्रता देता है, किसी में भेदभाव नहीं करता, देश में शांति और सरकार द्वारा सद्भाव निश्चित करने के लिए विभिन्न कानून भी बनाए गए हैं, तो हमें उन कानूनों का भी पालन करना है। और एक बार फिर से हम ये संदेश देते हैं कि आपसी सद्भाव हमें आपस में बनाए रखना है, तो इसी से हमारी जिंदगी सफल होगी और सुंदर होगी। और इसी के साथ कार्यक्रम से हम लेते हैं अनुमति, सब बच्चे मिलकर बोलेंगे
1: जय हिंद।
7: श्रोता मूवी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

0: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
5: चले
6: ले, आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
8: पर्सनल लोन ऑफर
9: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
8: फ्री ट्रिप टू दुबई,
9: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
10: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
9: तो क्या करूं?
10: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
9: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
10: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
11: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
12: नमस्कार सर। नमस्कार।
13: नमस्कार सर।
2: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे, फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले, फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका, मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
7: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
2: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
12: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है। तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो आप अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
2: वाह वाह बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
12: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू

0: और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
1: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
0: अनिमेश जी।
2: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
0: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर वीर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
0: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
1: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
0: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में

0: सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है, और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जाने बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब, कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था। गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी एक साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितानां कार्याणां विषये शृणुमः तदा वयं नूतनां प्रेरणां प्राप्नुमः। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अहम् एथलेटिक्स् इत्येतस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे देशस्य अनयैव उपलब्ध्या करिष्यामि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव झारखण्डराज्यस्य राँचीनगरे नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इत्याख्या प्रतियोगिता समायोजिता। एतस्यां प्रतियोगितायां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 800 क्रीडकाः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् नवधौ भिन्नासु चतुर्षु स्पर्धासु चत्वारि राष्ट्रिय मानाङ्कनानि भग्नानि जातानि। गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके इत्यसौ, तेजस्विन शंकरः, देवमीणा, कुलदीप कुमारश्च एतैः मित्रैः विभिन्नेषु वर्गेषु नूतनानि कीर्तिमानानि रचितानि। सर्वप्रथमम् अहम् एतान् सर्वान् अपि भूरिशः वर्धापयामि। सखायः, एकस्याः स्पर्धायाः अधिदेशं बहु चर्चा जायमान अस्ति। सा च अस्ति शत मीटर मित धावन स्पर्धा इत्येषा, अर्थात् शत मीटर मितः धावनक्रमः। केवलं दिनद्वये पुरुषवर्गीये शत मीटर मिते धावनक्रमे राष्ट्रिय मानाङ्कनं वारत्रयं भग्नं जातम्। याभ्यां क्रीडकाभ्याम् एतत् भद्रप्रदर्शनं कृतं तौस्तः गुरिन्दरवीरसिंहः, अनिमेष कुजूरश्च। अहं चिन्तितवान् ऐषमः मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे एताभ्यां क्रीडकाभ्यां सह वार्तां कुर्याम्। प्रधानमन्त्री, अनिमेषवर्य नमस्कारः, गुरिन्दरवीरः भवतेऽपि नमस्कारः, सत्श्री अकाल च। अनिमेष गुरिन्दरवीरौ नमस्कारः श्रीमन्। नमस्कारः महोदय। प्रधानमन्त्री, साधु भ्रातः, भवता तु अतिविशिष्टा उपलब्धिः समधिगतास्ति। भवद्युगलमपि विशेष प्रदर्शनम् अकरोत्। वयं सङ्गीते तु युगलप्रदर्शनं दृष्टवन्तः, परं समाह्वानेऽपि अधुना युगलप्रदर्शनं भवति। तत्र प्रथमम् एकः समाह्वानं पुरस्करोति, द्वितीयश्च तत् समाह्वानं स्वीकरोति, तृतीयवारं पुनश्च समाह्वानं करोति। अत्यन्तं रुचिकरः विषयः अभवत् भवतोः। अहमिच्छामि मन की बात इत्यस्य श्रोतारः अपि एतस्मिन् विषये भवतोश्च विषये जानीयुः। भवद्भ्यां यः पराक्रमः कृतः तं विषयमभिजानीयुः। अनिमेषः, नमस्ते महोदय, मम नाम अनिमेष कुजूरः। अहं 200 मीटर 400 मीटर इत्यनयोः राष्ट्रीय कीर्तिमानाङ्कन धर्ता अस्मि। अथ च महोदय, अहं मूलतः छत्तीसगढ़तः अस्मि, अधुना च अहं ओडिशा पक्षतः क्रीडामि। विगतवर्षे अहं एशियन अथ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इत्येताभ्यां पदकानि समर्जितवान्। अथ अहं एथलेटिक्स इत्येतां क्रीडाम् 21st-20th वर्षे समारब्धवान्, यदा अहं विद्यालयीयम् अध्ययनं पूर्णं कृतवान्। अहम् अम्बिकापुरस्थितात् सैनिकविद्यालयात् उत्तीर्णः अभवम्। अथ पूर्वमहं पदकन्दुकं क्रीडामि स्म। कोविड् संक्रमणकाले मम पितरौ क्रीडितुं मह्यमवसरं कल्पितवन्तौ। बहिः गत्वा धाव, क्रीडवा इति तौ वदतः स्म। यदा च कोविड् संक्रमणकालः समाप्तिं गतः, तदा मम मित्राणि, यानि मया सह पदकन्दुकं क्रीडन्ति स्म, माम् आहूय विज्ञापितवन्तः यत् राज्यस्तरीयं मेलनं जायमानमस्ति, त्वं गत्वा सहभागितां कुरु। अहं च तत्र सहभागितां कृतवान्। मया एतन्न ज्ञातमासीत् यत् तत्र राष्ट्रस्तरीयं चयनं जायेत। अहम ततः राष्ट्रीय दले चितः।

0: प्रभामहे तदा विश्वासोऽयम् अधिकं दृढो भवति यत् देशः स्वजनानां शक्त्या अग्रे गच्छति। मम भवद्भ्यः आग्रहः अस्ति, स्वं परितः एतादृशान् प्रयत्नान् अवश्यं पश्यन्तु। ये जनाः समाजहिताय उत्तमानि कार्याणि कुर्वन्ति तानि परिचिनुत, तेषां प्रशंसां कुरुत, तेभ्यः शिक्षाम् आप्नोतु। शक्यते चेत् स्वयमपि कस्यचित् सत्कार्यस्य अङ्गं भवतु। आगामि मासे मन की बात कार्यक्रमे अन्याभिः प्रेरणादायिनीभिः गाथाभिः सह पुनरपि भवद्भिः सह सम्बद्धो भविष्यामि। बहु धन्यवादाः, नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात FM एंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम मशहूर पार्श्व गायक केके को याद कर रहे हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत, जिनका नाम है सॉरी भाई। आवाजें केके, सुनिधि चौहान और अभिषेक नलवाल की। गीतकार है अमिताभ वर्मा और संगीत दिया है विवेक ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म सॉरी भाई का ये गीत, और आइए आप सुनते हैं के और तुलसी कुमार का गाया फिल्म नहले पे देहरा इस फिल्म का गाना। गीतकार है पंची जालुनवी और संगीतकार है
1: देहरा इस फिल्म का गाना गीतकार है पंची जालुनवी और संगीतकार है आनंद राज आनंद।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ, गाने वाले कलाकार के और सुनीति चौहान, फिल्म का नाम हमराज।

कार्यक्रम का अगला गाना प्रीतम के संगीत निर्देशन में अनिल भारद्वाज का लिखा हुआ सुनिए। आवाजें हैं केके और राकेश पंडित की और ये फिल्म है स्टम्प्ड।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: फिल्म का नाम है भूल भुलैया, आवाज केके की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं प्रीतम।

कार्यक्रम का अगला गीत अनु मलिक के संगीत निर्देशन में नितिन उरेकवार का लिखा हुआ, इसे आवाजें दी हैं केके और सुनीति चौहान ने। फिल्म का नाम है

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: यह आवाजें के अलीशा चिन्नॉय और जयेश की थी। फिल्म का नाम था दिल ने जिसे अपना कहा। इस गीत को समीर ने लिखा और धुन बनाई हिमेश रेशमिया ने।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: कार्यक्रम का अगला गीत प्रीतम के संगीत निर्देशन में सईद कादरी का लिखा हुआ, आवाज़ केके की, और ये फिल्म है मेट्रो।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं विपिन पटवा के संगीत निर्देशन में डॉक्टर सागर की रचना, स्वर के और अन्वेषा सरकार की। फिल्म का नाम है लव यू सोनियो।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने मशहूर पार्श्व गायक केके को याद किया।

0: प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुरीला सफर के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, है ना? सच सच बताइएगा, इंतजार था ना इस कार्यक्रम का? और मेरा भी जी, इंतजार तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई जीवन से चला जाता है तो वो पल उतना ही दुखदायी हो जाता है, है ना? तो बस आज हम उन्हीं कुछ पलों पर बात करने वाले हैं कि कई बार जीवन में किसी के चले जाने से, हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे विचारों से, हमारे दिल और दिमाग से कहीं जब कोई चला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो एहसास कितना पीड़ादायी होता है। और इसी पर आज हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। हमने हमारी इबारत लिख भी दी है कि किसी के जीवन, घर, विचार से कहीं चले जाने का एहसास बहुत पीड़ादायी होता है साजना, और दीवाने रूट कर न जाने कहाँ चले जाते हैं कि फिर उनके बगैर नींद भी नहीं आती। किसी के छोड़कर कहीं चले जाने पर दिल उनकी धुन में रोता जाता है और जोगी बन जाता है। तो ये है आज का सुरीला सफर। हमने आपको इबारत बता दी है, आपने पढ़ भी ली है, और जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनने भी ये सुन लिया होगा कि आज हमने क्या इबारत रखी है। और साथ ही हम उन शब्दों को भी बता देते हैं जो आज के चयनित गीतों में आएंगे। साजना कहीं दीवाने कहां छोड़ के रूठ कर जाता है नींद धुन दिल और जोगी। जी, ये ठीक उसी प्रकार का दुख कह सकते हैं कि आप ये कार्यक्रम अगर बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो हमें कितना दुख होगा, है ना? बस इसी प्रकार कोई ज़िंदगी से जब चला जाता है और ज़िंदगी को मझधार में रख जाता है तो कैसा लगता है। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक बस उन्हीं रिश्तों से हम जब अपने आप को भरपूर महसूस करते हैं और उसके चले जाने पर, उस किरदार के चले जाने पर हम खुद को तन्हा महसूस करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी से चला गया है, तो बस इसी जाने पर आज इस सुरीले सफ़र को हम तय करने वाले हैं। ठीक है, आप हैं ना हमारे साथ? तो कार्यक्रम का ये है पहला गीत। राजेंद्र कृष्ण की ये रचना है, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है अदालत। इस गाने से जुड़ा है शब्द साजना।
1: समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने गाइडलाइंस जारी की है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीर, मोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी जैसे देसी पेय पदार्थों का सेवन करने का सुझाव दिया।
2: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले आम की किस्मों की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक सौंधी होती है।
2: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा,

0: ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं।
1: प्रधानमंत्री ने झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता की चर्चा भी की। इसमें लगभग 800 एथलीटों ने भाग लिया था। श्री मोदी ने गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। उन्होंने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कजूर से बात भी की।
0: संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूँ कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 400 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं ओडिशा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड की अपनी हाल की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नीदरलैंड सरकार ने चोल कालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। उन्होंने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 प्लेटें भी मिली हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में
4: बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

ये स्वर थे लता मंगेशकर और आशा भोसले की, फिल्म का नाम था अदालत। जी तो हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार अपनी पसंद भेज रहे हैं कि ये गीत हो सकते हैं, और हो सकता है कि हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद आज मिल भी रही है, हमें लग रहा है ऐसा। तो आप तय करिएगा, सुनते रहिएगा और बताइएगा कि कौन सा गीत हमारी पसंद के गीतों से मिला है, यानी हमने जो अपनी पसंद के गीत आपके लिए रखे हैं क्या उससे आपकी पसंद भी मिल रही है। एक श्रोता लिखती है कि कुछ पीड़ाएं अस्थाई होती हैं, अदृश्य होती हैं और जाना सुखद भी है और दुखद भी। कोई जीवन से अचानक चला जाए, इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है, और जब मन को पता है कि ये जाने वाला लौटकर आएगा तो मन को तसल्ली बनी रहती है। कुछ जाने वाले जीवन में रच बस जाते हैं, वे हमारे भीतर रहने लगते हैं। जाना दूरी का विलोम नहीं है, किसी का स्मृतियों से चले जाना हमें वर्तमान से दूर कर देता है। जाना सुखद हो या दुखद, दोनों ही पहलू में एक

व्यक्त बेचैनी छिपी है, मन में एक मानसिक द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो शब्द हमें दिए हैं इन पर कई अच्छे गाने हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, आपको वही गाने तो ढूंढने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी आत्मी के जीवन, घर और विचारों से ओझल हो जाने की पीड़ा रूह को झकझोर देने वाली होती है। उसके जाने से घर के कोने सूने और रातें बेगाना हो जाती हैं, जहां पलकों पर नींद नहीं सिर्फ तन्हाई का पहरा होता है। जब कोई अपना रूठकर दूरियों की चादर ओढ़ लेता है तो दिल का धड़कना भी एक मौन प्रार्थना में बदल जाता है। क्या बात है, ये विरही है जो सांसारिक मोह माया छोड़कर दिल को किसी यादों में जोगी बना देता है। आंखों का सूनापन और ख्यालों में गूंजती उनकी ही धुन सुकून के हर पल को चुरा लेती है। नींद भी गवाह बन जाती है कि कोई अपना कितनी दूर जा चुका है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस कार्यक्रम का शीर्षक सुरीला सफर सार्थक हुआ है। क्यों? क्योंकि आज विषय वस्तु और चुनिंदा शब्द स्पष्ट कर दिए गए हैं। एक कहावत है, जो आया है वो जाएगा भी। वास्तविकता भी यही है कि किसी का जाना हमें उदास कर देता है, क्योंकि जाना बिछो को निरूपित करता है और आना मिलन को निरूपित करता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस सुरीले सफर में गीतों के माध्यम से संगीत की दुनिया की सैर करेंगे। सभी को नमस्ते। बहुत खूब। देखिए बीच में छोड़कर जाइएगा नहीं, है ना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत संबंधों के बिछो में व्यथित हृदय की पीड़ा का बखान है। चाहे ये बिछो प्रेम युगल का हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, हृदय से समर्पित व्यक्ति विशेष का अलगाव वेदनापूर्ण होती है। एकमात्र वक्त ही इस शून्यता की पूर्ति कर देता है। सूत्र प्रदान कर आपने आज के सफर को मनोरंजक और रोमांचक बना दिया है। इंतजार रहेगा। शुक्रिया, आप सभी इस कार्यक्रम को इतना पसंद कर रहे हैं और आपको थोड़ी सी हिंट हमने दे दी है। तो आपने बहुत सारे गाने हमें लिखकर भेजे हैं और बहुत ही शानदार गीत आपने चुने हैं आप सभी ने। लेकिन अब आपकी पसंद मेरी पसंद से मिलती है कि नहीं, ये आपको गाने सुनने के बाद ही पता लगेगा। आइए सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बातें आपसे पूछनी भी तो है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी ज़िंदगी से भी कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका चाहने वाला यूं चला गया कभी? बताइएगा दिल से, सच्चाई के साथ। दूसरा सवाल, सवाल नहीं, एक बातचीत कह सकते हैं, आपके मन के भाव, आपकी ज़िंदगी में क्या घटित हुआ, शायद ये जानना कि क्या आप किसी रिश्ते से बाहर आए हैं, रूठ कर आए हैं, निकल कर आए हैं। ऐसा कभी आपको लगा कि मैंने वो रिश्ता क्यों तोड़ा? इस पर बताइएगा हमें कि आपसे ऐसी गलती हुई या आपने जो किया सही किया क्या? कई बार क्या होता है, हम विचारों का जब हमें मेल नहीं मिलता, हम विचारों से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो हम उस रिश्ते को खत्म कर देते हैं। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। और बाद में हमें लगता है कि अरे थोड़ा सा हम रुक जाते, थोड़ा सा और संभल जाते, थोड़ा सा और समझ लेते किसी को, तो शायद ये किसी की ज़िंदगी से यूँ चले आना नहीं हो पाता या नहीं होता। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपका कोई निर्णय गलत हुआ होगा? आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, मोहम्मद रफी की आवाज़ है, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

जी कितना खूबसूरत गीत, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। हम भी अपने श्रोताओं से यही कहेंगे, कहीं मत जाइएगा इस कार्यक्रम के सिवा। सुनते रहिएगा, बने रहिएगा सुरीले सफर में हमारे साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर पूरा करना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इबारत की शुरुआत दूर चले जाने से होने वाली पीड़ा है। हमें अपनी जिंदगी में कितने अनजान लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ भूल जाते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते

तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। कहते हुए भी कुछ हम भूल जाते हैं, बचपन के दोस्त जवानी में बिछड़ जाते हैं, कभी कभी फिर नौकरी खत्म होने के बाद मिलते हैं। बिछड़े सभी बारी बारी ये सिलसिला चालू रखते हुए हमें जिंदगी का सफर और आज का सुरीला सफर पूरा करना है। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने जज्बात पेश किए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिनकी आवाज में जादू है, जिनके बोलों में मिठास है, जो गंगा नदी की तरह बहती हुई अपने गीतों की फुहार से हम किनारे के पत्थर जैसे श्रोताओं को भिगो कर चली आ रही है, ऐसी भगिनी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, शुक्रिया, मेहरबानी। आप लिखते हैं कि आशीर्वाद बना रहे, सदैव हमारी सागर किनारे बसी बहनों को मिलता रहे, यही शुभकामनाएं। बहुत सुंदर आप अपने जज्बात, अपने आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं हमें देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर को आपने कुछ दिलचस्प बना दिया है। हमेशा की तरह इस बदलाव से लोगों में उत्कंठा जरूर जागृत होगी। हमारे श्रोता बंधु रविवार का आनंद उठा लेंगे। कार्यक्रम में आपने जान ला दी है, वरना कार्यक्रम उबाऊ, नीरस और अप्रासंगिक हो चला था। अपने रोजमर्रा के कार्यों से जल्दी जल्दी निबट कर आराम से कुछ सोच कर लिखने बैठूंगा। नमस्कार। एक श्रोता लिखते हैं कि जाने, यानी एक छोटा सा शब्द है ये, लेकिन अपने भीतर भावनाओं का एक विशाल संसार समेटे हुए है। जाने शब्दों में कई रंगों में ढलता है, कहीं विदाई की कसर, कहीं प्रेम की नमी, तो कहीं यादों की गहराई। जब कोई अपना दूर चला जाता है, तब जाने शब्द में बिछड़ने का दर्द झलकता है। जाने शब्द केवल भाषा का हिस्सा नहीं, बल्कि इंसान की भावनाओं का एक जीवंत आईना है, जिसमें प्रेम, विरह, उम्मीद और यादें एक साथ झलकती हैं। हमारे लिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि हमारे श्रोता कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात कहते हैं और यूं कहें कि अपनी इबारत को किस तरह से पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतनी खूबसूरती से अपनी बात कहने का। हाँ, तो चलते हैं इस शब्द की ओर, दीवाने। कौन सा गीत है पता चला ना आपको? आपकी पसंद से मेल खा रहा है ये गीत, जरा टटोलिए।

जी तो हम भी इस सुरीले सफर के इस सफर में आपसे जानना चाहते थे, क्या आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला क्या कभी यूं चला गया कि आप ठगे रह गए, या आप किसी की जिंदगी से, किसी रिश्ते से रूठकर चले आए, खुद को तन्हा कर लिया आपने और बाद में आपको लगा कि नहीं मुझे यूं नहीं करना चाहिए था। सोचिए जरा, खंगालिए अपने आप को और दीजिए ना जवाब। आपके जवाबों का हमें इंतजार है बेसब्री से। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ और कार्यक्रम को सुनूंगा। बिल्कुल रहिएगा हमारे साथ अंत तक, यही तो इल्तिजा है आज कि जाना नहीं है बीच में छोड़ के। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का जाना, चाहे वो जिंदगी से हो, घर से हो या फिर विचारों से हो, ये वो अवस्था होती है जब मन का खालीपन भी बोलने लगता है। जिसे खोया ही न हो उसकी कमी कैसे महसूस हो सकती है। जुदाई बताती है कि कोई मन की कितनी गहराइयों तक बसा था। कभी कभी पास रहने वाले लोगों के बीच भी दूरियां होती हैं, जो कभी दूर होकर भी कोई बहुत नजदीक होता है। किसी की जुदाई हमें अपनी ताकत से रूबरू करवाती है और सिखाती है कि जो हमें प्रेम करते हैं या हम जिनसे प्रेम करते हैं उनकी कद्र समय रहते कर लेनी चाहिए। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं हम और आज के गाने जरूर सुनेंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अपने शब्दों की माला को गद्यांश में इस तरह पिरोया है कि अपने आप एक भाव उभर कर आया है और वो वियोग और विरह का पर्याय बना है। जाना शब्द कई भाव लेकर आता है, ये न केवल बिछड़ना दर्शाता है मगर मन की उस अवस्था का चित्रण करता है जहां एक ओर खालीपन है तो दूसरी तरफ वियोग और मलाल की मनोदशा को इंगित करना। आज गाने भी विरह की इस स्थिति को गहरा बना देंगे और शायद थोड़े अवसाद की स्थिति में भी रहेंगे गाने सुनकर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अवसाद में चले जाएंगे, लेकिन हाँ उन यादों को हम जरूर कहीं ना कहीं फिर से याद करेंगे कि कहीं हमने किसी को खोया था या कोई हमारी ज़िंदगी से किसी भी कारण से चला गया था या इस दुनिया से चला गया था। आज उस खालीपन को हम इस सुरीले सफ़र में महसूस करेंगे, बस और कुछ नहीं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज़ और फिल्म का नाम आरजू। जी ये गीत सुनने के बाद आप समझ जाएंगे रूठ कर। हमारे बहुत सारे श्रोताओं की पसंद मिलती है इस गीत के जरिए, है ना।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के इस कार्यक्रम से बिछड़ जाएंगे क्योंकि किसी पूजा में जाना है तो बिछड़ने का दुख हम नहीं समझ पा रहे हैं। अरे दुखी मत होइए, कोई बात नहीं, आप पहले अपने कार्यक्रम को निपटाइए, उसके बाद फिर कभी सुन लीजिएगा। रोज ही ये कार्यक्रम आपके लिए हम तो पेश करते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि चलिए विविध भारती का ये सुरीला सफर, जहां आज वियोग की पीड़ा से महबूब और महबूबा दोनों गुजर रहे हैं, ऐसे में तो विरह के वे सुरीले गीत जो विविध भारती की ढलती जाए रात में कभी कभी सुनने को मिलते हैं, आज सुनेंगे और दोपहर में ठंडक पहुंचाएंगे। जी आप देखिए कैसा लग रहा है आपको, तपती दोपहर में गीत आपको सुकून दे रहे हैं क्या, बताइएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जाना केवल कदमों का सफर नहीं बल्कि भावनाओं, यादों और रिश्तों का बिछड़ना भी है जो मन को गहराई तक छू जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कम शब्दों में आपने बहुत गहरी बात कह दी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि जाने वालों की सदा दिल से गूंज जाती है, कुछ यादें उम्र भर की पूंजी बन जाती है, मिलना भी एक किस्सा है, बिछड़ना भी दस्तूर है, जाने की एक आह से कई कहानियां बन जाती हैं। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब कोई हमारी जिंदगी की चौखट लांघ कर हमेशा के लिए दूर चला जाता है तो पीछे सिर्फ एक अंतहीन सन्नाटा छोड़ जाता है, दिल की बस्ती ऐसे उजड़ती है कि हर कोना उनकी यादों की चुभन से रो पड़ता है, रातें जागकर कटती हैं, आंखें बंद करती हैं, उनका चेहरा ख्वाबों में आकर नींदें छीन लेता है। इंसान दुनिया की भीड़ में रहकर भी अंदर से बिल्कुल अकेला और फकीर हो जाता है, जिसका मन बस हर पल उसी एक शख्स की धुन गाता रहता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़कर ऐसा प्रतीत हो रहा है इसमें वियोग की पीड़ा चरम है। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, आपके द्वारा किए गए प्रयोग शानदार हैं, आप इस कार्यक्रम को रोचक बनाए रखे हुए हैं, कुछ गीत आपने लिखा है देखिएगा। हाँ, मुझे लग रहा है आपके कुछ गीत जो हैं हमारे गीतों से मिल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, जिन जिन श्रोताओं के गीत हमारे

पसंद से मिल रहे हैं, उन्हें हम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के कार्यक्रम से अच्छा बिछड़ जाएंगे, मत बिछड़िएगा, आप अन्य किसी कार्यक्रम में शिरकत कीजिएगा, है ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी कोई जिंदगी से चला जाता है तो तकलीफ सिर्फ उसके जाने की नहीं होती, तकलीफ उन आदतों की होती है जो उसके साथ जुड़ गई थी, उन बातों की होती है जो अब किसी से कही नहीं जा सकती, उन सपनों की होती है जो हमने उनके साथ मिलकर देखे थे। ऐसा लगता है कि जैसे दिल का कोई हिस्सा कहीं रुक गया हो उसके साथ। दुनिया वैसी ही चलती रहती है, लोग वैसे ही हंसते बोलते हैं, लेकिन अंदर एक खामोशी घर कर जाती है। हर छोटी चीज उनकी याद में उनकी याद दिलाती है, कोई गीत, कोई जगह, कोई पुरानी बात। और फिर अचानक महसूस होता है कि कुछ लोग दूर जाकर भी हमारी रूह में बसे रहते हैं। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब हम उन्हें भूलना नहीं चाहते, लेकिन हर दिन उनके बिना जीना सीखना पड़ता है। ये दर्द आंसुओं से ज़्यादा उन मुस्कुराहटों में छिपा होता है जहाँ हम ठीक होने का दिखावा करते हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखते हैं कि आज संडे की दिन है, छुट्टी का दिन है, अभी इस समय हमें जाना है, पर उठकर नहीं हम जा रहे, माता रानी के मंदिर से दर्शन करने और गुरुद्वारे में माथा टेकने जा रहे हैं। साजना के साथ सजनी भी होगी, परंतु आज ठीक दोपहर 1 बजे आप हमारे साथ सुरीला सफर में होंगी और मैं स्वयं भी रेडियो के पास बैठकर प्रोग्राम का आनंद लूंगा आपकी मधुर प्रस्तुति के साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उससे पहले एक बार फिर से हमारे सवालों को दोहरा देते हैं कि आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला अचानक चला गया हो किसी भी कारण से, ऐसा कभी आपको लगा कि आप ठगे से रह गए, लिखिएगा ये बात। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है और अब हम उन्हीं श्रोताओं को शामिल भी करने वाले हैं अगली बार। और साथ में आप किसी से रूठकर चले आए हैं, आप किसी की ज़िंदगी से चले आए हैं, आपने किसी रिश्ते को धत्ता बता दिया है, या आप किन्हीं के विचारों से सहमत न होते हुए आपने अपनी दुनिया अलग बसा ली है, ऐसी बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में हमारे साथ होती रहती हैं। बताइएगा आपके साथ क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है। और अब आपके लिए बहुत पुरानी फिल्म किंग कॉन्ग का गीत मैं लेकर आई हूँ। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत।

ग्यावस थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था किंग कॉन्ग। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे जीवन में सबसे अनमोल है हमारा समय, जो एक बार चला गया तो फिर वो लौटकर कभी नहीं आता। वो समय चाहे अच्छा हो बुरा हो, हमारे जीवन में उस समय की सिर्फ यादें रह जाती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि किसी के जाने का दर्द दुनिया के सबसे गहरे दुखों में से एक है। चाहे वो रिश्ता टूटने की जुदाई हो या फिर किसी अपने का हमेशा के लिए चले जाना, ये अकेलापन और खालीपन इंसान को अंतर तक झकझोर देता है। व्यक्ति को ये दर्द ता उम्र सालता रहता है। बहुत सी बातें अधूरी रह गई हमारे दरमियान, जो अचानक यूं गया कि अलविदा कहने का मौका भी ना मिला। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी के चले जाने से सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ घर की हंसी चली जाती है, दीवारों की बातें चली जाती हैं, आंगन की धूप और चौखट की छांव चली जाती है। वो जाता है तो लगता है जैसे समय कहीं ठहर गया हो, घड़ी चलती रहती है मगर जिंदगी की सुइयां अटक जाती हैं। रूठकर जाने वाले शायद नहीं जानते कि उनके पीछे कितनी रातें अनाथ हो गई, तकिया आंसुओं से भीगता रहता है और नींद दरवाजे तक जाकर बिना दस्तक दिए लौट आती है। अब हर आहट पर दिल चौंकता है, हर कदम की आवाज में उनका नाम सुनाई देता है। हवा चलती है तो लगता है शायद उसका आंचल छूकर गया हो मगर जब मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ खालीपन खड़ा मिलता है। उसके बिना घर घर नहीं लगता, सिर्फ ईंटों का एक ढेर लगता है। दिए जलते हैं मगर उजाला नहीं होता, लोग मिलते हैं मगर कोई अपना नहीं होता। दिल उसकी धुन में ऐसे रोता है कि धीरे धीरे जोगी बन जाता है। न कोई इच्छा बचती है न कोई ख्वाब, बस एक नाम रह जाता है जो हर सांस के साथ टूटता रहता है। वो कभी कभी लगता है कि वो लौटकर आएगा अचानक और कहेगा मैं यहीं था तुम्हारे पास, मगर फिर सच सामने आता है और उम्मीदों का आखिरी दीपक भी आंधी में कांपने लगता है। साजना, तुम्हारे जाने के बाद मैंने जाना कि दर्द की भी एक आवाज होती है। वो आवाज रात भर मेरे सीने में रोती है और सुबह तक मेरी रूह को भिगो देती है। क्या बात है, अब तो बस यही दुआ है कि जहां भी हो खुश रहो, क्योंकि मोहब्बत का सबसे बड़ा दुख यही है कि जिसे भूल नहीं सकते उसकी खुशी के लिए अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं। और सच तो यह है कि कुछ लोग घर छोड़कर नहीं जाते, वे दिल में ऐसा बसेरा कर जाते हैं कि उनके जाने के बाद पूरी उम्र उनके लौटने का इंतजार जिंदगी बन जाता है। क्या कहूँ मैं आपके लिए, इतना सुंदर लिखा है कि मेरी आंखें नम हो गई हैं और गला रुंध गया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में रिश्ते कमजोर होते चले जा रहे हैं और ऐसा होता है कि हम अकेले हो रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है हमारे सवाल के जवाब में कि हाँ, मेरा एक ऐसा दोस्त दुनिया से ही चला गया जो बचपन से ही मेरा सच्चा मित्र था। और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हम दोनों के विचार मिलते थे और वो भी मेरी तरह रेडियो और विविध भारती प्रेमी था। मुझे उसकी कमी बहुत खलती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात लिखी है। वाकई चाहे दोस्त दुनिया से जाए या जिंदगी से जाए, जब उसकी याद आती है तो वाकई लगता है कि कितना अकेलापन है। एक श्रोता लिखते हैं कि राग किरवानी में बेहतरीन गाने से शुरुआत आपने की फिल्म अदालत का गीत जा जा रे जा साजना बहुत सुंदर था। अरे वाह, आपने राग किरवानी का जिक्र भी कर दिया। एक श्रोता लिखते हैं कि निश्चिंत रहिए मंदाकिनी जी, आज मैं बीच में कार्यक्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या खूब, बहुत सुंदर, शुक्रिया, मेहरबानी कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। यकीन मानिए, ये छोटा सा कि मैं हूं ना आपके साथ, ये वाक्य आपके दिल और दिमाग में कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है ये आपने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर महसूस किया होगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपसे ही एक सवाल है मंदाकिनी जी, कि अगर आपने किसी के लिए बहुत किया हो और उसने आपकी ही कब्र खोद दी हो तो इस तरह के व्यक्ति को का बिछड़ना ही बेहतर होता है कि नहीं, शायद वहाँ दूरियाँ ही बेहतर होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है कि हम जिनके लिए अपने आप को खपा देते हैं और पता चलता है कि सामने वाले ने तो वाकई हमारी बाटी लगा दी है, तो ऐसी स्थिति में दुनिया बनाना श्रेयस्कर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूर जाने के कई कारण भी होते हैं, इस गीत में यही बताया गया है। फिल्म दो बदन का गीत, आशा भोसले की आवाज़, शकील बदायूनी के बोल और रवि की धुन।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, लेकिन अपनी माँ का जाना भगवान के घर ना कभी भूल पाया हूँ ना भूल पाऊंगा जी। ये तो एक ऐसा दर्द है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का आना तो बेचैन किए ही रहता है क्योंकि उसका इंतजार रहता है, लेकिन किसी का जाना और भी व्याकुल और भावुक कर देता है। हमने फौजियों के ड्यूटी पर जाते समय दृश्य देखे हैं जहां माँ लिपट कर रोती है और पिता चारपाई पर बैठा सिर पकड़े कुछ न कहने की मुद्रा में है। संस्कारों में बंधी पत्नी दरवाजे के किवाड़ का ओट लेकर दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए सुबक रही है। दूर खड़ा एक बच्चा किंग कर्तव्य विमूढ़ सा पूरे परिवार को देख रहा है और गांव के लोग जाने वाले रास्ते पे खड़े विदाई देने को तैयार खड़े हैं। एक ऐसी विदाई जहां सबकी आंखें सजल है, ऐसी विदाई तो बेटी के ससुराल जाते से भी नहीं देखी जाती है। बहुत सही लिखा आपने, बहुत ही गहरा वर्णन किया है, वाकई आंखें भर आई हैं। और इस तरह का जाना, जैसा कि अभी हमने गाना सुना मत जइयो नौकरिया, तो कई बार नौकरी के लिए जाना, कई बार मजबूरी में जाना हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से हालात पैदा करते हैं जब हम इस जाने को नहीं रोक पाते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वही एक लिखते हैं श्रोता, आपने पूछा किसी रिश्ते को तोड़ने का दुख हमें ज़रा भी नहीं है, अफसोस अपनी बुद्धि पर क्यों इतने दिन तक ढोया उसे, ऐसा महसूस करते हैं ये। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हर जज्बात को लिखा भी तो नहीं जा सकता, उंगलियां साथ नहीं देती और आंखें बेवफाई करने लगती हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, हाँ, लेकिन अपनी माँ को इस तरह से जाता हुआ देखना बहुत दुखदायी था। वाकई आपने अपने दिल की बात लिखकर हमारा मन भी बहुत भारी कर दिया। और ऐसे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे पल आते हैं जहां किसी का जाना हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देता है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: मोहम्मद रफी और आशा भोंसले को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था हम दोनों। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे जयदेव। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे फेवरेट सिंगर केके का यूं अचानक चले जाना मेरे लिए बेहद पीड़ादायक रहा, क्योंकि इनके गानों ने ही मुझे मेरे माँ बाबा और बहन के गुजरने के बाद टूट के बिखरने से संभाल रखा था। बिल्कुल सही कहा, हम किसी कलाकार से जब बहुत जुड़ जाते हैं तो उसके प्रति जो प्रेम है वो बस दीवानगी की हद तक होता है। मुझे भी याद है जब केके अचानक चले गए थे अपने कॉन्सर्ट में, तो मैं ड्यूटी पर ही थी और ये समाचार सुनने के बाद लगा जैसे क्या हो गया और कुछ समझ भी नहीं आया। मन को एक अलग ही मतलब अलग किस्म की स्थिति पैदा हो गई थी। आपने बिल्कुल सही लिखा कि उनका जाना हम संगीत प्रेमियों के लिए बहुत बहुत बहुत मुश्किल भरा पल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज चित्रलोक और यादों की महफिल को केके स्पेशल बना के मैं सचमुच इमोशनल हो गया हूं और सारे गानों को अकेले में जोर जोर से मैंने गाया है, इसके लिए मैं थैंक यू कहता हूं विविध भारती को। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो पूछा है कोई बिछड़ जाए तो मेरे तो जिंदगी ही मुझसे बिछड़ गई। एक श्रोता लिखती है कि मेरे पति देव जब से वो छोड़ गए 11 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी पल वो क्षण मैं नहीं भूल पाती, ठगी सी रह गई जिंदगी में। आज भी कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। सभी कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं वो भगवान के पास जल्दी चले जाते हैं, तो कभी कभी अपने आप लगता है कि काश मैं भी उसी दुनिया में चली जाती। आपने बिल्कुल सही लिखा, ये दुख बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा, और इसे आपको अपने मन को कठोर रहकर समझाना ही होगा। हम आपके साथ हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया मंदाकिनी जी, बहुत खास कोई छोड़कर चला जाता है तो हम टूट जाते हैं मगर फिर किसी खास के लिए हम खड़े हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे जीवन साथी अगस्त 2024 में हमें छोड़कर चले गए थे, इस संसार से चली गई थी और मेरे जीवन में वो इतनी घुली मिली थी कि उनका जाना आज अगर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती तो शायद मैं भी उनके साथ चला गया होता। बहुत ही गहरे जज्बात हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। और अब सुरीला सफर से मंदाकिनी जोशी चाहती है इजाज़त। समय हमें और वक्त नहीं दे रहा है कि इजाज़त नहीं दे रहा कि हम इस कार्यक्रम को और आगे तक ले जाएं, तो मंदाकिनी जोशी को दें इजाज़त। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम के जरिए। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says government is making all efforts to preserve heritage sites of the country, highlights return of ancient Chola era copper plates to India during his recent visit to Netherlands. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Prime Minister urges people to stay safe during summer heat, promotes traditional Indian cooling drinks and lauds farmers for taking indigenous mango varieties to global markets. Chief of Defence Staff Lieutenant General N.S. Raja Subramani says Indian Armed Forces remain committed to protecting country's sovereignty and territorial integrity. Admiral Krishna Swaminathan assumes charge as a new Chief of Naval Staff. U.S. President Donald Trump says United States is close to reaching a nuclear agreement with Iran, warns military action remains an option if negotiations fail. In badminton, Indian duo Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take on Indonesia in the men's doubles final of Singapore Open today. And in IPL cricket final, Gujarat Titans and Royal Challengers Bengaluru all set for epic title clash in Ahmedabad this evening. Prime Minister Narendra Modi said that the government is continuously making efforts to preserve priceless heritage sites in India. Informed about an important discovery made in Malhar, Chhattisgarh under the Gyan Bharatam Abhiyan. Addressing the nation in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani today, Mr. Modi said that 3 rare copper plates have been found there related to Maharishi Bal Arjun of the Pandu Vanshi dynasty of the 6th and 7th centuries.
2: Gyan Bharatam Abhiyan ke tahat Chhattisgarh ke Malhar mein bhi एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: The Prime Minister also mentioned

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं।

0: मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
0: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
0: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
0: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
3: नेवी, एयरफोर्स,
4: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
3: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
1: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग

0: अपने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान संगीतकार अनिल बिस्वास को। आप सभी जानते हैं ना, आज अनिल बिस्वास की याद का दिन है।

अभी आपने फिल्म तराना का दो गाना सुना। आवाजें तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। गीतकार थे प्रेम धवन और संगीत दिया था अनिल विश्वास ने। अनिल विश्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको प्रेम धवन का ही लिखा गीत सुनवा रहे हैं, स्वर लता मंगेशकर का, और ये फिल्म है परदेसी।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है नाज़।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म लाजवंती से लिया है। कृपया इसे दोबारा सुने, फिल्म का नाम है लाजवाब।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम है जीत।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है अनोखा प्यार, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हैं जिया सरहदी और संगीत अनिल विश्वास का।

आशा भोसले की आवाज में फिल्म जासूस का गीत सुनिए। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और धुन बनाई है अनिल बिस्वास ने।

अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाज गीता दत्त की है, फिल्म का नाम है ही।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जलती निशानी से लिया है। गीत को कमर जलालाबादी ने लिखा है और धुन है अनिल विश्वास की।

0: विविध भारती से बोल रही हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुनेंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत।
1: विविध भारती मनचाहे गीत।
0: मनचाहे गीत,
2: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
3: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
4: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
3: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
4: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
5: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
3: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने आप सबकी ख्वाहिश पर चुना है। फिल्म का नाम है बॉबी, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं आप सभी। डोंगरगढ़ गांव, जिला राजनांद गांव, छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। और ये खत आया है कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानू, उबैद, रजीह जुनैद, अलीना, आयत, मुआज और मंसूरी का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं लोक सिटी उदयपुर यानी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से नरोत्तम गौड़ और उनके परिवार वाले। आइए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है,
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है,
6: पहले तुम,
7: पहले तुम,
6: पहले तुम,
7: पहले तुम,
6: पहले तुम,
7: तुम,
6: तुम,
7: तुम,
6: तुम,
7: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
6: अच्छा मैं कहती हूँ

अगला खत हमें मिला है उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर का। ये हैं डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से, यानी बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशिला देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर आर्य, श्रीमती सविता बेबी, स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार का। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म मन मंदिर में, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मनचाही गीत कार्यक्रम का अगला गीत आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम कच्चे धागे। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव। आप हैं गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिराजी, मोहब्बत बेगम, जावेद, शनाया, तखान और इनके परिवार वाले। और जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जो शहीद हुए हैं।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहते हैं भोपाल से सुधीर, श्रीमती मालती, चंचल, नवनीत, पुविन, ईशी, गौरिक और इनके अन्य साथी। दतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जाविंद्र कुमार वर्मा। हम अपने सभी श्रोताओं से ये करबद्ध अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ लिखें ताकि हमें कोई भी नाम या जगह का नाम पढ़ने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सही नाम हम पढ़ सकें। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब भी आप लिखेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करके अपना नाम और अपना पता लिखेंगे। गाने के बोल, कलाकारों के नाम, जो भी आप लिखते हैं साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखें। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म भीगी पलके का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, एमजी हशमत की गीत रचना है। सुनते हैं ये गीत। जुगल किशोर और तिलक राज का संगीत है।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनना चाहते हैं आप सभी लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में, गीत रचना राजा मेहदी अली खान की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सभी भाटापारा से मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत, विनय ठाकुर और इनके परिवार वाले, वहीं से इनके मित्र सुब्रत चौधरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क MP शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता और ये हैं सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा भाग।
1: क्यों डेजी, इस तरह उदास क्यों रहती हो?
2: नहीं तो मैं कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इससे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये गिटार तुम्हें बड़ी वेदना पहुंचा।
2: नहीं, बल्कि ये तो मुझे बहुत सांत्वना देता है।
1: डिजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा। लो इधर देखो, देखो ना, हाँ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओ डेजी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोचता हूँ दो हफ्ते की छुट्टी ले लूँ। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहती हो?
2: ऑपरेशन से पहले बेनी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया।
1: नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह की दुखद यादें तंग करेंगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बनाया तो कैसा रहेगा?
2: मेरा मन कहीं नहीं लगता। आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाए।
1: ओ डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए। प्यारा प्यारा दुल्हारा सा नन्ना मुन्ना। हा?
2: प्यारा प्यारा सा दुल्हारा सा नन्ना
3: मुन्ना। देसी
4: छोड़ दीजिए ना।
3: अरे अरे सुनो तो।
4: नहीं सुनती।
3: ओफो, अरे बात तो सुनो
4: बेनी। देखो देखो, तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ रही हैं।
3: ओ डेजी, डेजी माय लव। डेजी, हमारे बच्चा नहीं होगा क्या?
2: ईश्वर की कृपा हुई तो।
3: सुनो, मुझे तो नन्ना सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा।
2: क्यों, तुम्हारे जैसा क्यों नहीं?
3: अच्छा बाबा, हम दोनों जैसा।

0: अंग्रेजी, तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चले।
1: नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मन बहुत अशांत।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूँ। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो।
1: ये साड़ी
0: डेजी, व्हाट इज दिस? क्या है?
1: बेनी की प्रेजेंट की साड़ी।
0: ओह

0: सिनेमा गई। मैं लॉरेंस को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझ निराश्रित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
1: कैसे?
0: शायद वो एक आंधी का आरंभ था। सुनिए, बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही है।
2: कौन कहता है?
0: मुझे ऐसा लगता है।
2: मुझे तो ऐसा नहीं लगता,
0: लेकिन वो उसी तरह निढाल
2: पड़ा रहे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।
0: इस तरह पड़े रहने से क्या बीमारी कम होगी?
2: भाई, उसे दवा दी जा रही है।
0: लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं है।
2: इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है।
0: आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में
2: नहीं।
0: जोर से मत बोलिए। 2 दिन से वो दवा दी जा रही है, लेकिन अभी तक बेबी को जरा सा भी आराम नहीं आया।
2: तो क्या करूँ मैं? आराम इंजेक्ट किया जाए?
0: क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
2: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
0: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
2: इच्छा नहीं है
0: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
2: कुछ भी मतलब निकाल लो।
0: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
2: अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
0: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है।
2: दूसरों की नजरों में कानून के अनुसार भी है, लेकिन आत्मीयता के दृष्टि से नहीं है। मैं इतने क्रूर बच्चे का पिता होने का भार नहीं उठा सकता।
0: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा, इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूं। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा।
2: मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता।
0: लेकिन मैं मां हूं, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती।
2: जब छोड़ो, डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास।
3: भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप।
2: रेडीमेड हंसी? अरे भाई, हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्यों जी?
0: जी हाँ
3: भाई, बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
0: चलिए, कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी।
3: अरे ऐसे क्यों कह रही हो डेजी? प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। भाई जैसे ही फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे हाँ, ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
2: अरे भाई, वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
3: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा, लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा। ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे।
0: एक साथ घूमने लगेंगे?
3: हाँ?
0: आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छांटे होंगे।
3: अरे हाँ डेजी, बच्चा कहाँ है?
0: वो
3: सो रहा है।
0: वो तो बहुत बीमार है। 2-3 दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद है।
2: अरे भाई, बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
3: चलिए एक बार मैं भी देख लूं। ओ, लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है।
2: Well, but that doesn't matter, doctor. Slight fever only. मैंने दवा दे दी है वैसे।
3: अच्छा, मैं चलता हूँ। भाई कुछ जरूरी काम है, चलो डेजी।
2: ओके,
0: अच्छा
2: बाय डॉक्टर, बाय।

0: Bye.
1: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
2: जब तक जरूरी होगा।
1: मुझसे अब और नहीं सहा जाता। कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये नाटक क्यों?
2: अपने लिए।
1: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये।
2: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
1: मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं?
2: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
1: आपसे कहा था जरा बच्चे की जांच कर लो।
2: जांच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
1: ये क्यों नहीं कहते कि आप जांच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है ये, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़ा रहना चाहता है।
2: डेजी, तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
1: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था, लेकिन उन्होंने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
2: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है?
1: बंद भी करो ये सब। बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप।
2: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा था।
1: बेनी को यहाँ क्यों घसीट लाया?
2: मैं घसीट लाया? ये कहो, बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है। और शादी के बाद भी तुमने बेनी की कब्र पर जाने की इच्छा की थी।
1: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
2: तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है, मरे हुए बेनी साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
1: क्या सवाल कर रहे हो तुम?
2: तुमने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी?
1: तुम्हें क्या हो गया है?
2: तुम उससे ज्यादा बेनी के फोटो से प्यार करती हो, तुम इसकी पूजा करती हो। लेकिन लेकिन अब ये सब नहीं होगा, ये फोटो अब यहां नहीं रहेगी।
1: मिल गया संतोष। बेनी, मुझे क्षमा करना बेनी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बेनी। कौन कौन है?
3: डेजी, एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है?
1: अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर, आपको मेरी एक शंका दूर करनी है।
3: कैसी शंका?
1: मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या क्या बेनी को सदा याद करते रहने से ऐसा हुआ है डॉक्टर?
3: ओह डेजी, तुम्हारा सवाल बड़ा विचित्र है।
1: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
3: नहीं।
1: हाँ, मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कुछ शंका है।
3: लॉरेंस को? नो नो, नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
1: तब ये हुआ कैसे डॉक्टर?
3: डेजी, इसके कई कारण हो सकते हैं। पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो, या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।
1: आप ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
3: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है डेजी? क्या हुआ? बोलो डेजी, बोलो, क्या हुआ?
1: बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे।
3: क्या?
1: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूँ। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे।
3: क्या?
1: लेकिन वास्तव में बात डॉक्टर, डॉक्टर आप मेरे पर एक कृपा कीजिए।
3: बोलो।
1: प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए।
3: मैं?
1: डॉक्टर, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज डॉक्टर, उसे देख लीजिए डॉक्टर।
3: नहीं नहीं डेजी, नहीं, ये ठीक नहीं है। बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है, मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। आई एम सॉरी
1: प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज।
3: नहीं डेजी, नहीं डेजी, ये ठीक नहीं है।
1: प्लीज प्लीज डॉक्टर।
3: अच्छा चलो मैं बच्चे को देख लेता हूँ।
1: डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा। मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर मैं रोती। एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आ धमकी और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले ये बेनी का प्रेत है।
0: बेनी का प्रेत?
1: हाँ, मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।
3: डॉक्टर लॉरेंस?
0: ओ डॉक्टर रामदास,
3: उस दिन तुमने मुझे जिस तरह दुत्कार कर निकाल दिया था उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी।
0: बैठ जाइए
3: लॉरेंस। आप जैसा चाहते थे बच्चा चल बसाना
0: जी,
3: शायद ये सोचकर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा ना ले आपने मेरा प्रिस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
2: नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को उस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
3: आपको अरे जिसने

0: आप मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
2: तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? दो घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़कर बुलाने के लिए गई, लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझकर किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका था।
0: डॉक्टर, डॉक्टर, दैट वाज मेयर डेथ। एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
2: नो, इट वाज नॉट ए मेयर डेथ, इट वाज ए क्लियर मर्डर।
0: डॉक्टर, नो, नो डॉक्टर।
2: तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लॉरेंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं। डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
0: नो नो नो,
2: क्यों डॉक्टर? सच है ना? सच है ना? तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से उर्ण होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया। क्यों, बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए, इतना हाँप क्यों रहे हो? क्यों डॉक्टर लॉरेंस, ये सब अक्षर अक्षर सच है ना?
0: डॉक्टर, डॉक्टर
2: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना? ये सच है ना?
0: सच है, सच है डॉक्टर। लेकिन उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
2: बेचारा बेनी, मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। खैर डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया। भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ।
0: डॉक्टर, मुझसे गलती हो गई डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर, प्लीज ये सब बातें आप किसी और से नहीं कहिएगा।
2: नहीं कहूंगा।
0: थैंक यू।
2: नहीं कहूंगा।
0: थैंक यू डॉक्टर।
2: क्योंकि न कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर लॉरेंस, मैं अब चलता हूं।
0: मैंने क्या कर डाला है? मैं क्यों भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी उसकी कीमत एक न एक दिन उसे चुकानी होती है। अरे अरे डेजी, अरे इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
3: तुम्हारी आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी।
0: डेजी, डेजी मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
3: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
0: वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। देखो डेजी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेजी।
3: लॉरेंस, तुम अचानक,
0: मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी।
3: मैंने भी तो तुमसे झगड़ा किया।
0: हाँ, लेकिन लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा। कोई कोई कष्ट नहीं दूंगा डेजी।
3: मैं भी तुम्हें,
0: डेजी जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ डेजी, सब भूल जाओ।
3: भुला दूंगी।
0: हाँ,
3: हाँ, हमेशा के लिए भुला दूंगी।
0: हाँ, वो डेजी, मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
3: हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ।
0: हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ पिएंगे। डेजी, वो जो बेनी का फोटो है ना, हाँ, उसको फ्रेम करवा के यहाँ रखेंगे। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसका किताब तोड़ दिया। मैं एक नया किताब ले आऊंगा डेजी। हाँ, उस गिटार को हम बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ, आज उसे ही पहने। हाँ, वो डेजी, हम ऊटी का प्रोग्राम भी बनाएंगे। हम ऊटी भी जरूर चलेंगे, चलेंगे ना?
3: हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। लो

0: कॉफी पियो। डॉक्टर साहब,
1: डेजी,
0: तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को मार डाला ना?
1: ये क्या कर रही हो तुम डेजी?
0: मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी ना?
1: डेजी,
0: तुमने अपने सहपाठी और अपने परम की जान ली।
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं। डेजी सुनो तो।
0: सुनो डॉक्टर, ये घृणित सत्य जान लेने के बाद अब हम साथ नहीं रह सकते।
1: नहीं नहीं, डेजी ये सच नहीं है। मैं कहता हूँ डेजी,
0: झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक एक शब्द मैंने सुन लिया है।
1: ओह माय गॉड,
0: मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी।
1: ओह नो,
0: मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपसे विदा ले रही हूँ।
1: विदा?
0: मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ
1: नहीं, था। डेजी, डेजी।
0: मैं कुछ ही पल की मेहमान हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो उनके लिए मुझे माफ कर देना।
1: डेजी, मेरी नसें टूट रही है। डेजी, तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया है। डेजी,
0: नहीं लॉरेंस, नहीं लॉरेंस, विश्वास करो मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है। ये क्या हुआ? ये कॉफी की प्याले तो नहीं बदल दिए? ये क्या हो गया? ये पहली कॉफी तो मेरी थी, तुमने वो कप कैसे ले लिया? लॉरेंस, लॉरेंस, मैं भागी भागी हॉस्पिटल गई। डॉक्टर आए लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे। मैं मूर्ति बनी खड़ी रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसे हो गई। मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे। फिर पुलिस, अदालत, मुकदमा, हत्या का आरोप, सजा और जेल की एक कोठरी। की लपटों का एक गोल घेरा जिसमें से मुझे बिना झूल से बाहर निकलना था। मुझे तो लगता है मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं इस अग्नि चक्र से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। आप क्या सोचने लगे?
2: एक छोटी सी बात।
0: क्या?
2: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं?

आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिक

0: तो कभी छान।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाशगंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
2: जी,
3: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है। आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
2: जी,
3: है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना हो। तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
2: जी।
3: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका
2: जी। बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्रकवि प्रदीप जी के बारे में
3: जी।
2: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं।
3: मैं तो अच्छी हूँ
2: मितुल जी। आप राष्ट्रकवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
3: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे।
2: अच्छा।
3: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, हिंदी भाषा के मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे
2: जी,
3: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
2: अच्छा जी।
3: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते
2: ही हैं।
3: तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
2: अच्छा।
3: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे, और तब तो मुंबई नहीं बम्बई थी
2: जी, बिल्कुल।
3: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए, ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था
2: जी,
3: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से, तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे।
2: अच्छा जी।
3: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे, उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूंगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहां पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके मैनेजर वो वहां पर थे
2: जी,
3: रावल जी।
2: अच्छा।
3: और उन्होंने उनको सुना, उन्होंने जाकर के हिमांशु राय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने। और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में
2: जी।
3: वहाँ पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहाँ पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूँ भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप

0: हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं सुना ये तो सही। फिर सुनाया अपनी शैली में, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। और वो इम्प्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
1: अच्छा,
0: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए, हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूँ, मैं तो कवि हूँ और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार
1: बन गए। थी कौन से सन की बात है और किस फिल्म के लिए उन्हें लिया गया?
0: कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूँ मैं
1: जी,
0: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे

0: और तो कवि प्रदीप कैसे हुए? उस जमाने में उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार
1: जी, एक्टर
0: एक्टर तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है. तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो. तो कवि प्रदीप अलग हो गए और प्रदीप कुमार अलग हो गए. तो ये आपके सवाल का जवाब है.
1: तो मितुल जी, आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का.
0: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना.
1: वाह क्या बात है,
0: हेमंत कुमार की आवाज में. ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन वो है साथ में,
1: त्रिकोणीय व्यक्तित्व.
0: हाँ
1: हाँ जी बिल्कुल. तो आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत.

0: मितुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कभी प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था।
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था।
0: अच्छा।
1: दोनों बहनों के बीच में, तो मैं छोटी और दीदी ज्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती थी।
0: जी।
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा, तो इसीलिए हम काफी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती,

0: ना हमारे घर में होती थी, ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे
1: जी।
0: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई, जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है, तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति
1: और सिद्धांतवादी।
0: लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, तो कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड लेना ही बंद कर दिया।
1: अच्छा।
0: हाँ। तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग मेन, मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती
1: जी।
0: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था, तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे।
1: अच्छा जी।
0: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें,
1: इतनी फ्रीडम थी।
0: फ्रीडम, हाँ। तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई, और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं थी।
1: जी।
0: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने सात फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
1: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूँ और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा। तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी।
0: बहुत बहुत बहुत सारी बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने, ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफी फॉरवर्ड विचारधारा के थे, और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं। तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ, आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले।
1: अच्छा।
0: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
1: वो गर्म है,
0: मैं गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी, दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
1: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
0: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूंगा।
1: अच्छा।
0: हाँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा, आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। मैं कुछ लेना नहीं चाहता हूँ, जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफ कोर्स दो तीन साड़ियाँ तो दी होगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू। अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ।
1: अच्छा। सब
0: तो बोले मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग, और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूं। तो उन्होंने बोल दिया वहां पर, मैं शादी कर रहा हूँ, हम लोग कोई यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को लेके। तो वहां से कोई नहीं आया, वहां मेरी दादी, मेरे दादा, परेशान। उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं
1: जी।
0: ना तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहाँ से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये, उनका फोटो देखा था। अरे नारायण जी आप आए हैं, आइए। बोलते माफ कीजिए लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
1: जी जी।
0: तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं नहीं, घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है।
1: जी।
0: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए। और वैसे मतलब ये जो यूनियन था
1: वो संबंध
0: विवाह का, तो वो खुशी खुशी उसकी समापन हुआ।
1: जी जी। तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही,
0: पानी बन के रही। हाँ एक्चुअली वो भी आग थी। लेकिन वो पानी बन के रही
1: जी, ये सबसे बड़ी बात है जी।
0: क्योंकि मेरी माँ को, अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी, और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी।
1: मतलब उनकी शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल में की गई। हाँ, नाना नानी के द्वारा।
0: हाँ, ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज में आपको पीछे नहीं हटना है। तो वो भी, उनकी तासीर भी आग वाली थी, लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया।

0: जब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रही, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल,
1: है ना, ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं। लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मीतुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पढ़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था, या उनकी क्या हाइट थी, और समाज में वो क्या थे, वो सब पता चलने लगा
0: जी।
1: और खैर वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया।
0: घर में एक आम पिता की
1: आम
0: तरह
1: पिता
0: वो रहे।
1: की तरह
0: जी।
1: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से। तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा, कि कोई स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने की शक्ति
0: जी, बिल्कुल,
1: वो और बड़ी मेरी माँ के कारण,
0: बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्र कवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर दिखाया
1: जी, जी।
0: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
1: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम, इंदौर, वहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए, तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई, मतलब मेरे ताऊजी, वो इलाहाबाद में रहते थे और वहाँ पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू, उसको भेजा इलाहाबाद। मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहाँ पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहाँ पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफ़ी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था, वो इलाहाबाद में था, क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे, और बड़े बड़े जो वहाँ के नेता थे वो वहाँ पर रोज ही उनके वहाँ कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई
0: जी,
1: वो उन्होंने वहाँ बहुत नज़दीक से देखा। और इलाहाबाद में ही काफ़ी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी कि जहाँ पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है। तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएँ लिखते थे, और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है,
0: एक मतलब कोई जानबूझ के प्रेरित हुए, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था। तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली, तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है, वो आम जन तक पहुंचना चाहिए।
1: और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
0: जी,
1: इलाहाबाद में, तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया।
0: हाँ, और तब तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में?
1: नहीं नहीं नहीं, वो तो, ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए, तब वो आए थे मुंबई
0: जी। हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान
1: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई, और वो काफी, मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया था उस वक्त।
0: हाँ जी,
1: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है, वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू
0: जी। क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी, आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो, जिस कविता ने?
1: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था, जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई थी
0: जी,
1: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूं। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये कविता लिखी है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था।
0: बहुत कुछ।
1: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था।
0: क्या बात, बहुत
1: खूब। एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है लेकिन यही कविता है जो उन्होंने
0: लिखी
1: उसी वक्त, लिखी
0: उसी दौरान, उनके भीतर ये अंकुर पैदा
1: अंकुर
0: हुआ
1: पैदा
0: और वहाँ से वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
1: हाँ
0: जी। तो मितुल जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं, आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
1: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा।
0: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: Durango, Durango, Durango, Durango.
1: मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
2: अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में
1: जी।
2: लेकिन जो बातें सुनी और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी
1: जी।
2: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बातें होती थी, तो तब मैंने ये सब सुना था। और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि इस कवि को पकड़ो, इसको गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान, माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे। उनको अंडरग्राउंड कर दिया, अंडरग्राउंड मतलब कहीं
1: भूमिगत।
2: तो भूमिगत हो गए तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे वो वहां पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे
1: जी।
2: उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहां के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे ना कि निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
1: बिल्कुल,
2: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है। तो वो बात सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
1: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
2: शब्दों की जंग, और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
1: बिल्कुल, और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो हिलोरे लेने लग जाता है।
2: और दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
2: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी, सबसे बड़ी बात।
2: सही बात
1: है ना। और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
2: बहुत ज्यादा, गांधी जी उनके हीरो थे। तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा, तो वो आप देखिए कि एक बच्चों के भाषा में लिखा है।
1: बिल्कुल,
2: है ना।
1: बिल्कुल,
2: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है, आप सुनिए तो आखिरी में आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है, इस गाने के सिवाय वो पूरी नहीं होती।
1: जी, बजता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था। और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ। तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए।
2: यही साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल।

0: मितुल जी, हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना। लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूँ। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ, और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी, या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में, उनकी पैदाइश बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहां पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहां के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहां जाते रहते थे, वहां खेत खलिहान थे। तो वहां पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं, भील जाति के लोग। तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू, भी उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
0: अच्छा। हाँ,
1: तो वहाँ क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गाँव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे
0: जी।
1: तो ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहां जाके बैठे उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना, जो खनक है
0: जी,
1: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
0: नहीं है,
1: सारे गामा नहीं है,
0: कॉपी की भी नहीं है,
1: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है, ठीक है। तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए। फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया
0: जी।
1: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है,
0: बिल्कुल।
1: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछीरे, आज भी पिंजरे के पंछीरे सुन के भी लोग रोते हैं,
0: बिल्कुल। वो
1: एक छोटे पिंजरे में पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत, और भी कई, देख तेरे संसार की हालत हाँ, क्या हो गई भगवान, हाँ, कितना बदल गया इंसान, हाँ। और मतलब ये मैं कहूँ कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी। हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको क्या बताऊँ,
0: दर्पण में
1: मुखड़ा देख ले दर्पण में। तो उनके गाए हुए हर एक गीत लोगों को छू गए हैं, आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स, और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक
0: सीरीज है उनके पास। हाँ, आज भी उनके
1: सुनते हैं लोग,
0: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद करते हैं। क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगी?
1: पिंजरे के पंछी सुनिए।
0: चलिए सुनते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था। शुरू से प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे, तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं है जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे।
1: एकदम सही कहा,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है, तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रवाह होता था जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत हैं, जैसे देखते रहे संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे या मुखड़ा देख ले दर्पण में, यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है। मितुल जी, तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं, हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर, और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहां पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेबचा गाना आला साहेबचा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको के देखो देखो आई का सर्वा लोग आई का, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
0: अच्छा
1: हाँ, तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं।
0: हाँ।
1: और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी, सब लोग तुम क्यों रो रही हो।
0: हाँ।
1: मैंने बोला फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे वो कराती थी कि नहीं ठीक है, ये बापू मतलब गांधी बापू। और तब ये नहीं पता था कि बापू मतलब गांधी जी।

0: ने आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूँ, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा
1: जी।
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहाँ हम लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे नारे भाई, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या हैं।
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता है और अपने मन को हम समझा लेते हैं,
0: समझा लेते
1: कि अच्छा इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मीठे नारे हाँ। भाई, तो हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों
0: में कुछ लिखा है तो। और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो हमको प्रेरित करते हैं कि अब दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ कि उनके हर एक गीत को हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था पहला भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा देते हैं। दोस्तों, अब से कुछ ही पलों में 5:05 पर आप सुन सकते हैं गाने नए पुराने। शाम 5:30 पर हमारे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा युववाणी। शाम 6 बजे हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार और प्रादेशिक समाचार। शाम 6:20 पर आप सुन सकते हैं गीता संदेश। गीता संदेश में आज गीता के 4th अध्याय से श्लोक 25 से 28 की व्याख्या सुनिए। व्याख्याकार होंगे डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा।

रात्रि 8 बजे से 8:30 तक सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। प्रस्तुति रहेगी अमरीक सिंह की। आठ बजकर तीस मिनट पर कुछ बातें कुछ गीत। रात्रि 8:45 पर हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपके लिए और 9:30 से 10 बजे तक सुनिए कार्यक्रम छाया गीत। ये दोनों ही कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से रिले किए जाएंगे। और दोस्तों, रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक सुनना ना भूलें आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का सुपर डुपर हिट कार्यक्रम जिसका नाम है हेलो एफएम। इस कार्यक्रम में आप हमें कॉल कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत। हमारा फोन नंबर नोट कीजिए 01744221322 यानी 01744221322। तो रात्रि 10 बजे हेलो एफएम कार्यक्रम। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और उसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं गाने नए पुराने हैं।

दोस्तों, आवारगी फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतकार थे अन्नू मलिक। साथियों, आवारगी फिल्म 1990 में रिलीज हुई थी और ये जो गीत आप सुन रहे थे, ये गीत स्क्रीन पर फिल्माया गया था गोविंदा और मीनाक्षी शेषाद्री पर। दोस्तों, ये फिल्म महेश भट्ट साहब ने डायरेक्ट की थी और एक बेहद ही खूबसूरत फिल्म थी। हालांकि कॉमर्शियल तरीके से ये ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन ये फिल्म बहुत अच्छी फिल्म थी आवारगी की।

दोस्तों, किशोर कुमार की आवाज में दुश्मन फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। साथियों, दुश्मन फिल्म जो थी वो 1971 में रिलीज हुई थी और राजेश खन्ना साहब की ये सुपर डुपर हिट फिल्म थी। ये गीत जो आप सुन रहे थे ये राजेश खन्ना पर ही फिल्माया गया था और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था दलाल गुहा ने।

दोस्तों, आपकी कसम फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और इस गीत के संगीतकार थे आर डी बर्मन। दोस्तों, आपकी कसम फिल्म 1974 में रिलीज़ हुई थी और राजेश खन्ना और मुमताज़ की ये सुपर डुपर हिट फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जे ओम प्रकाश ने और ये जो गीत आप सुन रहे थे ये स्क्रीन पर फिल्माया गया था उस महान रोमांटिक जोड़ी पर जिसका नाम है राजेश खन्ना और मुमताज़।

और दोस्तों इसी गीत के साथ आज का गाने नए पुराने कार्यक्रम समाप्त होता है, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए 101.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। नमस्कार।

दोस्तों गाने नए पुराने कार्यक्रम आपने सुना और ये जो अंतिम गीत आप सुन रहे थे एक दूजे के लिए फिल्म से हमने लिया था। आनंद बख्शी की रचना को संगीत में पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आवाजें जो आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की थी। एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

दोस्तों आप सबका स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में। युवा साथियों, आपकी खिदमत में हम रोज की तरह हाजिर हो गए हैं लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है युववाणी। और दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे जो बातचीत करने वाले हैं वो हम बात करेंगे आपके साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर, जो कि आज यानी कि 31 मई को मनाया जाता है। और ढेर सारी आपसे बातें होंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो युवा साथी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और अपना जो जनरल नॉलेज है उसको टेस्ट करना चाहते हैं, और इस सामान्य ज्ञान के बिना आप हमें नहीं लगता कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो आपकी तैयारी के लिए आपको एक प्रश्न पूछते हैं। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता है तो हमारा जो नंबर है वो 9466021336, इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप संदेश भेजिए। और यदि आपका उत्तर सही हुआ तो आपका नाम आज के ही कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, आपको बताना ये है कि एक पुस्तक है जिसका नाम है रूप चंद शतक। जी हाँ, रूप चंद शतक। आपको इस किताब, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। एक बार फिर सुनिए, रूप चंद शतक एक पुस्तक है जिन युवा साथियों का साहित्य में और किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट है उन्होंने इस बुक के बारे में सुना होगा। नहीं सुना तो भाई सर्च कीजिए, रूपचंद शतक इस पुस्तक के लेखक आपको बताने हैं। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता है तो हमें व्हाट्सएप संदेश भेजिए, यदि नहीं पता तो भाई सर्च कीजिए और जल्दी से अपना उत्तर हमें भेज दीजिए। और साथ साथ सुनते रहिए 101.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी कुरुक्षेत्र।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दोस्तों, हमने जो आपसे आज प्रश्न किया है, उस प्रश्न का जो उत्तर है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9466021

0: 6 यानी 9 4 6 6 0 2 1 3 3 6 पर दे सकते हैं। और हमने आपसे प्रश्न किया है रूपचंद शतक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं। दोस्तों आज 31 मई है और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है दुनिया भर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा शुरू किए गए इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान, स्वास्थ्य जोखिम और उसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। दोस्तों तंबाकू और सिगरेट के धुएं से होने वाले कैंसर, हृदय रोगों और अन्य जानलेवा बीमारियों से बचाना इस दिन का उद्देश्य है। लोगों को तंबाकू और निकोटीन छोड़ने के लिए प्रेरित करना और प्रभावी नीतियों की वकालत करना, नशे से मुक्ति इस दिन का विशेष उद्देश्य है। यदि आप या आपके कोई परिचित तंबाकू की लत छोड़ना चाहते हैं तो दोस्तों भारत सरकार के राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP की हेल्पलाइन नंबर 1800112356 यानी 1800112356 पर मदद प्राप्त कर सकते हैं।
1: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ,
2: कभी मैं हूर हूर कहता हूँ,

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है 101.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी कुरुक्षेत्र और कार्यक्रम चल रहा है युववाणी। आज हम बातचीत कर रहे हैं, तंबाकू का जो सेवन है वो स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक है, क्योंकि इसमें मौजूद निकोटिन जैसे जो केमिकल्स हैं वो गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, हृदय रोग, सांस फूलना, स्ट्रोक और फेफड़े से संबंधित कई जो बीमारियां हैं, हृदय और रक्त संचार में प्रॉब्लम, मुंह दांत और पाचन तंत्र की समस्याएं, अल्सर और दोस्तों गर्भ अवस्था में तंबाकू का सेवन भ्रूण के विकास को भी रोकता है। तो दोस्तों, शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है तंबाकू लेने से कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है। और साथियों, त्वचा में समय से पहले झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और चेहरे की चमक भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हम सबको चाहिए कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं यदि तंबाकू का सेवन करते हैं उनको आप ये काम करने से रोकें, क्योंकि किसी भी तरह का ड्रग्स जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो आज का जो ये दिन है 31 मई जो कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये तभी दोस्तों साकार होगा जब हम अपने आसपास का जो एरिया है, अपने दोस्त हैं, अपने रिश्तेदार हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो तंबाकू या सिगरेट के धुएं का इस्तेमाल करता है या उसके आसपास भी कहीं बैठता है, तो आप उन लोगों को दूर रखें, इस बात के लिए प्रेरित करें कि तंबाकू या किसी भी तरह का ड्रग्स जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।

दोस्तों, इस कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आपसे एक प्रश्न किया था और आपको कहा था कि यदि आपको इसका उत्तर पता है तो आप हमें इसका उत्तर व्हाट्सएप संदेश से भेजिए। हमने आपसे प्रश्न ये किया था कि रूपचंद शतक के लेखक कौन है। तो आइए सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि ये बुक जो है वो किस लेखक ने लिखी है। इस पुस्तक के लेखक हैं रूपचंद पांडे। दोस्तों, रूपचंद शतक के रचयिता रूपचंद पांडे हैं, जिनका योगदान हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। यह काव्य लोक भाषा और नीति विषयक दोहों के लिए जाना जाता है और बेहद ही ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि रूपचंद पांडे ने लिखी है। और इस प्रश्न का हमें सही उत्तर मिला। पंजाब वडिंगखेड़ा से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की तरफ से। एक और उत्तर हमें मिला, वो हमें मिला है दोस्तों, आपने अपना नाम नहीं लिखा लेकिन आपके संदेश से ये पता लग रहा है कि आरव आपका नाम है, लेकिन ये कहां से आपने मैसेज किया है, हमें आपने ये मेंशन नहीं किया। और एक और सही उत्तर हमें मिला है, ये हमें मिला है करनाल से राकेश कुमार मोहित और सृष्टि ढांडा। पानीपत

हमें एक सही उत्तर मिला है जो कि हमें मिला है स्वाति और कुलदीप की तरफ से। तो दोस्तों आपका नाम आज के कार्यक्रम में शामिल हो चुका है। हम आशा करते हैं कि आप यूं ही हमारे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपना जो योगदान है वो देते रहेंगे। दोस्तों अब समय बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं बचा है, हम आपको छोड़े जा रहे हैं इस गीत के साथ और इसी गीत के साथ आज का युववाणी कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त विपिन सहगल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने ही वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार और प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। PM स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को PM स्वनिधि के ऋण चेक और QR कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने आम की खेती में किसानों के योगदान की सराहना की और आम को कृषि अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों में तारामंडल देखने की अपील की। पंचकूला के रामगढ़ स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशाला में हाई कैलिबर बम का सफल परीक्षण किया गया और हरियाणा की नवनियुक्त बीजेपी अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मन की बात के आज के संस्करण को ज्ञानवर्धक व युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने गाइडलाइंस जारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीर, मोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी जैसे देसी पेय पदार्थों का सेवन करने का सुझाव दिया।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले आम की किस्मों की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र में आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक सौंधी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने आम की खेती में किसानों के योगदान की सराहना की और कहा कि आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं।
0: प्रधानमंत्री ने झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता की चर्चा भी की। इसमें लगभग 800 एथलीटों ने भाग लिया था। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड की अपनी हाल की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नीदरलैंड सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं।
1: नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 प्लेटें भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल

0: होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में निशुल्क तैराकी क्लब चलाने वाले अलुवा के साजी वलशेरिल के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। श्री मोदी ने गोवा के सेवानिवृत्त शिक्षक बालकृष्ण अय्या की कहानी भी साझा की, जिन्होंने मद्दी टोलाप क्षेत्र में जल संकट के समाधान के लिए काम करना शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाले शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया और बच्चों से सैनिकों के लिए रोज एक रुपया दान देने की अपील की। उन्होंने इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष अपने 50 वर्ष पूरे करने वाले चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय नेटवर्क ने देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने में सराहनीय भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के पंचकूला के रामगढ़ स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला TBRL में आज हाई कैलिबर बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह परीक्षण वायु सेवा के उच्च अधिकारियों की देखरेख में पूरे सुरक्षा प्रबंधों के बीच किया गया। अधिकारियों के अनुसार परीक्षण सफल रहा और निर्धारित सुरक्षा मानकों के तहत पूरा किया गया। हरियाणा और चंडीगढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 134वें एपिसोड को सुना गया। पानीपत के स्मालखा में लोगों ने भाजपा की नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार व पूर्व मंत्री जेपी दलाल के साथ श्री मोदी के विचार सुने। कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा,
1: हर बार जब भी हम मन की बात सुनते हैं पर हमें प्रेरणा मिलती है। भारत के सुदूर इलाकों में जो लोग अपनी चिंता ना करते हुए, अपने परिवार की चिंता ना करते हुए समाज के कामों में लगे हुए हैं, मोदी जी उनके इन प्रेरणादायी प्रसंगों की ताकत युवाओं को खेलने की प्रेरणा देते हैं। पानी बचाने की बात होते हैं, चाहे हमारी प्राकृतिक खेती का विषय हो, चाहे पर्यावरण सफाई का विषय हो, तो लगातार मोदी जी हर विषय पर हम सबको प्रेरणा देते हैं।
0: अम्बाला में कार्यक्रम सुनने के बाद कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि श्री मोदी ने आज भी देश के अनसुने नायकों और प्रेरणादायक कार्यों को जनता के सामने लाने का महत्वपूर्ण काम किया है। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का जिक्र कर युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करने का प्रयास किया है। जींद में भी ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरों तक बेहद उत्साह के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना गया। जिला जींद की वरिष्ठ महिला भाजपा नेता एवं नगर परिषद अध्यक्ष डॉ. अनुराधा सैनी ने कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने याद दिलाया है कि गर्मी से बचने की राहत हमारी अपनी रसोई में ही छिपी है। उन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले लोगों की कहानियों को साझा कर युवाओं को प्रेरित किया गया। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के इस मौसम में अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने आम की खेती में किसानों के योगदान की सराहना की। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों में तारामंडल देखने की अपील की। पंचकूला के रामगढ़ स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशाला में हाई कैलिबर बम का सफल परीक्षण किया गया और हरियाणा की नवनियुक्त बीजेपी अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मन की बात के आज के संस्करण को ज्ञानवर्धक व युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे गीता सन...

0: उपदेश। गीता संदेश में आज गीता के चौथे अध्याय से श्लोक 25 से आगे की व्याख्या सुनिए। व्याख्याकार हैं डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा।
1: श्रोताओ, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चतुर्थ अध्याय के 25, 26, 27 व 28 श्लोकों की व्याख्या। ब्रह्म कर्म रूप यज्ञ का वर्णन करके अब इस श्लोक में देव पूजन रूप यज्ञ का और आत्मा परमात्मा के अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दैवमापरे यज्ञम योगिने पर्युपासते, ब्रह्माग्नौ परे यज्ञम यज्ञेने उपजूवति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी लोग पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अर्थात दूसरे योगी जिन्होंने ममता आसक्ति व फल की इच्छा को त्याग दिया है, जो शास्त्र सम्मत यज्ञ आदि कर्म करते हैं, वे योगी ब्रह्मा शिव शक्ति गणेश सूर्य चंद्रमा इंद्र और शास्त्र सम्मत वरुण आदि देवताओं का हवन पूजन जाप तथा इनके निमित्त दान ब्राह्मण भोजन करवाना आदि केवल परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से देव यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं तथा अन्य योगी मनन निधि ध्यासन द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा में अभेद भाव से आत्मा को ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करते हैं। ऐसे योगी जन तनत्व भाव भूल कर सहज ही परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। ये योगी वास्तव में यज्ञमय जीवन ही व्यतीत करते हैं। ब्रह्ममय यज्ञ करने वालों का यह देवत्व यज्ञ एक सहज अंग हो जाता है। यहाँ ध्यातव्य यह है कि यहाँ दैव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ दोनों परमात्मा को जो ब्रह्ममय है उसको प्राप्त कराने वाले हैं। वासुदेव सर्वम, सब कुछ ब्रह्ममय है। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक देव यज्ञ ब्रह्म यज्ञ ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, अतः निष्काम भाव से कर्म करें। इस प्रकार दैव यज्ञ और अभेद दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करने के अनंतर अब इंद्रिय संयम रूप यज्ञ का और विषय हवन रूप यज्ञ का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रोत्रादीनि इंद्रियान् न्यन्यन्ने संयमाग्नि सुजुवति, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्नि सुजुवति। अन्य योगी जन श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी जन शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। अर्थात एकांत काल में श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना और घ्राण आदि इन इंद्रियों को अपने अपने विषयों शब्द स्पर्श रूप रस और गंध आदि बाहर भीतर के विषयों से विवेक पूर्वक उन्हें हटाकर जो योगी इस संयम रूप अग्नियों में आहुति देते हैं तथा शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करते हैं, इसे ही यहाँ पर इंद्रियों को उनके विषयों में और इंद्रियों में विषयों का संयम रूप यज्ञ कहा गया है। इस प्रकार से इन दोनों स्थितियों के यज्ञों में राग आसक्ति का सर्वथा अभाव होने पर ही पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यहाँ पर ध्यातव्य यह है कि स्वभाव से ही इंद्रियों का अपने विषयों में आकर्षण होता है। आकर्षण तब होता है जब इच्छा बढ़ती है और जो अपनी इच्छाओं को अपनी क्षमता के अनुसार इंद्रियों के आकर्षण को समाप्त कर देता है वही योगी है। परंतु आज धन प्राप्ति की लिप्सा ने मानव मात्र को गर्त की ओर धकेल दिया है, जिस कारण भोगों में आसक्ति की लालसा ने उसका जीवन दुखी बना दिया है। ऐसे में संयम रूप इंद्रियों व विषयों के यज्ञ करने के गीता संदेश ने संपूर्ण मानव जाति को सुख प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। अतः हम संयम रूप धारण करके निष्काम भावना से कर्म करें। अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म संयोग रूप यज्ञ का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहते हैं, सर्वा

0: अनदीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम संयोग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, अर्थात कुछ योगी लोग दसों इंद्रियों की क्रियाओं का आत्म संयम समाधि रूप यज्ञ में हवन किया करते हैं। इस आत्म संयम योग समाधि में दस इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाएं देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, आस्वादन करना, ग्रहण करना, त्याग करना, बोलना और चलना फिरना आदि रुक जाती हैं और सर्वथा शांत हो जाती हैं। ऐसे समाधि रूप यज्ञ में प्राणों की क्रियाओं, श्वास प्रश्वास और हिलना डुलना आदि का भी हवन हो जाता है, क्योंकि इंद्रियों के निश्चल और शांत होने पर मन एकाग्र हो जाता है और मन के एकाग्र होने पर प्राणों की गति अपने आप रुक जाती है। यह सब कुछ तब होता है जब सच्चिदानंद घन परमात्मा का ज्ञान प्रकाशित होता है। यही आत्म संयम योग है और यही समाधि है। मनोनिग्रह पूर्वक क्रियाओं का विलीन करना ही समाधि है। यही आत्म संयम योग रूप अग्नि में इंद्रियों की और प्राणों की समस्त क्रियाओं का हवन करना है। यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है कि हम जितेंद्रिय बनकर प्राणायाम प्रक्रिया को अपने जीवन में धारण करें। इस प्रकार समाधि योग के साधन को यज्ञ का रूप देकर अब अगले श्लोक में द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार कहते हैं, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्त यतय संसित व्रताः। दूसरे कितने ही प्रशंसनीय व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले हैं, अर्थात जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि व्रतों का दोष रहित नियम पूर्वक पालन किया है, जो अपने अपने यज्ञ के अनुष्ठान में प्रयत्नशील रहते हैं, ऐसे पुरुषों को संसित व्रति यति साधक कहा गया है। ये प्रशंसनीय व्रत करने वाले यत्नशील साधक ही इन द्रव्य, तप, योग और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ को किया करते हैं। ये यति दूसरों को सुख पहुंचाने के उद्देश्य से अपने सामर्थ्य के अनुसार न्याय से प्राप्त द्रव्य को, धन को, ममता, आसक्ति व फल की इच्छा त्याग कर लोक सेवा में, जैसे पीने के पानी की व्यवस्था करने में, मंदिर व धर्मशाला बनाने में, असमर्थ व जरूरतमंद जनों को भोजन व वस्त्र आदि का यथा योग्य दान देकर जो द्रव्य खर्च करते हैं, वही द्रव्य यज्ञ है और यह द्रव्य यज्ञ यथार्थ कर्म ही है। अपने कर्तव्य धर्म के पालन में विपरीत परिस्थितियों, कठिनाइयों को प्रसन्नता पूर्वक सहन करना परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से अंतःकरण व इंद्रियों को पवित्र करने के लिए आसक्ति का त्याग करना तपो यज्ञ है। अंतःकरण की समता, जिसमें कार्य अधूरा हो या पूरा हो, फल मिले ना मिले, अवसर अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, निंदा मिले या प्रशंसा मिले, आदर हो या निरादर हो, ऐसी स्थिति होने पर जहाँ अंतःकरण शांत रहे, सम रहे, यही योग यज्ञ है। ममता, फल की इच्छा और आसक्ति छोड़कर अष्टांग योग रूप यज्ञ का अनुष्ठान करना भी योग यज्ञ है। केवल लोक हित के लिए गीता, रामायण, भागवत आदि का तथा वेद, उपनिषद आदि का यथाधिकार मनन विचार पूर्वक पठन पाठन करना, अपनी वृत्तियों का तथा जीवन का अध्याय करना स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। यह हमें यह संदेश मिलता है कि योगियों के दर्शाए विभिन्न यज्ञों को अपने जीवन में धारण करें।
1: अभी आप सुन रहे थे गीता संदेश। गीता संदेश में आज आपने गीता के चौथे अध्याय से श्लोक 25 से 28 की व्याख्या सुनी है। व्याख्याकार थे डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सांग। दोस्तों, हर महीने के अंतिम रविवार को हम प्रस्तुत करते हैं सांग। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सांग किस्सा नौटंकी। इस सांग के मूल लेखक हैं लेट पंडित लक्ष्मीचंद, प्रस्तुतकर्ता कैलाश वर्मा, सहायक प्रस्तुतकर्ता मोहिंद्र मोहन शर्मा। और दोस्तों, ये जो सांग आप सुनेंगे ये 90 मिनट का सांग है, तो कहीं आप जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए 101.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। लीजिए प्रस्तुत है सांग किस्सा नौटंकी।

0: सजना, भूप सिंह की बहू की ये बात सुनकर सेठानी अपने घर चली जाती है और उधर कुंदन मल और उसका दोस्त फूल सिंह शिकार खेलकर वापिस आ जाते हैं। तो फूल सिंह अपनी भाभी से पानी मांगता है और क्या कहता है, भाभी राम राम।
1: के बात
0: भाभी, मने थोड़ा पानी दिए।
1: मैं ना पिलाऊं सुतना पानी।
2: रे पीले ना केतरे तैर तीन किसरे सामने बटे।
0: भाभी मने 30 लाख रही से, मेरी बात सुनिए।
1: के बात
0: मेरी बात सुनिए।

0: पानी पी, मेरे को सामत की जरूरत ना है।
1: भाभी अब तो तू लाख बार पानी प्याज भी नहीं पूंगा, मेरी बात सुनिए। सुने सुने कह तेरे बो

ठीक

ಆನಂದಿ

0: तो प्यारे सजनों, अब फूल सिंह अपने भाई भूप सिंह के पास जाता है और फूल सिंह को देखकर भूप सिंह क्या कहता है, भाई साहब राम राम।
1: राम राम भाई फूल सिंह, न्यू किस तरह ढीला चेहरा हो रहा है आज तेरा, मन उदास क्यों है, उदासी का कारण बता।
0: भाई मेरा उदासी का कारण पूछना चाहते हो?
1: बिल्कुल पूछना चाहता हूँ।
0: तो मेरी बात सुनिए।
1: सुनाइए।

सिंह भाई तेरी बहू मने कन्या के साथ।

नहीं आग नहीं हो सुना से आग पर सुना करो मेरा भी पारा चढ़ता जा रहा हूँ खाना।

0: भाई फूल सिंह।
1: हाँ भाई।
0: तेरे साथ ये बिल्कुल सही बात बनी है।
1: हाँ भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा।
0: मेरे साथ आ जा, घर चल कर अभी उस रांड की खबर लेता हूँ, उसने तेरे साथ इतनी बदतमीजी क्यों करी। चल रहा मेरे साथ।
1: चलिए भाई।
0: रानी
2: के बाजी,
0: बात का तने तक नहीं पता लग गया, ये मेरे भाई छोटे भाई फूल सिंह को तने धमका के और दरबार में जाके उसने आज तेरी शिकायत करी। तने घर के अंदर लड़ाई झगड़े रखने की रोज की बाढ़ पड़ गई के मेरी बात सुने के कर दिया तने।
3: तेरा वो वीर नहीं काम की जो राड़ कर दे, ओ वीर नहीं काम की जो राड़ कर दे, ओ

ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੈਠਣਾ ਮੇਰਾ ਸਾਈ ਬਿਸਤਰ ਝਾੜੇ ਕਰਦੇ।

मेरा उसका चेक उसका चेले की तू गोरी बाड़े करते ओ उसका चेले की गोरी बाड़े करते।

0: तो कर ली घणी मना,
1: ओ मने तू कर ली घणी मना,
0: तेरा तेरे कसी तेरा रा रा रा रा, तेरे कसी ऊप गणा बिगाड़ कर दे, ओ तेरे कसी ऊप गणा बिगाड़ कर दे, मैं सिर काटूंगा ऊप

0: रखना चाहिए बड़ी हाथी में।
1: आप तो धमकान की बात कर रहे हो, शुक्र मानो के मैंने छित्तर ना मारे।
0: छित्तर?
1: हाँ।
0: कौन सा जुलम कर दिया मेरे भाई ने?
1: आपने निबिर ने मेरी गल के करी, सुनना चाहो तो सुनो।
0: ले सुनाइयो के कर दी तेरे साथ इसी उसने।

0: ये कहा फूल सिंह ने आपको?
1: जी हाँ, मरता यही बात कही सर।
0: और वो तो मेरे पास आकर न्यू रो रहा था कि मैं धमका दिया, ताने मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे फूल सिंह,
2: हाँ भाई,
0: ये तो तुम बहुत गलत काम करे। तेरी बड़ी भाभी थी, माँ के समान थी, तना इसके साथ इस प्रकार अपनी निगाहों को ठीक रखना चाहिए था।
2: नहीं भाई साहब, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा था भाभी एक गिलास पानी देना।
3: भाई महंगा तो लगता
2: है। और इसने मेरे को ताना मारा है। न्यू कह, अगर पानी पीना है तो नौटंकी के हाथ का पानी पी।
3: झूठ ना बोले,
2: मैंने दे रहा नहीं भाई साहब। नौटंकी कौन है? और मेरी बात सुनिए।
0: बता दे, बात सुना अपनी, फिर मेरे सुन।
3: अरे महंगा महंगा जी तो लिखा रहा था, ये बात सुना।
2: ए

काशी खेलने हो से कलिहारी तेरे दुख के पापड़े।

पुती कहे बहुले

0: शर्म आबरू रखे मात पिता और सास ससुर की दर्जा सिकर में रखे आए गए की टहली करे और बुरा वचन ना भखे इमरत भरा रहे जिब्या में जीता है जब चाहे
1: जाना जा

0: भाभी ई समझ गई, सही बात समझी से, मेरी भाभी ने धमका के ताया दिया, मैं घर से काट दिया और ताना मारा है। जब पानी पीना है तो नौटंकी के हाथ का पानी पी,
1: वो तेरा बोला
0: ये ताना मेरे को लगा, समझ गया।
2: धमका के नता दिया मन तेरी सी आवे

0: हाँ कुंदरमल दोस्त। हाँ भाई, मुझे पता नहीं नौटंकी कौन है और कहाँ के रहने वाली, आप जानते हैं?
1: भाई नौटंकी जो है ये मुल्तान शहर के रहने वाली है, राजा कर्ण सिंह की ये पुत्री है।
0: ठीक है,
1: तो आप मुल्तान शहर चले जाओ।
0: ठीक है।
2: तो प्यारे सजनो, अब फूल सिंह वहां से चल देता है और मुल्तान शहर के नजदीक एक बाग में पहुंच जाता है और उसमें ठहर।
3: Okay।

Sabika!

कला गरही।

Vem

मानस रहना चाहिए।

ईश्वर रोज मिलावे गुरु मान सिंह लक्ष्मी चलने सहज सहज समझावा।

0: अब फूल सिंह आवाज लगाता है कि इस बाग का कोई माली है या नहीं, तो आवाज सुनकर मालन आती है और उससे क्या बातचीत होती है। हाँ भाई, इस बाग का कोई माली है या नहीं?
1: हाँ भाई, क्या बात है?
0: मैं मुसाफिर हूँ और आपके बाग में ठहरना चाहता हूँ।
1: भाई पहली बात तो ये है, यो बाग जनाना सा है, यहाँ मर्द रुकने का कोई इंतजाम नहीं है, और इसलिए मेरे पास

लाग रही

मानस रहना चाहिए।

ईश्वर रोज मिलावे गुरु मान सिंह लक्ष्मी चलने सहज सहज समझावा।

तो प्यारे सजनों, आप फूल सिंह आवाज लगाते

0: इस बात का कोई माली है या नहीं, तो आवाज सुनकर मानन आती है और उससे क्या बातचीत होती है। हाँ भाई, इस बात का कोई माली है या नहीं?
1: हाँ भाई, क्या बात है?
0: मैं मुसाफिर हूँ और आपके बाग में ठहरना चाहता हूँ।
1: भाई पहली बात तो ये है, यो बाग जनाना था, यहाँ मर्द रुकन का कोई इंतजाम नहीं है, और इसलिए मेरे पास

0: सज्जनों, अब मालण उसे समझाती है लेकिन वो नहीं मानता। मालण कहकर चली जाती है। सफर की थकान से फूल सिंह को नींद आ जाती है और सोते हुए को देखकर मालण आकर क्या कहती है?
1: अरे मुसाफिर।
0: हाँ मालण।
1: तू सो क्यों रहा है?
0: मुझे सफर की थकान से नींद आ गई थी।
2: चाल क्या था सफर में?
0: मालण मारती क्यों है? मेरी बात सुनिए। ओ हट जाना दूरी पपनी, सोते के सर पे

मारने ते कुत नहीं निकलेगा, न्यू करियो तू धन ले ले, और मने बड़ी भूख लाग रही से, मेरे खातिर रोटी बना के लिया, और मेरी बात सुनिए, इतनी भूख लाग रही से, दो दिन से भूखा सू, ले यो धन तू रख ले, और मेरी बात सुन ले, एरी रोटी ते टुकड़ा, एरी मालनी री, एरी रोटी ते टुकड़ा मालनी, और कर दे मेरा

आना हो गया एरी तरे बगा में आना हो गया तरे बगा में आना हो गया समय पड़ी मैं तेरी नौटंकी का हार बना दूं।

और ठीक मिलन की समय मानस ने मिलती से मर के परदेसी मानस ने पड़े खुद बोले।

ना लगने तू मैं दाम दमड़ी पैसारी मैं के हार बनाऊंगा।

0: सजनो, अब फूल सिंह मालन को कुछ धन दे देता है। मालन तो रोटी बनाने के लिए चली जाती है और फूल सिंह हार में सच्चे मोतियों की लड़ डाल देता है। और जब मालन रोटी बना के आती है तो उसको हार सौंपता है और उससे क्या कहता है, मालन मैंने हार को तैयार कर दिया है और जाओ इसको लेकर जाओ और एक एक तारीफ इसकी सुना देना। मेरी बात सुनिए, क्या तारीफ सुनानी है?
1: अच्छा सुना दूंगी।
0: मेरी बात भी सुनती जाइए।

0: हाथा की कार
1: हमारे हाथा की कार
0: पहर के नहारी अपने राजा की

सिंह को जनाने भेष में देखकर उस पर मोहित हो जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हमारे में से एक मर्द होता तो जिंदगी का मजा आ जाता। तो फूल सिंह जनाने भेष में था, अपने जनाने कपड़े उतार देता है और मर्दाने कपड़े डाल लेता है और नौटंकी से शादी करके दोनों इकट्ठे अपने घर चले जाते हैं। आज का सांग, आज की कहानी यही खत्म करते हैं। बोलिए भाई।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे सांग किस्सा नौटंकी। इस सांग के मूल लेखक थे लेट पंडित लक्ष्मी चंद, प्रस्तुतकर्ता कैलाश वर्मा और सहायक प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र मोहन शर्मा। कलाकार थे जयपाल, राजवीर, नीलम शर्मा, किरण सैनी, शशि सैनी और वासुदेव। सहयोगी कलाकार थे धर्मवीर सैनी और संगतकर्ता थे हारमोनियम पर विजय शर्मा और रामधारी। ढोलक पर थे सबरदीन, नगाड़े पर थे मौसम। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। प्रस्तुति अमरीक सिंह की।

0: आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से प्रस्तुत साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। साथियों, कार्यक्रम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे के आज के संक में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संगीत एवं नृत्य भाग के विभिन्न कोर्सों के बारे में जानकारी, वेस्ट टू वंडर कार्यशाला के प्रतिभागियों का पुरस्कार वितरण समारोह, हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय लॉन्च किया अपना पॉडकास्ट, आयुष विभाग द्वारा प्रोटोकॉल योग के तहत करवाए जा रहे हैं विभिन्न तरह के योग। पर साथियों, कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑनलाइन कोर्सों के बारे में। साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने आपको जानकारी दी कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अगर आप ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री के कोर्स करना चाहते हैं तो कैसे आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्स आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कर सकते हैं। और साथियों, आज हम आपको जानकारी देंगे कि अगर आपकी संगीत में रुचि है और संगीत के क्षेत्र में आप कुछ करना चाहते हैं तो हम आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संगीत एवं नृत्य विभाग में। और साथियों, कौन कौन से कोर्स संगीत एवं नृत्य विभाग में करवाए जाते हैं, क्या उनकी फीस है और कब तक कर सकते हैं आप आवेदन, साथियों ये तमाम जानकारियां हमें दे रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर अशोक शर्मा, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक एंड डांस, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र।
2: सर, संगीत एवं नृत्य विभाग की हम बात करें तो कौन कौन से कोर्स कुरुक्षेत्र विद्यालय के संगीत एवं नृत्य विभाग में करवाए जाते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए।
1: सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगीत एवं नृत्य विभाग में इस समय दो प्रोग्राम चल रहे हैं, एक एमए मास्टर इन आर्ट्स म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल और दूसरा है मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। मैं अमरीक जी सबसे पहले मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की मैं बात करना चाहूंगा, जो हमारा 5 ईयर कोर्स है और इसकी जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, वो इसमें जिस बच्चे ने प्लस टू किया हुआ है, चाहे वो किसी बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से है, CBSE से है या किसी और इक्विवेलेंट बोर्ड से उसने प्लस टू की परीक्षा पास की है
2: जी,
1: और उसमें एग्रीगेट मार्क्स 45% चाहिए होते हैं
2: जी,
1: तो वो बच्चा इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। ये जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इसमें बच्चों को जो फर्स्ट 3 ईयर है, यानी कि फर्स्ट 6 सेमेस्टर है, उसमें हिंदी इंग्लिश के साथ साथ सितार, वोकल, तबला और कथक, ये चारों चीजें भी उनको सिखाई जाएंगी
2: जी।
1: और 10 सेमेस्टर का ये कोर्स है, 5 ईयर तक ये चलता है, प्लस टू साथ बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है। और ये इतना सफल प्रोग्राम है, इससे पास आउट बच्चे हमारे

0: टीचिंग में और स्वतंत्र रूप से कलाकार के रूप में काम कर रहे हैं, स्टूडियो में काम कर रहे हैं और फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। और इस टाइम हरियाणा में और पंजाब में हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं संस्कार कलाकार के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद रोजगार की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। अगर बच्चा स्किल्ड है, उसमें स्किल है, उसने अच्छे से किया है, रियाज किया है, तो वो निश्चित रूप से उसका भविष्य उज्जवल रहेगा।
1: सर, जैसे आपने कहा ये जो कोर्स आप करवा रहे हैं इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं विद्यार्थियों के लिए रोजगार की, लेकिन इसकी हम बात करें कि जैसे कोई भी विद्यार्थी इस कोर्स में आना चाहता है तो इसके लिए एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है आपका?
0: इसमें एडमिशन का प्रोसेस हम मेरिट बेस पे ही रखते हैं, क्योंकि अक्सर क्या है हमारे हरियाणा में क्या है प्लस वन टू में गवर्नमेंट स्कूल में म्यूजिक विषय रहता नहीं है, संगीत विषय ज्यादातर नहीं है
1: जी।
0: तो इसमें हमने ये कोशिश ये की कि बच्चे के पास अगर संगीत नहीं भी है, किसी फॉर्म में नहीं है, तो उस बच्चे को हम यहाँ मेरिट बेस पे एडमिशन हम देते हैं और फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं।
1: श्री, जो हमारा कोर्स मास्टर परफॉर्मिंग आर्ट की आप बात कर रहे हैं 5 ईयर है, तो इसमें अगर हम फीस की बात करें तो वो थोड़ा सा बताइए विद्यार्थियों के लिए।
0: फीस स्ट्रक्चर इसमें नॉर्मली है 1 ईयर का, यानी कि 2 सेमेस्टर का इसमें लगभग रहता है 13,000 से 13,500 तक इसमें फीस रहती है ना। और जो बच्चे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हैं उनके लिए तो स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, उनसे नाममात्र फीस ली जाती है। जब उनकी स्कॉलरशिप आ जाती है उसके बाद फिर वो फीस डिपॉजिट करते हैं। ये सुविधाएं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र दे रही है।
1: सर, ये तो हमने बात की मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट MPA कोर्स की, और जो दूसरे कोर्स आपका विभाग करवा रहा है उनके बारे में हमें बताइए।
0: हाँ, और दूसरा कोर्स जो हमारे यहाँ चल रहा है MA म्यूजिक वोकल और इंस्ट्रूमेंटल, 4 सेमेस्टर की डिग्री है ये
1: जी।
0: इसमें 4 सेमेस्टर यानी कि 2 ईयर तक ये रहता है, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं
1: जी।
0: इसकी जो एलिजिबिलिटी है जिसने BA किया हुआ है चाहे वो, इसमें एक सुविधा और दी हुई है हमने, फर्स्ट जो क्वालिफिकेशन है वो BA म्यूजिक जिसने किया हुआ है, बैचलर डिग्री जिसने की हुई है
1: जी,
0: जो जिसने वोकल में की है वो वोकल में MA वोकल में आएगा, और जिसने इंस्ट्रूमेंटल में की है वो इंस्ट्रूमेंटल में आएगा
1: जी।
0: हाँ, फिलहाल तक ये है, आगे MEP में कुछ चेंज होने की संभावना है। और दूसरा, ये बच्चे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन तो किया है या BSc किया है, BCom किया है या BA किया है, लेकिन म्यूजिक नहीं है
1: जी।
0: उसमें क्या है कि हमारे यहाँ जैसे रियाज संगीत समिति, प्राचीन कला केंद्र, गांधर्व महाविद्यालय, यहाँ से क्या होता है 6th ईयर डिप्लोमा अगर बच्चे ने पास कर रखा है तो विद बैचलर डिग्री उसको हम मास्टर प्रोग्राम में यहाँ एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। जो पास मार्क्स है जो एलिजिबिलिटी इसमें रखा हुआ 45% ही मिनिमम होना चाहिए।
1: यार, इसमें भी एक तरह से कहें सर, जो एडमिशन है वो मेरिट बेस पे होता है?
0: नहीं, MA में हमने एंट्रेंस बेस किया हुआ है, क्योंकि बच्चा BA में 6 ईयर डिप्लोमा में संगीत विषय पढ़ के आता है तो उसमें हम क्या करते हैं बच्चों को एंट्रेंस बेस पे लेते हैं। उसमें 80 मार्क्स का हम क्या करते हैं बच्चों को रिटर्न टेस्ट और 20% का उनका स्किल देखने के लिए, सुर लय ताल देखने के लिए उसमें एक छोटा सा टेस्ट हमने रखा हुआ है।
1: सर, इस कोर्स के अगर हम रोजगार की संभावनाओं की बात करें तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए।
0: रोजगार की संभावना जैसे मैंने मास्टर परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में भी कहा, और वही सेम हमारे यहाँ MA म्यूजिक वोकल के भी लिए भी है। हम बच्चों को सिलेबस के साथ साथ दूसरी स्किल भी हम सिखाते हैं, बच्चों को हारमोनियम बजाने की आदत डालते हैं, बच्चों को थोड़ा तबला भी साथ में कराते हैं, और ताकि बच्चा अगर स्कूल में जाता है कॉलेज में जाता है तो अपना उसका फ्यूचर अच्छा रहे और अच्छी तरह से आप काम कर सके। हमारे यहाँ से पास आउट बच्चे अपने अपने फील्ड में जाके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारी अगर हम पिछले 10 सालों की अगर हम प्लेसमेंट देखें बच्चों के रोजगार के दृष्टि से देखें तो हमारी 100% प्लेसमेंट है यहाँ। हमारा जहाँ से पास आउट बच्चा, एक भी बच्चा बिना रोजगार के नहीं है, हर बच्चे के हाथ में जैसे पास आउट होता है यहाँ से उसके हाथ में रोजगार होता है।
1: कि मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी इन दोनों ही कोर्सों में एडमिशन लेने जाता है तो वो कब तक आवेदन कर सकता है और क्या उसका प्रोसेस रहता है?
0: जो मास्टर परफॉर्मिंग आर्ट है उसमें फॉर्म निकले हुए हैं, उसके लिए www.kuk.ac.in पे जाके बच्चा IUMS पोर्टल खोल के वहाँ अपने आप को रजिस्टर करके फॉर्म भर सकता है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है और ये प्रक्रिया 21 जून तक चलेगी मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के। इसके बाद 21 जून को ये लास्ट डेट है अप्लाई करने की
1: जी।
0: और मास्टर प्रोग्राम की जो मैं बात कर रहा हूँ एमए म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल की, उसमें फॉर्म निकल चुके हैं, ये 15 जून तक उसमें अप्लाई करना है। उसके बाद फिर एंट्रेंस टेस्ट की डेट उनको बच्चों को प्रोवाइड करा दी जाएगी।
1: सर आपसे चाहेंगे कि क्या विद्यार्थियों को अंत में आप कहना चाहेंगे, वो हमें एक संदेश क्या आपकी तरफ से रहेगा आम विद्यार्थियों को?
0: मैं ये कहना चाहता हूँ जिन बच्चों में सुर लय ताल है, संगीत की समझ है, क्योंकि इसमें ये स्किल ऐसी है कि अगर भगवान ने बच्चों को थोड़ा सा सुर लय ताल में दिया है, अगर वो आके यहाँ डिग्री डिप्लोमा करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से स्किल्ड होके निकलेंगे, वो अपनी प्रतिभा को निखार के यहाँ से निकलेंगे और फ्यूचर में उनको बहुत सारी उनकी संभावनाएं, बहुत ब्राइट फ्यूचर उनका इंतजार कर रहा है। और इसमें एक बात और भी, मैं रोजगार के संदर्भ में एक बात मैं कहना भूल गया हूँ
1: जी।
0: तो जैसे हमारा रेडियो और दूरदर्शन है, हमारे यहाँ से पास आउट बच्चे वहां भी काम कर रहे हैं
1: जी।
0: तो एक डायरेक्शन ये भी है जहाँ बच्चे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ से चाहे वो एमए हो चाहे मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हो करके बच्चा निश्चित रूप से उसका भविष्य उज्जवल है। मैं ये बच्चों को कहना चाहता हूँ इस फील्ड में आए, सीखें, रियाज करें, अच्छे से काम करें और अपना जीवन आगे उनका सफल रहेगा।
1: तो डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी, विभागाध्यक्ष संगीत एवं नृत्य विभाग कुरुक्षेत्र विद्यालय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अमरीक जी, नमस्कार।
2: और साथियों आपको ले चलते हैं श्री कृष्ण संग्रहालय में। साथियों जहां पे दिनांक 25 मई को वेस्ट टू वंडर कार्यशाला के प्रतिभागियों का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। साथियों आपको जानकारी दें कि महिला शक्ति को समर्पित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन अर्जुन चौक कुरुक्षेत्र पे किया गया। और साथियों जो भी हमारे प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया उन सबका पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 25 मई को श्री कृष्ण संग्रहालय में किया गया। साथियों हम आपको जानकारी देते हैं कि महिला शक्ति को समर्पित इस कार्यशाला में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया, क्या रहा इसका थीम, साथियों इसके बारे में हमें जानकारी दे रही हैं।
3: मेरा नाम ममता पहवाल है और मैं कृष्णा सेल्फ हेल्प ग्रुप की अध्यक्ष हूँ।
2: मैम आज दिनांक 25 मई को श्री कृष्ण संग्रहालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए।
3: आज 25 मई को जो ये सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है श्री कृष्णा संग्रहालय में, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो 24 मई को जो हमारे एक दिवसीय कार्यशाला रही जिसका विषय था वेस्ट टू वंडर, और जो सिर्फ महिलाओं द्वारा ही आयोजित की गई है और महिलाओं के लिए ही आयोजित की गई थी, उसका जो है पुरस्कार समारोह यहाँ हम श्री कृष्ण संग्रहालय में मना रहे हैं।
2: जैसे आपने कहा जो आपकी थीम था कार्यशाला का वेस्ट टू वंडर, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताइए क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रतिभागियों के द्वारा बनाई गई।
3: जी वेस्ट टू वंडर हमारी कार्यशाला एक दिवसीय कार्यशाला का विषय रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य जो इस कार्यशाला का रहा है यही कि सबसे पहले कि महिलाओं के लिए ये आयोजित की गई, और ये एकमात्र पहली कार्यशाला ऐसी है जो सिर्फ महिला आर्टिस्टों के लिए ही हमने आयोजित की गई और महिलाओं द्वारा, क्योंकि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप कृष्णा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है और हमने ही इसे आयोजित किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य जो चीज़ें वेस्ट हम लोग फेंक देते हैं उससे हम कुछ नया कला की दृष्टि से हम कुछ अच्छा कर सकें और जो लोगों के लिए यूजफुल भी हो और वो जो आकर्षक भी हो, तो इसीलिए इसका नाम हमने वेस्ट टू वंडर रखा।

0: तरह की चीजें हम फेंक देते हैं और उनको हम शायद दोबारा घर में यूज नहीं करते हैं, या किसी हम कबाड़ी वाले को दे देते हैं, या फिर हम ऐसे ही है ना कचरे में डाल देते हैं। तो हमने बहुत समय से हम ये सारी चीजें इकट्ठा कर रहे थे, तो फिर हम एक विचार आया कि क्यों ना इन सब चीजों को लेके हम लोग कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें। फिर एक दूसरा विषय होता है कि वैसे तो कोई भी हम आर्टिस्ट को बुला के हम लोग इसको कार्यक्रम को कर सकते थे, बट मुद्दा ये नहीं है कि किसी आर्टिस्ट को हमने बुलाया और ये सब कार्य हमने पैसे देके करवा लिया। हमारा उद्देश्य ये था कि महिलाओं को एक मंच मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले, एक पहचान मिले, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं बहुत अच्छा कुछ कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन उनको एक मंच नहीं मिल पाता और वो घर से निकल ही नहीं पाती। तो हमारे साथ बहुत सारी ऐसे जुड़े 18 साल से लेकर 70 साल तक की महिलाएं जुड़ी, जो घरों से पहला पीपल का वृक्ष बनाया था और उस जो बर्बरिक को, क्योंकि इसका जो थीम हमने लिया था जोड़कर, और उसमें उन्होंने यूज किया प्लास्टिक की जो बोतलें हम फेंक देते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक की, पानी की बोतलें, वो यूज करके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फिर एक ने गीता बनाई, जो पुरानी फटियां होती हैं, लकड़ियां होती हैं, उनको जोड़कर बहुत बड़ी करीब 6 फुट की गीता बनाई है। और तीसरे नंबर पे हम बात करें कि पुराने टायरों की और एक जो हमारे पुराने जो हमारे वो होते हैं पेटियां होती हैं उसको लेके है ना एक बड़ा अच्छा एक सीटर बनाया 4 लोगों के बैठने का, और जिसमें हमारे मुख्य अतिथि आए और उन्होंने वहां पर बैठ के है ना अपनी जो है फोटो वगैरह भी ली। फिर हमारे पास कुछ प्रतिभागी पानीपत से, इंद्री से, करनाल से, शाहबाद से ये लोग आए, लड़कियां भी आई, तो उन्होंने वहां पर बहुत अच्छा अच्छा थीम पे काम किया। जैसे द्रौपदी चौसर बनाई है ना अपनी लकड़ी से, चौसर बनाई पुराने टायर से, एक ने जो है काल चक्र दिखाया, तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब थीम पे काम किया। और मैं सबसे ज्यादा मतलब लोग जो है पुरस्कार दे रहे हैं, और सबसे अच्छा जो पहली टीम रही वो टीम नंबर 1 रही, जिन्होंने वृक्ष बनाया, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि उन्होंने बोतलों से और एक पुराने लकड़ी का जो मतलब जो पेड़ टूटा हुआ था तो उसका तना लेके और उसकी लकड़ियों को ही यूज करके और बोतलें पत्ते काट के, तो वो बिल्कुल ही वेस्ट टू वंडर का जो हम एक थीम है बिल्कुल उसको सही ठहरता है, तो इसलिए उनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान जैसे मैंने आपको बताया कि 4 टायरों के साथ और एक पेटी जो पुरानी हम लोग है ना पुराने टाइम में पेटियां घर में हम लोग रखते थे और ऐसी स्टोर में रखी हुई थी, तो वो यूज करके जैसे उन्होंने सीटर बनाया तो दूसरा स्थान उन्हें मिला, तीसरा स्थान कालचक्र को दिया गया है। तो इस तरह से हमने पुरस्कार दिए, और बट लेकिन एक किसी भी तरह से किसी से भी आर्थिक सहायता नहीं ली। ये स्वयं जो हमारी कार्यशाला रही, ये जो हमारा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके एडवाइजर श्री सतीश जी ने सारा जो है आर्थिक सहायता की, और हमने सभी प्रतिभागियों को पूरा एक दिन रहने की, खाने की और पूरी व्यवस्था हमने स्वयं करी है।
1: मैं क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा, क्योंकि इस तरह की कार्यशाला बहुत बड़ी बात है, महिला शक्ति को समर्पित रही, अंत में क्या संदेश आपकी तरफ?
0: पहले तो सौभाग्य है मेरा कि मैं इस मंच पे, और मुझे KDB को धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने ये मंच दिया हमें, TFC सेंटर दिया जो हम पिछले 1 साल से जो चला रहे हैं और बड़े सफल तरीके से हम इसको कार्य कर पा रहे हैं इस तरफ, और आगे भी इस तरह के हम लोग आयोजन करते रहेंगे। और मैं बच्चों के लिए, मैं स्पेशली जो है लड़कियों के लिए मैं कार्यशाला आगे भी हम लोग आयोजित करेंगे जिसमें स्कूल के बच्चे आए और यहाँ पे है ना वेस्ट जो हम लोग क्योंकि इकट्ठा करते रहते हैं और से हम कुछ ना कुछ नया बनाए, और ये एक तरह का पूरा एक हब बन जाए जहाँ पर लोग आके इसे भी एक म्यूजियम की तरह समझे और देखें।
1: मैडम बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
0: धन्यवाद सर।
2: और साथियों फिर से आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। साथियों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में दिनांक 29 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने अपना पहला पॉडकास्ट लॉन्च किया, और साथियों विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। साथियों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इस पॉडकास्ट के बारे में हमें विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं।
3: मैं डॉक्टर मार सिंह पुनिया, निदेशक लोक संपर्क विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र।
4: सर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में दिनांक 29 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में जो पॉडकास्ट का जो उद्घाटन है वो जनसंचार मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान में किया गया, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए।
3: सबसे पहले तो आज पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, और इसके साथ ही मैं ये बात भी साझा करना चाहता हूँ कि माननीय कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा जी के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान में 3 जो मंच

0: है वो लॉन्च हुए हैं।
1: जी,
0: पहला मंच लॉन्च हुआ है आधुनिकता के दौर को देखते हुए केव के पॉडकास्ट, जिसके माध्यम से हमारे जो बच्चे हैं पॉडकास्ट जो है वो जारी किया करेंगे अलग अलग जो है सब्जेक्ट के जो विषय में। इसके साथ ही दूसरा हमारा मीडिया चौपाल का मंच भी लॉन्च हुआ है। इस मीडिया चौपाल के माध्यम से जो ग्रामीण संस्कृति है उसको हमारे बच्चे जो है मंच देंगे, और जिसमें हमारे सांस्कृतिक जो विषय हैं, संस्कार हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, लोक मान्यताएं हैं, उनसे जुड़े हुए लोग इस मंच पे अपने साक्षात्कार देंगे। तीसरा हमारा हुआ है मंच केयूके न्यूज। अभी तक जो है केयूके न्यूज हम एक जो है न्यूज़पेपर के रूप में निकालते थे, लेकिन अब हमने निर्णय किया है कि हमारे जो बच्चे हैं वीकली कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जो न्यूज है उसको लेकर भी जो है ये मंच जो तैयार किया गया है, और वीकली हमारी जो न्यूज है वो जारी होगी जैसे टीवी पर होती है। ये सभी कार्य हमारे बच्चे करेंगे।
1: सर, ये कहें कि बहुत बड़ा कार्य है तीन तीन चीजों को एकदम से कार्य करना, तो ये सब जिम्मेदारी जनसंचार और मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान की रहेगी, और किस तरह से इसमें
0: रहेगी। और एक और जो है मतलब बात साझा आपसे करना चाहता हूँ कि माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में हमने निर्णय लिया है कि हर साल रोहित सरदाना मेमोरियल अवार्ड जो है हम 21,000 रुपए की राशि का राष्ट्रीय स्तर के जो पत्रकार हैं उसको देंगे, और अब की बार अमित पांडे जो न्यूज 18 के पत्रकार हैं राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त जो पत्रकार हैं उनको दिया गया है। कल माननीय कुलपति जी ने रोहित सरदाना मेमोरियल अवार्ड में 21,000 रुपए प्रशस्ति पत्र शॉल और एक मोमेंटो देकर के उनको सम्मानित भी किया है।
1: सर, हमने देखा है कि कुरुक्षेत्र विद्यालय जो मुख्यतः कार्यक्रम बहुत सारे आयोजित करता है जिनमें से एक है रत्नावली, तो उसमें भी इतना की पॉडकास्ट का आयोजित करता था कुरुक्षेत्र विद्यालय, लेकिन अब खुद ही जनसंचार मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान करने लग गया, तो वो किस तरह से हमारे विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद रहेगा?
0: बिल्कुल लाभप्रद रहेगा। हम तो ये चाहते हैं कि जितनी भी रील है, जितनी भी वीडियो है, जितनी भी फोटोग्राफी है वो हमारे बच्चे ही करें, ताकि हमारे को मतलब हमारे जो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर हो, और यही माननीय कुलपति जी की सोच है कि बच्चों का मैक्सिमम एक्सपोजर होना चाहिए ताकि वो आगे जाकर अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सके। हमारे जहाँ तक आपने बात की है रत्नावली में भी जो है ये जनसंचार और मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों ने ही मीडिया चौपाल की शुरुआत की थी, अब वो स्थायी रूप से बन गई है। उसमें वो केवल रत्नावली में 4 दिन के लिए थी, उसमें भी हम जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए और रत्नावली के आकर्षण का केंद्र बना। उसका पूरा संचालन हमारे मीडिया संस्थान के छात्रों ने किया था।
1: सर, कई बार हमने ये भी देखने को मिला है कि कई बार बहुत से विभागों के टैलेंटेड विद्यार्थी भी होते हैं, वो भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो क्या ऐसे विद्यार्थियों को भी यहाँ पे मौका मिलेगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो मंच है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मंच है, केवल संस्थान का मंच नहीं है, और हमारे विश्वविद्यालय के किसी दूसरे विभाग का छात्र भी इस मंच पर आकर के अपनी प्रस्तुति देना चाहता है या हमारे साथ जो टीम में शामिल होना चाहता है तो उसका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि ये तीनों मंच जो है हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए।
1: सर, अंत में चाहेंगे क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा हमारे विद्यार्थियों के लिए?
0: मैं चाहूंगा कि आज के युग में मतलब रोजगार पर जितने भी कोर्सेज हैं उसके माध्यम से मीडिया संस्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और हमारे जितने बच्चे हैं उनकी सबकी 100% जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिल रही है, और पिछले 1-1.5 साल में भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर हुआ है, और ये तीनों मंच हमारे बच्चों के रोजगार के लिए सहायक सिद्ध होंगे।
1: तो डॉक्टर मां सिंह जी, पूर्णिया निदेशक जनसंचार मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र विद्यालय एवं लोक संपर्क अधिकारी कुरुक्षेत्र विद्यालय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
0: बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच।
2: और साथियों, अब आपको जानकारी देंगे कि आयुष विभाग कुरुक्षेत्र द्वारा 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पूरे कुरुक्षेत्र जिले में प्रोटोकॉल योग करवाए जा रहे हैं। साथियों, आज हम आपको जानकारी देंगे कि प्रोटोकॉल योग के तहत कौन कौन से योग करवाए जा रहे हैं और कहां कहां पे योग कार्यशालाओं का आयोजन हो रहा है। साथियों, आप भी अगर प्रोटोकॉल योग में शामिल होना चाहते हैं और कहां पे आप संपर्क कर सकते हैं, साथियों ये तमाम जानकारियां हमें दे रहे हैं।
3: सभी को नमस्कार, मेरा नाम मंजीत, LNJP हॉस्पिटल आयुष विंग में कार्यरत योगा स्पेशलिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ।
1: मंजीत जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका।
3: जी सर, थैंक यू।
1: कुरुक्षेत्र जिले की बात करें तो आयुष विभाग द्वारा प्रोटोकॉल योग करवाए जा रहे हैं, इनके बारे में हमें जानकारी दीजिए, कौन कौन से योग करवाए जा रहे हैं?
3: इसमें सर 21 जून के रिगार्डिंग योग प्रोटोकॉल करवाए जा रहे हैं। इसमें एक्चुअली सबसे पहले हम प्रेयर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करवाए जाते हैं, ग्रीवाचालन के अभ्यास करवाए जाते हैं। ग्रीवाचालन में भी चार प्रकार के अभ्यास कराए जाते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और साइड में, कंधे के साइड में साइड से घुमाते हुए और रोटेशन में। उसके बाद हम स्कंध चालन, स्कंध हमारे कंधे को बोला जाता है, स्कंध चालन के अभ्यास करवाए जाते हैं। और फिर कटी चालन के अभ्यास करवाया जाता है, इसमें कटी हमारी कमर को बोला जाता है। उसके बाद हम घुटना चालन, घुटना के अभ्यास कराते हैं, जैसे हम चेयर पोज पे बैठते हैं। ये थे हमारे कुछ सूक्ष्म व्यायाम। इसी में कुछ जैसे खड़े होने वाले आसन, बैठकर किए जाने वाले आसन और पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन और पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन का भी अभ्यास इसमें हम योग प्रोटोकॉल में करवाते हैं। जैसे खड़े होने वाले आसनों में ताड़ासन, पादहस्तासन, अर्ध चक्रासन, त्रिकोणासन और बैठ के किए जाने वाले आसनों में हम करवाते हैं इसमें भद्रासन, वज्रासन और अर्ध उष्ट्रासन और उष्ट्रासन, शशांकासन और उत्तान मंडूकासन, मकरासन। इसी तरह पेट के बल फिर लेट के किए जाते हैं कुछ आसनों का अभ्यास प्रोटोकॉल के अनुसार, भुजंगासन और सलभासन हम पेट के बल लेट के किए जाते हैं। फिर पीठ के बल, कमर के बल लेट के किए जाने वाले आसनों में हम सेतुबंधासन, उत्तान पादस्थासन, अर्ध हलासन, पवन मुक्तासन और सवासन। फिर इसमें हम कुछ श्वसन से रिलेटिव हम क्रियाएं करवाते हैं, कपाल भाती और अनुलोम विलोम, शीतली और शीतकारी। उसके बाद कुछ एक दो मिनट का ध्यान सर। फिर उसके बाद हम संकल्प इसमें करवाया जाता है योग प्रोटोकॉल में, और उसके बाद शांति पाठ के साथ। ये पूरा प्रोसेस सर 45 मिनट्स का होता है, 45 मिनट का।
1: जी, जैसे आपने जानकारी दी प्रोटोकॉल योग के तहत इस तरह के योग और प्राणायाम आप करवा रहे हैं, लेकिन पूरे कुरुक्षेत्र जिले की आप बात करें तो कहां कहां पे ये सब करवा रहे हैं वो हमें जानकारी दीजिए।
3: इसमें सर हम अलग अलग जगह पे, सबसे पहले हमने डीपी पीटीआईओ को 18 मई से 20 मई तक डीपी पीटीआई सब पूरे डिस्ट्रिक्ट के जिलों के, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, उनको सभी को ट्रेनिंग दी गई। उनके बाद ट्रेनिंग के बाद डीपी पीटीआई जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी उससे 21 और 23 मई को बच्चों को, पूरे स्कूल में बच्चों को करवाया गया। लगभग हमारे हर ब्लॉक में जैसे प्रतिदिन 20,000 प्लस बच्चों ने ये ट्रेनिंग प्राप्त की, लगभग लाख प्लस के आसपास सभी बच्चों ने ये ट्रेनिंग का अभ्यास करवाया गया। अभी जैसे कंपटीशन की बात करें जो शेड्यूल के अनुसार इसमें शेड्यूल है, तो जो हम है 2 जून को ब्लॉक लेवल और योगासन लेवल का कंपटीशन 2 जून को होगा, अलग अलग ब्लॉकों में होगा सर इसका, और 9 जून को होगा जिला स्तरीय और 15 जून को होगा इसमें राज्य स्तरीय कंपटीशन योग का रहेगा। जी सर।
1: सर जैसे ये तो आपने बताई कि स्कूली विद्यार्थियों को आपने तैयार कर रहे हैं, डीपीआई जो पीटीआई उनको योग सिखाया गया है, लेकिन आमजन की अगर हम बात करें, क्योंकि जो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून को होगा, आमजन भी अगर इन योगासनों से जुड़ना चाहे, आपके कैंपों से जुड़ना चाहे, वो भी योग सीखना चाहे, तो कुरुक्षेत्र जिले की अगर हम बात करें तो कहां कहां पे जाके वो संपर्क कर सकता है?
3: 16 से 18 जून को जैसे डीसी साहब ने जिला प्रशासन के उससे हमें कहा गया कि कोशिश करेंगे कि हम सारे प्रोग्राम ब्रह्म सरोवर पर ही करवाए जाएंगे, जो बीच वाला एरिया है ब्रह्म सरोवर का, तो उस पे ही सारे प्रोग्राम, जहां हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं वहीं पे सारे प्रोग्राम कोशिश करेंगे कि वहां सुबह सुबह करवाए जाएंगे। इसी में जैसे ना सर आमजन से हम भी खुद और डिपार्टमेंटल ये हम सब उनसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े। जैसे 1 तारीख को एमसी वार्ड का है, एमसी वार्ड में है, और 3 को हेल्थ डिपार्टमेंट है, फिर हायर 4 को हायर एजुकेशन का है, 5 को डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का है, उसके बाद हुड्डा का है, फिर सर स्किल डेवलपमेंट का है, फिर नौका योगासन है भारतीय योग संस्थान का। इसी तरह हम अलग अलग उसमें सभी से जुड़ रहे हैं, और 8 को भी योग जागरण यात्रा निकाली जाएगी ताकि सबको अवेयर, आमजन को अवेयर किया जा सके। नहीं तो अलग अलग ब्लॉकों में भी ये स्थान निर्धारित किया जाएगा, लेकिन जो थानेसर का है थानेसर में ये ब्रह्म सरोवर पे ही किया जाएगा सर।
1: ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो वहां पे किस तरह से आप पहुंच कर रहे हैं, वहां पे किस तरह से जागरूकता फैला रहे हैं योग को लेके?
3: सर उसमें शेड्यूल के अनुसार हम जैसे जिला स्तर पर, तो इसमें 16 से 18 जिला स्तर और ग्रामीण स्तर पर ही करवाया जाए। 11 से 13 जून इसमें जिला और ब्लॉक स्तर प्रशासनिक अधिकारी, सभी विभागाध्यक्ष, सभी कर्मचारी, सरपंच और पंच, निर्वाचित सदस्य, पुलिस, सभी के इनके प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाया जाएगा 11 से 13 जून उसकी तारीख रहेगी सर। और जैसे हिसाब से जो भी डिस्कस होगा, जहाँ पे हमारे जैसे नोडल अधिकारी बनाए गए हैं कुछ डॉक्टर्स को और फिर उनके साथ योग सहायकों को लगाया गया है, तो उनके अनुसार सरपंच पंच को निर्धारित स्थान बता दिया जाएगा और उसी स्थान पर फिर हम ब्लॉक लेवल पे भी ये ट्रेनिंग, जैसे हमने DPPTI की करवाई सर, उसमें जिला और ब्लॉक स्तर की 11 से 13 जून के बीच में हम सभी की उनमें ट्रेनिंग योग प्रोटोकॉल की करवाई जाएगी सर।
1: सर अंत में क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से, ताकि जो हम 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे 21 जून को पूरी तरह से सफल रहे?
3: सर एक तो इसमें तो अंतिम संदेश से पहले जैसे जो मैं ये संदेश देना चाहूंगा, इसमें जैसे 18 एज और 18 से 55 एज तक जो हम कंपटीशन करवा रहे हैं, तो वो जैसे थानेसर में रहेगा BR इंटरनेशनल स्कूल में, और लाडवा में रहेगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और पेहवा में भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शाहबाद में भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सबसे पहले तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी इस कंपटीशन में भाग लेना चाहता है वो बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले और इंटरनेशनल योग डे के अकॉर्डिंग ही ये कंपटीशन करवाया जाए, और उसके बाद जिला स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर भी हम उनको आगे लेके जाएंगे। और अंत में सर आपके यही संदेश रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा इसमें भागीदारी रहे ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके, क्योंकि आज के मानसिक तनाव की वजह से सभी में कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तो उसको स्ट्रेस को कम करने के लिए कहीं ना कहीं हर जगह जैसे व्यायामशालाओं में क्लास चली हुई है, व्यायामशाला हमारे योग सहायक व्यायामशालाओं में जाते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं हर जगह क्लास आज योग की चल रही है आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से, तो अधिक से अधिक उसमें जुड़े। और जैसे स्ट्रेस लेवल के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है, तो हम उनको कोशिश करेंगे कि ताकि लोग आमजन स्वस्थ रह सके बिना मेडिसिन के।
1: तो मंजीत सिंह जी, जिला योग विशेषज्ञ कुरुक्षेत्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
3: धन्यवाद सर।
2: साथियों कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के आज के अंक में सिर्फ इतना ही। साथियों आज के अंक में वाचन संकलन और संपादन रहा आपके दोस्त अमरीक सिंह का, प्रस्तुति सहायक दीपक और प्रस्तुतकर्ता विनय श्री। साथियों इसके साथ ही अनुमति दीजिए अपने दोस्त अमरीक सिंह को, अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।

आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। प्रस्तुति थी अमरीक सिंह की। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

दोस्तों आप सबका स्वागत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए मैं हूं आपका दोस्त विपिन सहगल। दोस्तों आज हमारे पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी समय है हम कोशिश करेंगे आपसे कुछ बातचीत की जाए और आपको बेहद ही खूबसूरत गीत सुनवाए जाएं। दोस्तों आज 31 मई है और 31 मई को सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक निर्माता और लेखक राज खोसला साहब का उनकी पुण्यतिथि है। राज खोसला की यदि बात की जाए तो राज खोसला दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो में बतौर शास्त्रीय गायक उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और मुंबई जाकर फिल्म निर्देशन में महारत हासिल की। वर्ष 1954 में फिल्म मिलाप से बतौर निर्देशक राज खोसला ने फिल्मों में कदम रखा। हिंदी सिनेमा में क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस शैली की फिल्मों को लोकप्रिय बनाने का मुख्य श्रेय राज खोसला को जाता है। दोस्तों गानों के जादुई फिल्मांकन, अनूठे कैमरा शॉट्स और अपने लेखन के लिए सिनेमा जगत में विशेष रूप से राज खोसला को पहचाना जाता है। दो रास्ते और मेरा गांव मेरा देश जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर राज खोसला ने सफलता के नए कीर्तिमान साबित किए। उनकी निर्देशित फिल्मों में मैं तुलसी तेरे आंगन की को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार भी मिला था। राज खोसला के द्वारा निर्देशित की गई जो फिल्में हैं दोस्तों वो सीआईडी जो कि 1956 में रिलीज हुई थी, काला पानी जो कि 1958 में रिलीज हुई थी, वो कौन थी 1964 में रिलीज हुई, मेरा साया 1966 में रिलीज हुई, दो रास्ते 1969 में रिलीज हुई और मेरा गांव मेरा देश 1971 में रिलीज हुई। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हम आपको राज खोसला साहब के द्वारा जो निर्देशित फिल्में हैं उन फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं। लीजिए सबसे पहले हाजिर है मेरा गांव मेरा देश फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में है।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 बस होने ही वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 9:15 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम और रात्रि 10 से 11 तक सुनना ना भूलें आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का कार्यक्रम हेलो FM।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
2: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
3: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
4: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
5: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चे के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, फिल्मकार राज खोसला के कृतित्व की बातों का जिक्र जब होता है तो तमाम लोग उन्हें बतौर निर्देशक, निर्माता या पटकथा लेखक के रूप में जानते हैं। लेकिन राज खोसला एक प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर भी रहे थे। 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे राज खोसला बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी थे। वो जब गायक बनने की चाह लेकर तत्कालीन बॉम्बे आए तब वो ऑल इंडिया रेडियो में बाकायदा म्यूजिक स्टाफ के रूप में कार्य करते थे।

लीजेंड फिल्मकार और जाने माने अभिनेता गुरुदत्त के सहायक रहे राज खोसला ने 1956 में जो फिल्म निर्देशित की वो थी फिल्म सीआईडी।

राज खोसला को आरंभ से ही वुमेन्स डायरेक्टर कहा जाता रहा है। दोस्तों, फिल्में जो भी हों, लेकिन नारी के चरित्र को राज खोसला ने बड़ी महत्ता दी है अपनी फिल्मों में। 1964 में उन्होंने निर्देशित की फिल्म वो कौन थी, जिसमें अभिनेत्री साधना को मिस्ट्री

1966 में आशा पारेख अभिनीत फिल्म बनाई दो बदन। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री सिमी गरेवाल को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था राज खोसला की फिल्म दो बदन के लिए।

0: 1969 में राज खोसला निर्देशित फिल्म आई थी दो रास्ते। अभिनेत्री मुमताज के अभिनय को भला कौन भुला सकता है।
1: मैं

राज खोसला निर्देशित 1978 की फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। दोस्तों इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को मैच्योर एज में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था।

जाने माने फिल्मकार और सदाबहार हीरो देवानंद ने राज खोसला की प्रतिभा को पहचाना था शुरू में, और राज खोसला के डायरेक्टर बनने का ये सिलसिला शुरू हुआ था 1954 में बनी फिल्म बिलाप के साथ। इस फिल्म के हीरो थे देवानंद और नायिका थी गीता बाली, और उसके बाद राज खोसला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

चूंकि राज खोसला शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, क्लासिकल सिंगर थे, यही वजह है कि अपनी फिल्मों की नायिकाओं के किरदार की महत्ता बनाए रखने के साथ साथ ही उनकी फिल्मों का संगीत भी बेहतरीन होता था।

राज खोसला ने अपनी शैली से हटकर, टाइल से हटकर भी चंद फिल्मों का निर्देशन किया दोस्तों। इसमें प्रमुख है 1958 की फिल्म 16 साल।

1971 में डकैत ड्रामा जैसी फिल्म बनाकर राज खोसला ने धूम मचा दी थी। याद होगा आपको, वो फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश।

0: राज खोसला ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 21 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत फिल्म भी शामिल है, और ये फिल्म है दोस्ताना।
1: वो

राज खोसला निर्देशित मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म को 1978 का बेस्ट मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, राज खोसला ने अपनी हर एक फिल्म के संगीत को बेहतर से बेहतरीन बनाए रखा। 9 जून 1991 को राज खोसला ने अपने जीवन की अंतिम सांस मुंबई

वो तो यकीनन इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन राज खोसला की फिल्में और उन फिल्मों का गीत संगीत हमेशा उनकी यादों को तरोताज़ा बनाए रखेगा।

0: क्या।
1: तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था अपने दौर के जाने माने फिल्मकार राज खोसला पर। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। और अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो FM।

दोस्तों हम आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो एफएम। साथियों आज का हेलो एफएम कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए मैं हूं आपका दोस्त विपिन सहगल। दोस्तों जल्दी से मिलाइए हमारा फोन और सुन लीजिए अपनी फरमाइश के फिल्मी नगमे। लेकिन ध्यान रखिए आपको जो आज नंबर मिलाना है वो नंबर है 9466021336। जी हाँ एक बार फिर सुनिए 9466021336। इस नंबर पर हमें अभी कॉल कीजिए और सुन लीजिए अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत। आप इतना कोशिश कीजिए और हम आपको सुनवाते हैं ये बेहद ही खूबसूरत

0: हेलो एफएम।
1: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन जनाब बात कर रहे हैं?
1: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। सर
0: लोकेंद्र जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम हेलो एफएम में।
1: जी धन्यवाद सर।
0: तो आज आपने कितने दिनों और कितने महीनों के बाद कॉल मिलाया, पहले तो ये बताइए।
1: सर जी, एक महीने से ज्यादा हो चुका है मुझे, और मैं आपके यहाँ का नियम को फॉलो करता हूँ, एक महीने के बाद ही आपके से फोन पर बात करता हूँ सर। बाकी पूरे प्रोग्राम तो आपका नियमित सुनता हूँ, हर संडे को रात को समय में जब मैं सैलून से आ जाता हूँ तो आपके प्रोग्राम का बिल्कुल ट्यून करना मुझे याद रहता है बिल्कुल। और अब तो ये जो ऐप आ गए है ना, ऐप में ऐसे फंक्शंस भी आ गए हैं कि आप टाइमर लगा दो उसके अंदर कि इतनी बजे आपको वो स्टेशन सुनना है, तो वो मोबाइल ऑटोमेटिक वो स्टेशन ऑन हो जाएगा।
0: बिल्कुल सही बात है, टेक्नोलॉजी का यूज जो है हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जमाना आ गया है।
1: हाँ जी सर बिल्कुल, ये एआई का जमाना आ गया है, पर एआई का इस्तेमाल जब आप सही उपयोग करेंगे तो ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बाकी आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो बात गलत है सर।
0: चलो लोकेंद्र जी, आज के इस हेलो फिल्म कार्यक्रम में आपकी कौन सी फरमाइश पूरी कर दी जाए?
1: ये पुरानी फिल्म है, फिल्म का नाम है जानी दुश्मन। ये उस दौर की बहुत ही सुपर डुपर फिल्म है जानी दुश्मन, इसमें बहुत से मल्टी स्टार कलाकार फिल्म में अभिनेता अभिनेत्री थे, उसी का गीत है सर ये। मुझे जानी दुश्मन फिल्म का है गाना, ये सारे रिश्ते नाते तोड़ के आ गई
0: लता मंगेशकर की आवाज में।
1: जी जी सर जी,
0: ठीक है लोकेंद्र जी, आपने हमें कॉल किया, आपका बेहद शुक्रिया, हम आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं
1: जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो एफएम।
1: नमस्कार जी। हेलो सर,
0: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका?
1: ओम प्रकाश सैनी, पीसी नगर, कुरुक्षेत्र। धन्यवाद
0: ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम हेलो एफएम में।
1: धन्यवाद।
0: तो सर आप क्या करते हैं, थोड़ा दूसरे हमारे जो श्रोता हैं उनको बताइए।
1: हम बस रेडियो सुनते हैं जी। हम तो
0: अच्छा रेडियो सुनते हैं। रेडियो पे कौन कौन से कार्यक्रम आपको सबसे अच्छे लगते हैं?
1: सुबह सवेरे चल जाता है जी सुबह।
0: अच्छा ट्रांजिस्टर पे सुनते हैं या आपने ऐप डाउनलोड किए?
1: ट्रांजिस्टर है सर जी, ट्रांजिस्टर, तीन तीन ट्रांजिस्टर अपने को।
0: बहुत बढ़िया। तो
1: एक दो खाते थे, दूसरा दूसरा दूसरी मोबाइल तो चलता ही है।
0: बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: तो किस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं?
1: बस नए पुराने टाइम के हिसाब से सुनते रहते हैं जी।
0: चलो ओम प्रकाश जी, आज के
1: मिक्स मसाला।
0: बहुत बढ़िया, आज के इस कार्यक्रम में आपकी कौन सी फरमाइश है जो पूरी कर दी जाए?
1: आज हमका सुना दीजिए, कागज कर्मा डांस कर लें थोड़ा सा।
0: थोड़ा सा गुनगुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: कागज कलम दवा चला, लिख तू दिल तेरे नाम कर, दिल क्या तू जान भी मांगे तो दे दो, दे दो ते तो ये कहला काम कर, कागज से कलम दवा तेरा, लिख तू दिल तेरे ना।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाया आपने, आपका शुक्रिया। हम आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं।

0: हेलो एफएम।
1: हेलो एफएम।
0: नमस्कार, क्या नाम है?
1: अस्सलाम वालेकुम जी।
0: वालेकुम सलाम, नाम बताइए अपना।
1: तितलियों के पंख लगाकर उड़ जाना काम है मेरा, यही तो समझ लेना कि मोहम्मद गुलजार नाम है मेरा।
0: क्या बात है, बड़े शायराना अंदाज में आपने अपनी इंट्रोडक्शन दी। कहाँ से आपने कॉल मिलाया?
1: उत्तर प्रदेश जिला शामली साहब ने कॉल लगाया आपको।
0: गुलजार जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम हेलो एफएम में। बड़ी शिद्दत से आप हमारे फोन जो कॉल्स हैं वो करते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं और हमें अच्छा लगता है।
1: हाँ जी, विपिन सहगल जी।
0: जी जी,
1: क्या हाल है आपके?
0: हम ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? शामली में आपके यार दोस्त परिवार के दूसरे जो सदस्य हैं वो कैसे हैं?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से सब।
0: तो गर्मी जो है आजकल पूरी अपने जोर शोर से अपना जो रंग है दिखा रही है।
1: हाँ जी, गर्मी बहुत हो रही थी, कल जो है बारिश हुई थी थोड़ी सी, उससे ही ठंड हो रही है, गर्मी बहुत कम हुई है शामली में।
0: हाँ, आज
1: आकाशवाणी और कुरुक्षेत्र में मौसम कैसा है?
0: कुरुक्षेत्र में भी कल बरसात हुई थी, आज हवा सुबह से हवा चल रही है और मौसम ठंडा है। ठीक है मौसम आज?
1: जी इंशाल्लाह।
0: तो गुलजार साहब, आपकी कौन सी फरमाइश पूरी की जाए?
1: परदीप भाई, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि पहले कुछ मित्रों के नाम लूंगा।
0: लीजिए, जरा जल्दी लीजिए क्योंकि लाइन में आपके जैसे कई श्रोता हैं। लीजिए।
1: मेरे मित्र है सहनाज मल्लिक, बहनाज मल्लिक, और भी ये है महबूब दुकानदार है, मसूद हुसैन है, वक्कार फरीदी है, ये मेरे मित्र है, इनके साथ और भी बहुत सारे मित्र है, हम सब मिलकर सुनेंगे ये जो गाना मैंने कहा था फूल और कांटे फिल्म का, गीत के बोल है, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में।
0: क्या बात है, बड़ा शायराना आपका बात करने का अंदाज है और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके।
1: अरे विपिन भाई जी, जो मैंने वो जो गाना है ना हमारा लग क्या बताए, जब कभी आएंगे तो उस गाने की फिल्म का नाम मुझे जरूर बता दा।
0: जी जी बिल्कुल बताएंगे, आपने हमें कॉल किया आपका शुक्रिया।
1: और वही गीत सुनूंगा मैं उसी टाइम पर।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे। और आपने आज हमें कॉल किया आपका बेहद शुक्रिया, अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पसंद का गीत सुनिए।
1: जी धन्यवाद विपिन भाई,
0: शुक्रिया।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हेलो एफएम।
2: हेलो सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, क्या नाम है आपका?
2: सर मैं राम बाबू मालवी बोल रहा था सर, कोलार रोड भोपाल से।
1: राम बाबू जी आपका स्वागत है। तो आप पहले भी हमें कॉल करते हैं, फर्स्ट टाइम कॉल किया?
2: नहीं सर, बहुत मैंने 4 महीने पहले लगाया था मैंने फोन, और वैसे आपके प्रोग्राम मैं सुनता रहता हूँ आकाशवाणी।
1: कौन सा प्रोग्राम है जो आपको हमारा सबसे अच्छा लगता है?
2: सबसे अच्छा तो प्रोग्राम यही वाला लगता है जो लाइव फोन प्रोग्राम लगते हो सर, वो वाला, और युगवाणी वगैरह जो प्रोग्राम आते हैं ना
1: जी,
2: न्यूज वगैरह है सब सुनते रहते हैं सर, अच्छे लगते हैं प्रोग्राम आपके यहाँ से।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज के इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत चुनकर लाए हैं?

0: आज गाना उनके लाए हैं बोल बच्चन का टाइटल सॉन्ग।
1: अच्छा तो ये फिल्म देखी आपने, कॉमेडी फिल्म थी ये बोल बच्चन?
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने दो या तीन बार देखी है ये फिल्म।
1: तो इस गीत को, इस गीत को सुनने की कोई विशेष वजह या आपको वैसे ही अच्छा लगता है?
0: नहीं गाना भी अच्छा लगता है, मूवी भी अच्छी है, वैसे अच्छे लगते हैं सर। वैसे आकाशवाणी से चलेंगे तो अच्छी बात है ना, आपके क्षेत्र से
1: बहुत बहुत बढ़िया। राम बाबू जी आपने हमें कॉल किया, आपका शुक्रिया, हम आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं।
0: जी सर नमस्कार,
1: शुक्रिया।
2: I can talk English, I can walk English, I can laugh English, because English is a very funny language. Bhairo becomes Byron and Byron becomes Bhairo because their minds are very narrow.
3: Excuse me, please.
4: मेरे पिताजी कहाँ करते हैं? That the whole country of the system is a position of the hemoglobin in the atmospheric pressure.
5: Hey! You see, sir. Debating on the diabolic diagnosis of decisive deliverance, a papad is a rhythmic rhyme replica of a jhapad. Where one relishes your hunger and the other relishes your anger. Similarly, sir, Bachchan is also a rhythmic rhyme replica of Bol Bachchan, where one represents a magnanimous name, while the other represents a horrendous game.

0: दारू पीने से लिवर खराब होता है, और मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: ड्रामा करता है, अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा खजूर।

0: यू सी सर, द होल कंट्री ऑफ द सिस्टम ये है कि हम फिल्म में है नहीं, सिर्फ नाम है हमारा
1: बच्चन।
2: दोस्तों आपने ट्यून इन किया है 101.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी कुरुक्षेत्र और कार्यक्रम चल रहा है हेलो एफएम। आज का हेलो एफएम का ये सफर आप तय कर रहे हैं अपने दोस्त विपिन सहगल के साथ। आइए सुनते हैं आज की अगली

0: हाँ भैया नमस्ते।
1: नमस्कार, क्या नाम है आपका?
0: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: योगेश जी आपका स्वागत है, छत्तीसगढ़ से आपने हमें कॉल किया।
0: जी भैया धन्यवाद।
1: तो आप हमारे जो कार्यक्रम है ऐप से सुनते होंगे, क्योंकि ऐप से ही क्लियर आते हैं हमारे ट्रांसमिशन।
0: जी एकदम मस्त क्लियर मिलते हैं।
1: तो रोज कितनी देर रेडियो सुनते हो?
0: तो बहुत सारे स्टेशनों को मिलाकर तो 4-5 घंटे मतलब हो जाते हैं।
1: अच्छा, तो आपका जो आप काम करते हैं वो सफर नहीं करता रेडियो की वजह से?
0: नहीं करता भैया, जैसे आज ही हम मतलब घर में काम कर रहे थे और आपको बताना चाहूंगा जो चार पहिया वाहन है मतलब खड़ा था, उसमें सामान लोड करवा रहे थे तो मोबाइल से कनेक्ट करके उसमें चला रहे थे स्पीकर के थ्रू।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और रेडियो भी चलता है, आपका काम भी चलता रहता है, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। कि
0: और सुनने वाले भी बड़े मजे लेते हैं भैया, और कई लोग तो आवाज की भी काफी तारीफ करते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खुशी हुई ये जानकर। तो हेलो एफएम कार्यक्रम में आज आपकी कौन सी फरमाइश है जो पूरी की जाए?
0: और फिरकी वाली तो कल फिर आना फिल्म है राजा और रंग।
1: अच्छा, तो आपकी आवाज की लोग तारीफ करते हैं, थोड़ा सा जो हमारे दूसरे श्रोता हैं उनको अपनी आवाज सुना दीजिए ये गीत को गाकर।
0: और फिरकी वाली तो कल फिर आना, नहीं फिर जाना अपनी जुबान से। जी
1: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद। लीजिए मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत सुनिए।
0: धन्यवाद।

0: Hello FM. Hello FM.
1: नमस्कार
0: जी,
1: नमस्कार जी।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मैं रामवीर बोल रहे जी, गांव किरमत से, कुरुक्षेत्र से जी।
0: रामवीर जी, आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र किरमत से आपने हमें कॉल किया।
1: हाँ जी, धन्यवाद जी।
0: तो आपका जो काम धंधा है, जो भी आप करते हैं, बढ़िया चल रहा है?
1: हाँ जी सर, मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ जी, तो बहुत अच्छा चल रहा है जी काम। तो देखो, मैं तो 40 साल से लगभग काम कर रहा हूँ जी।
0: अच्छा, तो आजकल जैसे गर्मी का सीजन है, तो आजकल तो कूलर्स वगैरह का और इसका काम बहुत ज्यादा होता होगा।
1: हाँ जी, जैसे पंखे कूलर वगैरह रिपेयर करते हैं जी, तो और एसी की सर्विस वगैरह भी करते हैं जी, तो चलता रहता है जी काम। तो
0: साथ साथ रेडियो भी चलता रहता है?
1: हाँ जी, हाँ जी, घर पर तो अपना रेडियो रखता है जी, और ये अपना फोन में भी FM लगा लेते हैं जी, चलता रहता है जी।
0: तो किस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं आप?
1: सर देखिए, गाने मैं ये सदाबहार गाने, नए पुराने सुनता रहता हूँ जी। लगभग सभी प्रोग्राम जैसे आते रहते हैं, विविध भारती के भी आपके स्टेशन पर चलते रहते हैं जी, वो भी सुनते हैं जी सारे।
0: ठीक है, तो आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत चुनकर लाए हैं जो सदाबहार भी हो, सबको पसंद भी आए, आपको भी अच्छा लगे?
1: हाँ जी, हाँ जी, ये रंगोली फिल्म है जी पुरानी जी, और इसका गीत है जी, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कभी तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, पूछेंगे हाल।
0: बहुत बढ़िया गाना आपने चुना है, किशोर कुमार की आवाज में गीत है और बेहद ही खूबसूरत गीत है।
1: हाँ जी, हाँ जी सर।
0: ठीक है सर, आपने हमें कॉल किया, आपका शुक्रिया, हम आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं।
1: धन्यवाद सर।

0: हेलो एफएम
1: जी, नमस्कार
0: नमस्कार जी, क्या नाम है आपका?
1: जी। मैं दशरथ सेन बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से।
0: दशरथ जी, आपका स्वागत है। हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, जल्दी से अपनी फरमाइश बता दीजिए
1: जंगल फिल्म, ये फिल्म का नाम है
0: जी।
1: कोयलिया गाती हैं, पायलिया थनकती हैं, अनुराधा पौडवाल की आवाज़।
0: बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, तो हम आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का।
0: शुक्रिया।

दोस्तों, ये था आज का हेलो एफएम कार्यक्रम। आज का हेलो एफएम कार्यक्रम आप तक पहुंचाया विनय श्री खुराना ने। इस कार्यक्रम को बनाने में तकनीकी सहयोग दिया हमारे इंजीनियर प्रवीण ने। अब अपने दोस्त विपिन सहगल को आज का हेलो एफएम कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। इस वादे के साथ हम आपसे जुदा हो रहे हैं कि अगले रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी इसी वक्त, इसी चैनल और कार्यक्रम हेलो एफएम। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो एफएम। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने ही वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके तुरंत बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
2: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a five-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. The Central Board of Secondary Education CBSE has said an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal of its service provider that were recently flagged in the public domain. It said vulnerabilities have been identified and contained and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. In Himachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party, BJP, has won 3 out of the 4 municipal corporations in the civic body elections, winning Dharamshala, Solan and Mandi. The Congress Party has won the Palampur Municipal Corporation. The counting of votes was held today while polling took place on the 17th of this month. In Maharashtra, the ruling Mahayuti Alliance today finalized its seat-sharing formula for the upcoming Legislative Council elections to 17 seats. Under the agreement, the BJP will contest 11 seats, Shiv Sena 4 seats and Nationalist Congress Party NCP 2 seats. The opposition Mahavikas Agadi MVA had earlier announced its allocation for 15 of the 17 seats, with Congress contesting 8 seats, Shiv Sena UBT 4 and the Sharad Pawar-led NCP 3 seats. Discussions on the remaining Nashik and Nanded seats are still underway. Tomorrow is the last day for filing nomination papers for the elections. In the high-voltage IPL title clash, Gujarat Titans set a target of 156 runs for defending champions Royal Challengers Bengaluru, RCB, at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. In reply, RCB were 133 for 5 in 14.3 overs when reports last came in. Put into bat, Gujarat Titans posted 155 for 8 in their 20 overs, with Washington Sundar scoring an unbeaten 50 off 37 balls. And that is the end of this news bulletin.
3: FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारे आज के कार्यक्रम यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। अब हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।